मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि तदनुसार 1 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 50 सेकेंड्स हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: الشرما. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं।

इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम सुनिए समूह स्वर में मातृ वंदना।

न मौन तुम्हारा शून्य है, न दृष्टि केवल ध्यान। तुम हो सृष्टि की सांस में ठहरा हुआ समाधान। भस्म में भी सौंदर्य है, जटा में बहता काल। भस्म में भी सौंदर्य है, जटा में बहता काल। तुम अंत नहीं आरंभ हो, महादेव महाकाल।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, स्वर डॉक्टर सुरेश खरे का।
1: एक गांव में प्रतियोगिता हो रही थी कि कौन आदमी सबसे ज्यादा रोटी खा सकता है। कोई 10 रोटी खाया, कोई 15, कोई 20 पर रुक गया। किंतु एक व्यक्ति जो 50वें रोटी पर चल रहा था, उसे देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों ने उससे कहा, भाई अब तुम जीत ही गए हो, अकारण अपने आप को परेशान मत करो, अब रुक जाओ, तुमसे आगे कोई नहीं बढ़ पा रहा है, तुम अकेले ही प्रतियोगी बचे हो जिसका खाने का क्रम जारी है, अतः तुम बाजी जीत ही चुके हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर रुक सकता हूं। लोग आश्चर्यचकित रह गए। लोगों ने पूछा कि आपकी क्या शर्त है। उस व्यक्ति ने कहा, इस बात की सूचना मेरे घर कोई ना पहुंचाए कि मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और 50 रोटी तक खा गया, नहीं तो मुझे संध्या को भोजन मेरी पत्नी नहीं देगी और मेरा सांझ का भोजन गड़बड़ हो जाएगा। हम इस पेट को अप्राकृतिक रूप से भर सकते हैं, विक्षिप्त रूप से भी भर सकते हैं। पेट ही नहीं, हमारी प्रत्येक इंद्रियों का पेट है और प्रत्येक इंद्रिय के पेट को जरूरत से ज्यादा भर सकते हैं। जितना सुनने की आवश्यकता नहीं होती उतना हम सुनते हैं, जितना देखने की आवश्यकता नहीं होती उतना हम देखते हैं, और इसका परिणाम हमारी क्षमता और संवेदनशीलता की कमी के रूप में परिलक्षित होता है और तृप्ति नहीं मिलती, और जब तृप्ति नहीं मिलती तो असंतोष का एक दुष्चक्र उत्पन्न होता है। हम सोचते हैं कि और ज़्यादा देखें तो तृप्ति मिलेगी, और ज़्यादा खाएं तो तृप्ति मिलेगी। जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ही स्वाभाविक भूख दबती और नष्ट होती जाती है, और आदत की भूख बढ़ती जाती है, वह कभी भी तृप्त नहीं होती, उसकी तृप्ति का कोई अंत नहीं। निरंतर हम सुनते हैं वासनाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वभाव में जो वासनाएं होती हैं वे सब उपयोगी व काम की होती हैं। हाँ, आदत से निर्मित हमारी वासनाओं का कोई अंत नहीं है। आपने कभी किसी जानवर को बीमारी में खाने के लिए राजी करते नहीं देखा होगा, वे जरा भी अस्वस्थ होते हैं अथवा अधिक खा लेते हैं तो झट जो पेट में है उसे बाहर फेंक देते हैं। वे प्रकृति से जीते हैं, हम आदत से जीते हैं, और आदत से जीने के कारण मनुष्य अस्वाभाविक होता चला जाता है। यह अस्वाभाविक होना इतना अधिक हो जाता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमारी प्राकृतिक आकांक्षाएं क्या हैं। एक बार भगवान बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपकी साधना क्या है। उन्होंने कहा, जब भूख लगती है तब मैं भोजन करता हूँ, जब मुझे नींद आती है तब सो जाता हूँ, और जब नींद टूटती है तब मैं जाग जाता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, यह भी कोई साधना है, ऐसा तो सभी करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, काश तुम सभी यह कर लो तो इस पृथ्वी पर बुद्धों की गिनती करनी मुश्किल हो जाएगी, यह तुम नहीं करते हो। जब तुम्हें भूख नहीं लगती तब भी तुम खाते हो, और हो सकता है जब भूख लगती हो तब तुम नहीं खाते हो। जब तुम्हें नींद नहीं आती तब तुम सो जाते हो, और जब नींद आती है तब तुम ना सोते हो, और जब नींद टूटनी चाहिए तब तुम सोए के सोए ही रह जाते हो। यह विकृति हमारे भीतर दोहरी प्रक्रियाओं से हो जाती है। एक तो हमारा स्वभाव है जैसा प्रकृति ने हमें निर्मित किया है, और प्रकृति सदा संतुलित रहती है। प्रकृति उतना ही मांगती है जितनी जरूरत है। दूसरी ओर आदतों का, कृत्रिम स्वभावों का कोई अंत नहीं है। आदतें हम निर्मित कर लेते हैं, फिर आदतें हमारा दूसरा स्वभाव बन जाती हैं और हमारा पहला प्राथमिक स्वभाव आदतों के जाल के नीचे रुक जाता है।
0: ये था आज का चिंतन। स्वर था डॉक्टर सुरेश खरे का। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन। स्वर कविता कृष्णमूर्ति का और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

काक भुशुंड के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका अनन्य प्रेम देखकर पक्षीराज गरुड़ कृतकृत्य हुए। बोले, हे नाथ, आपने श्री राम की कथा और ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सुनाकर मुझे परम सुख और शांति प्रदान की है। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा सर्वदा आपका ऋणी रहूंगा। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम के अनुरागी हैं। इस जगत में आप जैसा बड़भागी और कौन होगा? संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब का अस्तित्व परोपकार के लिए होता है। कवियों ने कहा है कि संत हृदय नवनीत के समान होता है, किंतु मैं कहता हूं कि उन्होंने कदाचित पूर्ण सत्य नहीं कहा, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, जबकि संतों का हृदय तो दूसरों का दुख देखकर पिघलता है। पार्वती को काकभुशुंडी गरुड़ संवाद का ये प्रसंग सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, गरुड़ ने बार बार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर काकभुशुंडी के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। संत समागम जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं होता, किंतु ऐसा अवसर प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। मैंने वो इतिहास सुनाया जिसे अपने कानों से सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। धन्य है वो देश जहां गंगा प्रवाहमान है। धन्य है वो स्त्री जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य है वो राजा जो न्यायप्रिय होता है। और धन्य है वो द्विज जो अपने धर्म पर अडिग रहता है।

0: आप सुन रहे थे रामचरितमानस का गायन। स्वर था कविता कृष्णमूर्ति का और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि सामयिकी की बेड़ा खड़ा चुगोट।
1: काश्तकार भाई बहन मन, घरे काई बोले साग हो, मांतर खिंडिक चटनी होले फिर नी सांगा, चर फर आए और इचो स्वाद बोले गोटक दूसर होए से, असने काके जर धरो नाहले जूड़ धरो, उन पैल मुर करे से चटनी के, और चटनी ने फिर धनिया होले फिर नी सांगा ने, तो हुनी का जे दखा आमी दुखू से कि एक ही चटनी हो साग हो ने तो आमी लगाऊ से, मात्र एक गोटक मसाला बीती फसल बोलाए जाए से, ये जो पाना तो आम के काम ऐसे ची, मात्र ये जो बीचा बोले आम के काम ऐसे। किसान भाई बहन मन, धनिया जो नगद कमानी का जे आमी दुखू आओ कि कौन सा समय हो ऐसे, ये जो काजे खिंडी गरम समय लागे से, बोल तो ने एक ही यार घाम दाय नहीं, खिंडी खिंडी जसन शीतकार चो बोलो ने सर तो समय आमी दुखुआ नहाले मूर समय दुखुआ हुन समय नगत होए से, असने एचो बीचा पका तो काजे बोले खिंडी गरम महा समय रहो तेबे हुन बीचा बोले सुखे दे, ए फसल काजे भूई चो तैयारी नगत कर तो रहे, असन तो ये सफाई माटी ने नगत कमानी करुक सकू, मांतर जोन लाल मटियार भूई हो से ए जोन धनिया होए से एचो काजे खूबे नंगत होए से, धान पाकुन भाती काटलो पाचे नंगत करुन नांगर धरतो रहे, बोलो ने गोटो तीन चार हर नांगर धरतो रहे और जोन माटी रहे से हुनके भुरभुरा बनात रहे, असने धान चो जोन सड़ई मन रहे से हुनके बले बेचुन भाती अलगे ने उन पकान देत रहे, और जोन पाटा रहे से हर नांगर ने बोलो ने एक हार नांगर धर लू तो हुन थाने पाटा चलात रहे, फिर दूसरा हार ने पाटा चलात रहे, दुई तीन हार जितलो हार आमी नांगर धरू से उतलो हार पाटा चलान देतो रहे, असने धनिया चो जोन फसल काजे खत मन बले लागे से, एचो काजे गोबर खत कंपोस्ट 20 टन अमोनिया सल्फेट 150 किलोग्राम सुपर फास्फेट 300 किलोग्राम और पोटास 100 किलोग्राम जो 2.5 एकड़ जो नाम चुबेड़ा रहे से हुन थाने देतो रहे, ये सपाए खत के दिलो पाछे 40 किलोग्राम जोन होए से यूरिया एचो घोल बनन भाती ए थाने सपाए बाटे छींचतो रहे, ए खूबे होले जोन धनिया चो फसल रहे से एके चेपान दे दे, तो ई काजे एके हिसाब ने देतो रहे, पहल हार जसन धनिया चो गाजा होए से हुन समय ने 30 दिन पाछे और दूसर हार 40 से 45 दिन पाछे एके देतो रहे, बोलन समय चो आम के ध्यान देवक लागे से, फसल काजे 2.5 एकड़ बेड़ा ने धनिया बुनतो काजे 10 से 15 किलोग्राम जोन धनिया रहे से ए बीचा लागे से, बोलन 2.5 एकड़ बेड़ा ने आम कितरो धनिया लागे से, असने एचो बीज उपचार बोले करतो जरूरी होए से, तो बुनतो पहल बीचा के समान भूई ने एके बिखराउन देतो रहे और एके रमनतो रहे हाथ ले, बोलो ने ये दुई दुई भागा हो असन दखतो रहे, बोलो ने एक यार पिसान बल हो जाए उतरो जोर ले नी लगड़तो रहे, तो दुई दुई भागा होले फिर एके ओंडियात रहे और एके 18 से 24 घंटा बोलो ने एक ले 1.5 दिन नहाले 2 दिन महा 1.5 दिन दखा उनके पानी ने भिजाउन संघान देते रहे, फिर एके पानी ले निकराउन भाती छाए ने जोन हो से बोलन भोती नहाले ऊपर छाया से खुला थाने हुन लगे ने उन भाती सुखान देत रहे, गच छाए छीने उन भाती बिखराउन देत रहे, तो ये पानी के काय सुखे दे, फिर ये था 22 टिन नावचो जो नोखत हो से 2 चिमटी धरतो रहे और 1 किलोग्राम के बीज उपचार करतो रहे, फिर बुनतो समय ने एक दखतो रहे कि ये नंगत आसे कि नहीं, फिर ये था जसनामी बुनक नेलू तो हुदल दाए जोन ओरी रहे से एक बल ध्यान देते रहे, तो ओरी चो ओरी जोन रहे से ए एक हाथ चो दूरी ने रहो और बूटा चो बूटा बोलने आधा हाथ चो दूर ने संगात रहे अधिक दूर नी संगात रहे, और ये बोले दखतो रहे कि जसन हाइब्रिड बीती आमी देखू से बीचा नहल देसी बीचा तो हुन हिसाब ने क्योंकि बाड़ू आए तो हुन हिसाब ने हुन फैलू बोले आए।
0: अभी कृषि सामयिकी की बेड़ा खड़ा चुगोट का प्रसारण किया गया। हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए हुलहुली। इसमें आज सुनिए रणबीर देव पाड़, कलाकार हैं पाकलू और साथी।

0: में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति पर केंद्रित समन्वित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे नमस्कार जगदलपुर, इसमें सुनिएगा स्वतंत्र वार्ता शिक्षा का बदलता स्वरूप। वार्ताकार होंगी पायल पांडे, साथ ही सुभाष चंद्र साहू प्रस्तुत करेंगे कविता पाठ और होगी मधुर फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 9:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सुबह 9:30 पर एक ही फिल्म से, आज की फिल्म होगी सत्ते पे सत्ता। पुराने नगमे हम आपको सुनवाएंगे गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10:00। गोंडी लोकगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड़दुम में सुबह 10:30 पर, कलाकार होंगे रामेश्वर और साथी। सुबह 11:00 कार्यक्रम एक ही कलाकार, हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर पर। दिन के 11:30 पर पाटा केंजा में आप सुनेंगे गोंडी लोकगीत, कलाकार होंगे लच्छू राम और साथी। दोपहर 12:00 होगा लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी, संपादन भरत कुमार गंगादित्य का। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार दोपहर 12:30 पर। कृषि सामयिकी की बेड़ा खड़ा चुगोट का पुनः प्रसारण समय होगा दोपहर 1:05। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर होगा कार्यक्रम कला और कलाकार। कार्यक्रम विवरण के साथ आरंभ होगी हमारी सांध्यकालीन सभा शाम 5:00। शाम 5:05 पर समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। शाम 5:10 पर होगा युवा दोस्तों का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे गोंडी लोकगीत, कलाकार होंगे गणेश मंडावी और साथी। शाम 7:00 होगा कार्यक्रम बस्तर के स्वर। शाम 7:21 पर हम आपको सुनवाएंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चुगांव। रात 8:00 कार्यक्रम नानोली, इसमें सुनिएगा गोंडी लोकगीत, कलाकार होंगे लक्ष्मण और साथी। रात 8:30 पर कार्यक्रम पिलामन काजी गोट, आज इसमें विषय होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रस्तुति होगी मिनेश पानी रहेगी। रात 9:15 पर कार्यक्रम जीवना चौसोर में आप सुनेंगे मिलेट्स महिला स्वसहायता समूह दंतेवाड़ा की रंजना सिंह से भेंटवार्ता, भेंटकर्ता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। शाम 9:30 पर भेंटघाट में सुनिएगा मनबोध बघेल से भेंटवार्ता, भेंटकर्ता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। और रात 10:00 कोदोमाली में आप सुनेंगे मनीराम मंडावी और साथियों के गाये गोंडी लोकगीत। ये थी जानकारी हमारी आज की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी जगदलपुर है, प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में पहले संस्कृत और फिर हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च संबंधान इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः

0: मध्ये सुरक्षा सम्पर्कौ च समेत्य सम्पूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यान्मारदेशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यान्मारदेशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिकयात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीयसम्बन्धः इतोऽपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रकृतिसंरक्षणे स्थानीयसमाह्वानानां निराकरणे अन्यसामाजिककार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्टयोगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसम्बोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रिय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथ ग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्याणां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीतसिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनांके मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतद् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनांके भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-29 शततमाद् वर्षात् 70-29 शततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं 5 पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5 से 9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

सुप्रभात श्रोताओं, एक नए दिन की शुरुआत में आपका स्वागत है। हर सुबह एक नई रोशनी लेकर आती है, एक नया अवसर, एक नई उम्मीद जगाती है। जैसे सूरज हर बार चमकता है, हम भी हर बार नई कोशिशों के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर सुबह हमारे लिए नई संभावनाओं का दरवाजा खोलती है। तो चलिए आज कुछ नया, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें और आगाज करें आज के नमस्कार जगदलपुर का। और आज आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त निशा नायर। आप सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के नमस्कार जगदलपुर में।

श्रोताओं, जिनकी मुस्कान में छुपी है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जिनके सपनों में हमारी उड़ान का आधार बनता है, जिनकी दुआओं से हर मुश्किल आसान हो जाती है और जिनकी हंसी से जीवन में खुशियों के रंग भर जाते हैं, वे और कोई नहीं, वो हैं हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स या कहें अभिभावक, जिनके बिना जीवन अधूरा है, हमारा अस्तित्व ही नहीं है, जिनकी छाया में भी हर खुशी का आधार है। जी हाँ श्रोताओं, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज यानी 1 जून को हर साल वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर के माता पिता को उनके निस्वार्थ प्रेम, त्याग और बच्चों के प्रति आजीवन समर्पण के लिए सम्मानित किया जाता है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार वैश्विक माता पिता दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से ये दिन विश्व भर में माता पिताओं को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक नया थीम है, अभिभावकों के लिए एकजुट, यानी कि यूनाइटेड फॉर पेरेंट्स। श्रोताओं, हम सब जानते हैं माता पिता बच्चों के जीवन में प्रकाश स्तंभ होते हैं, वे बच्चों की नींव रखते हैं और उन्हें जीवन भर आवश्यक कौशलों से परिपूर्ण बनाते हैं। माता पिता बच्चों की रक्षा करते हैं और पूरे जीवन भर उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनगिनत निस्वार्थ बलिदान देते हैं। आज का ये दिन माता पिता के प्रति उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए आभार व्यक्त करने का दिन है, उनके समर्पण का सम्मान करने का दिन है, क्योंकि उनका होना मात्र ही वास्तव में एक आशीर्वाद है। उनके साथ का हमारा रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण और सच्चा बंधन होता है। माता पिता वो पहला सहारा होते हैं जो बिना शर्त प्यार करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। वे हमारे हर सपने के पीछे खड़े रहते हैं और हर कदम पर हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। उनकी दुआओं से हर मुश्किल आसान हो जाती है और उनकी हंसी से जीवन में खुशियों के रंग भर जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान स्वयं नहीं आ सकते, इसलिए माँ बाप के रूप में धरती पर अपना आशीर्वाद हम तक भेजते हैं।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीम।

0: सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
2: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
3: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
2: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
4: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
5: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर, और इस क्रम में आइए अब सुनते हैं स्वतंत्र वार्ता, शिक्षा का बदलता स्वरूप। वार्ताकार हैं पायल पांडे।
7: शिक्षा के स्तर को बढ़ाने हेतु पिछले कई वर्षों से शासन प्रशासन के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है, पर आशातीत सफलता नहीं मिल रही है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अलग अलग तकनीक अपनाई जा रही है। इन सब से बस्तर शिक्षा के स्तर में बढ़ा तो है, पर अंदरूनी ग्रामीण शालाओं में अब भी कहीं कहीं स्तर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक कक्षाओं में धीरे धीरे बदलाव और सुधार की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। शालाओं में सीखने के वातावरण की दिशा में फोकस करने के बाद अब हम कक्षाओं में परिवर्तन पर फोकस कर रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से हमने केवल कुछ महत्वपूर्ण मदों पर ही फोकस किया है और इन्हीं को लेकर पूरे सत्र भर काम कर रहे हैं। कक्षाओं के आकलन के लिए हमने कुल 10 दक्षताओं को फोकस किया था। प्रथम अकादमी निरीक्षण में जिन शिक्षकों की कक्षाएं अपेक्षित मानकों में खरी नहीं उतरी, उन शिक्षकों की कक्षाओं को आगामी निरीक्षण के पूर्व मानकों पर खरे उतरने हेतु तैयारी के लिए इस क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आशा है कि आगामी निरीक्षण तक हम अपनी कक्षाओं को अपेक्षित मानकों के अनुरूप ढाल सकेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से फोकस शालाओं का चयन कर उनके साथ पूरे सत्र भर कार्य किया जाता है। उन कक्षाओं को सफल कक्षाएं घोषित की गई है जिनमें 3/4 अर्थात 75% बच्चे उनसे पूछे गए 10 सवालों में से कम 7 सवालों के जवाब देने में समर्थ हो। जिलों में प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के सदस्य इस आधार पर विभिन्न सत्रों के आयोजनों की जिम्मेदारी लेते हुए अपने अनुभवों एवं अध्ययन कर सत्र के लिए गतिविधियां स्वयं मिलकर डिजाइन कर रहे हैं। क्षमता विकास के दौरान स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर सभी मिलकर अपने क्षेत्र के लिए योजना एवं रणनीति तैयार कर उनका कर सकेंगे। इस अभियान के अंतर्गत पहली बार हम प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के सदस्यों पर विश्वास कर परीक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथी इस विश्वास को बनाए रखते हुए अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर बेहतर प्रदर्शन कर कक्षाओं में बच्चों की उपलब्धि से सुधार हेतु शिक्षकों का क्षमता विकास कर सकेंगे और आगे के वर्षों में हमारे राज्य में शिक्षकों का क्षमता विकास कर सकेंगे और आगे के वर्ष में हमारे राज्य में शिक्षकों का क्षमता विकास कर सकेंगे और आगे के वर्ष में हमारे राज्य में शिक्षकों का विकास प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से किया जा सकेगा। कक्षाओं में स्थानीय भाषा का उपयोग शिक्षा में गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने के लिए हमें बच्चों की भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चों को आसानी से हर शब्द वाक पाठ समझ आ जाएगा और एक सूची तैयार कर उन सभी बच्चों से आपस में साझा करें। कक्षा में स्थानीय भाषा उपयोग कर बच्चों से बेहतर संबंध बनाएं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन माध्यमिक स्तर पर शुरुआती वर्षों में पर्यावरण विज्ञान अलग से विषय न होकर भाषा एवं गणित में समाहित होते हैं। इस स्तर पर आपको इन विषयों में ऐसे क्षेत्र खोजने होंगे जिनमें कुछ रुककर आप पर्यावरण के बारे में चर्चा कर सकेंगे। एक विषय सीखते समय उसी के साथ जब किसी अन्य विषयों को जोड़ने का अवसर मिल सकता है तो ऐसे बिंदुओं को पलंग पलटन्स कहते हैं, जैसे आदि आवागमन के विभिन्न साधनों के नाम पढ़ने एवं लिखने का अभ्यास हिंदी में करना है तो उसी बिंदु पर हम पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मदों जैसे जानवरों की मदद से चलने वाले वाहन, पेट्रोल डीजल गैस से चलने वाले वाहन, गति के अनुसार वाहन, यात्रियों के बैठने के आधार पर वाहन, हवा पानी सड़क पर चलने के अनुसार वाहनों का वर्गीकरण, वाहनों से प्रदूषण जैसे बहुत से मदों पर चर्चा की जा सकती है। विज्ञान में नवाचार विज्ञान को रुचिकर बनाने शालाओं में रंगोली बनाने के साथ विज्ञान की समझ विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अपने आसपास हो रहे विभिन्न नवाचारों को शेयर करें। विभिन्न शैक्षिक वेबसाइट एवं उनका उपयोग प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी अपनी जानकारी में इंटरनेट पर जो भी सामग्री या वेबसाइट उपलब्ध हो सकते हैं उनकी आपस में शेयरिंग करें। सभी शिक्षक इन वेबसाइटों के अलावा कुछ शैक्षिक ग्लोबस से भी जुड़ें। गणित विज्ञान तकनीकियों में विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रतिभागियों को इन क्षेत्रों में उपलब्ध विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी दें। इस वर्ष हमारे राज्य में इग्राइट अवार्ड प्राप्त बच्चों द्वारा सुझाव गए तकनीकियों का प्रयोग। आप सभी ने सुना कि विषय अंतर्गत सभी विषयों के शिक्षण के लिए अलग अलग प्रकार की तकनीकियों का उपयोग हो रहा है और किसी भी लक्ष्य के लिए प्रयास धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हम प्रयत्नशील हैं और निश्चित ही वो दिन आएगा जब संपूर्ण छत्तीसगढ़ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाएगा।
6: आप सुन रहे थे स्वतंत्र वार्ता, शिक्षा का बदलता स्वरूप। वार्ताकार थी पायल पांडे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। आपको एक सूचना दे दें, फोन इन किसान वाणी की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक होती है। तो आप हमें इस कार्यक्रम के लिए फोन कर सकते हैं प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। श्रोताओं नमस्कार जगदलपुर में अब लीजिए सुनिए कविता पाठ, प्रस्तुति है सुभाष चंद्र साहू की।
8: मेरी पहली कविता है माँ वागेश्वरी। मन में निर्भयता भर दे माँ वागेश्वरी, मन में निर्भयता भर दे माँ वागेश्वरी, कंठ में भी तो बल दे माँ वागेश्वरी। मन में निर्भयता भर दे माँ वागेश्वरी, कंठ में भी तो बल दे माँ वागेश्वरी। सदा मैं लिखता रहूं, सदा ही पढ़ता रहूं, सदा मैं लिखता रहूं, सदा ही पढ़ता रहूं, जग कल्याण करता रहूं। सदा मैं लिखता रहूं, सदा ही पढ़ता रहूं, जग कल्याण करता रहूं, मेरी सारी जड़ता हर ले माँ वागेश्वरी, मेरी सारी जड़ता हर ले माँ वागेश्वरी, सुभाष का ऐसा वर दे माँ वागेश्वरी। मन में निर्भयता भर दे माँ वागेश्वरी, हर दिशा उज्जवल कर दे, जीवन भी निर्मल कर दे। हर दिशा उज्जवल कर दे, जीवन भी निर्मल कर दे, सत्संग चलूं सबल कर दे। हर दिशा उज्जवल कर दे, जीवन भी निर्मल कर दे, सत्संग चलूं सबल कर दे, पग को ऐसा डगर दे माँ वागेश्वरी, सुभाष का ऐसा वर दे माँ वागेश्वरी। मन में निर्भयता भर दे माँ वागेश्वरी, कंठ में भी तो बल दे माँ वागेश्वरी। मेरी अगली कविता है हवा बन तू आ जाती। जो तू मुझे है

मन हवा बन तू काश आ जाती, जो तू मुझे है याद आती, जो तू मुझे है याद आती, चाहता मन हवा।

आती, इसलिए चाहता मन हवा बन तू काश आ जाती, जो तू मुझे है याद आती।

मेरी अगली कविता है भावना भरी सूरत। भावना भरी सूरत में कई कहानी छुपी है। भावना भरी सूरत में कई कहानी छुपी है, वर्तमान भविष्य संग कुछ पुरानी छुपी है। भावना भरी सूरत में कई कहानी छुपी है, वर्तमान भविष्य संग कुछ पुरानी छुपी है। होठों पे हरकत नहीं पर उसमें भी कुछ दबी है। होठों पे हरकत नहीं पर उसमें भी कुछ दबी है। अगर भावनाओं को समझो तो कोई जुबानी छुपी है, वर्तमान भविष्य के साथ कुछ पुरानी छुपी है। एक टक देखती आंखों से बूंद आंसू भी टपक नहीं रही। एक टक देखती आंखों से बूंद आंसू भी टपक नहीं रही। पर ये तो गौर करो कि कितनी नमी छुपी है। पर ये तो गौर करो कि कितनी नमी छुपी है, वर्तमान भविष्य के संग कुछ पुरानी छुपी है। चमकती बिंदिया तो दास्ताएं रात चांदनी कह रही है। चमकती बिंदिया तो दास्ताएं रात चांदनी कह रही है। पर दुख घड़ी की कहानी तो गेसुओं में रात काली तूफानी छुपी है। पर दुख घड़ी की कहानी तो गेसुओं में रात काली तूफानी छुपी है, वर्तमान भविष्य के साथ कुछ पुरानी छुपी है। भावना भरी सूरत में कई कहानी छुपी है। भावना भरी सूरत में कई कहानी छुपी है। मेरी अगली कविता है मेरी सखी बनी। चाहे मन घड़ी रहे थमी, चाहे मन घड़ी रहे थमी, जो तुम मेरी सखी बनी। चाहे मन घड़ी रहे थमी, जो तुम मेरी सखी बनी। बना रम्य उद्यान हर्षाया मन, बना रम्य उद्यान हर्षाया मन। उद्वास पुष्प पाया कविता कानन, आलोकित हुआ मेरा तम ही अजमी, जो तुम मेरी सखी बनी। बोल तुम्हारे सुने सदैव कर्ण चाहे, बोल तुम्हारे सुने सदैव कर्ण चाहे। रहे तुम पे हरदम ये चितवन भाए, बोल तुम्हारे सुने सदैव कर्ण चाहे। रहे तुम पे हरदम ये चितवन भाए, भा गई तुम्हें भी तो मेरी कटाक्ष चितवनी, और तुम मेरी सखी बनी। दे मलयज सी सुरभि तुम्हारी तनु, दे मलयज सी सुरभि तुम्हारी तनु, हो स्मित अधर तो आए उषा मधु। दे मलयज सी सुरभि तुम्हारी

0: तनु हो स्मित अधर, तो आए उषा मधु, लगने लगी मुझे भी अब हर क्षण सुहावनी, लगने लगी मुझे भी अब हर क्षण सुहावनी, जो तुम मेरी सखी बनी, चाहे मन घड़ी रहे थमी, चाहे मन घड़ी रहे थमी।
1: आप सुन रहे थे सुभाष चंद्र साहू से कविता पाठ। नमस्कार, जगदलपुर में श्रोताओं, आइए एक छोटी सी और चर्चा कर लें। हम सभी जानते हैं श्रोताओं, दूध सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, इसलिए डॉक्टर्स कई बार बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों को दूध पीने की सलाह देते हैं। आज 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस मना रहे हैं। दूध को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 2001 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को दूध से होने वाले फायदे के बारे में बताना है, साथ ही ये बताना है कि दूध कैसे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को लाभ पहुंचाता है। डेयरी व्यवसाय आजीविका चलाने में भी काफी मदद करता है। डेयरी क्षेत्र और दूध के पोषण, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना ही इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। ये दिन बताता है कि दूध एक वैश्विक खाद्य पदार्थ है। इस साल यानी विश्व दुग्ध दिवस 2026 का विषय है महिला किसानों का सम्मान। ये थीम दुग्ध उत्पादन, टिकाऊ खाद्य प्रणालियों और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करती है। तो श्रोताओं, दूध हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों की वृद्धि और समग्र प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इस दिन के महत्व को समझें और अपने जीवन में दूध को अपनाएं।

0: श्रोताओं नमस्कार। जगदलपुर में अब वक्त हो चला है मधुरिमा का, पर आइए उससे पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: पेश है मधुरिमा।

दूर होकर भी तुम कुछ यूं मेरे पास आ जाते हो कि मेरी रातों को अपने ख्वाब, मेरी सुबह को अपने ख्याल दे जाते हो। हर लम्हे में, हर बात में तुम मुझे याद आते हो, बनकर एहसास तुम मेरे दिल में ठहर जाते हो।

कह सको तुम हर बात मन की, मुझे वो राजदार बनना है। तुम्हारे दिल की हर बेचैनी का मुझे अब सुकून बनना है। खुशियों में भी गम में भी तुम्हारे साथ साथ चलना है। ख्वाब हो या हो हकीकत, मुझे तुम्हारा हम सफर बनना है।

अजीब है ये प्यार भी, तुमसे बात हो जाए तो दिल हल्का लगने लगता है और तुम्हें देख लूं तो मन बेवजह खुश रहने लगता है। ना कोई बड़ी ख्वाहिश, ना कोई शर्त, बस इतनी सी बात है कि तुम पास रहो तो सब अच्छा लगने लगता है।

मधुरिमा के इन्हीं मधुर गीतों के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपके शुभ दिवस की कामना के साथ मैं निशा नायर नमस्कार जगदलपुर से अब लेती हूँ विदा। नमस्कार, शुभ दिवस। आप सुन रहे थे नमस्कार जगदलपुर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात

0: टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
3: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
6: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसुर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड प्वाइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे

0: डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

चरक भिक्खवे चारिक, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय अदथाय हिताय सुखाय देव मनुस्सान। भगवान बुद्ध की इस अमर वाणी के साथ आकाशवाणी रायपुर ग्रंथालय में संग्रहित लोक सांस्कृतिक धरोहरों पर केंद्रित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के इस अंक में आप सभी सुधीजनों का हम अभिवादन करते हैं। नमस्कार।

श्रोताओं, आज के अंक को हमने सजाया है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गाथा पंडवानी से, और साथ ही सुनेंगे बस्तर का भथरा नाट गीत। लेकिन इससे पहले आकाशवाणी से जुड़े कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं। आकाशवाणी के प्रभाव का यशोगान करते हुए जनसंचार विशेषज्ञ डॉक्टर विल्वर श्रम लिखते हैं कि प्रभावी जनसंचार माध्यम देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतएव मुक्त और समुचित सूचना उपलब्ध कराना मात्र ही जनसंचार माध्यमों का अंतिम ध्येय नहीं है, बल्कि इच्छित सामाजिक परिवर्तन अंतिम लक्ष्य है। वास्तव में यही विचारों की ताकत है। श्रोता साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप का बेहद लोकप्रिय रेडियो चैनल है विविध भारती। इसका सुरुचिपूर्ण प्रसारण हमें समय के उस पार ले जाता है जहां स्मृतियां फिर से जी उठती हैं। आकाशवाणी की यात्रा में एक रोमांचक पड़ाव तब आया जब 3 अक्टूबर सन 1957 सुबह 10:13 पर शॉर्टवेव 19 और 25 मीटर बैंड पर आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती की किलकारियां गूंजने लगी। ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। इस उद्घोषणा से पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों ने शुभकामना के फूल बरसाए थे। मानस भवन में आरे जन जिसकी उतारी आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती।

भारती की परिकल्पना को सन 1957 में साकार करने वाली हस्तियों में तात्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर बी.वी. केसकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में तात्कालीन सचिव श्री पी.एम. लाट और आकाशवाणी के तत्कालीन महानिदेशक श्री जगदीश चंद्र माथुर रहे। विविध भारती का शुरुआती स्वरूप ऑल इंडिया वैरायटी प्रोग्राम अर्थात अखिल भारतीय विविध रंगी कार्यक्रमों का था। इस सेवा को विविध भारती नाम दिया कला एवं साहित्य मनीषी पंडित नरेंद्र शर्मा ने। विविध भारती की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस विषय में विविध भारती के चीफ प्रोड्यूसर रहे पंडित नरेंद्र शर्मा जी कहते थे, हमारे इतने बड़े संस्थान में जिसको कि आकाशवाणी कहा जाता था, अनेक ऐसे कार्यक्रम थे जो कि ज्यादातर निष्णांत बुद्धिजीवी श्रोताओं के लिए थे। अधिक संख्या में अखिल भारतीय वो श्रोता हैं जिसे हम और किसी बहुत अच्छे शब्द के अभाव में कहेंगे सामान्य श्रोता, अंग्रेजी में कहें तो ले लिसनर। सामान्य श्रोताओं की जो आवश्यकताएं थीं, उनमें विविधता भी होनी चाहिए और भारतीयता भी। इन दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध भारती उपयुक्त सिद्ध हुआ और इस प्रकार प्रसारण आरंभ हुआ। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विविध भारती के मुंबई केंद्र से पहली उद्घोषणा की शील वर्मा ने। विविध भारती पर पहला प्रसार गीत मन्ना डे के स्वर में प्रसारित हुआ, नाच रे मयूरा। रचयिता थी पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीतकार अनिल विश्वास। सुप्रसिद्ध कार्यक्रम हवा महल का प्रसारण 20 अक्टूबर सन 1957 से आरंभ हुआ। प्रथम प्रसारित हवा महल के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा ने विशेष संगीत नाटिका तैयार की थी महारास, और तब से अपने विविध कार्यक्रमों वंदनवार, लोक संगीत, गीतों भरी कहानी, उदयगान, इंद्रधनुष, राग रंग, मंजूषा, फौजी भाइयों का विशेष जयमाला जैसे कार्यक्रमों से आज भी देश की धड़कन बनी हुई है आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती।

0: भारती।
1: और आइए अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के सुरीले संगीत संसार में, जहां गूंजते हैं छत्तीसगढ़ के लोक सुर।

समय का पहिया कभी किसी के लिए रुका नहीं, आते हैं चले जाते हैं, पर मनुष्य जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो कथा की शक्ल में शेष रह जाती हैं। पंडवानी महाभारत की ऐसी ही कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, जो आम छत्तीसगढ़ी लोगों की सहज सरल जीवन शैली से, उनके भोले भाले हृदय की धड़कनों से जुड़कर संगीत के अविराम स्रोत सा बहता रहता है। नाचा कर्मा ददरिया सुआ बांस गीत चंदैनी पंथी कौरा जमारा जैसे अनेक लोक विधाएं छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक बगिया के महकते हुए फूल हैं। उनमें सर्वोपरि सुगंधित पुष्प का नाम है पंडवानी।

पंडवानी छत्तीसगढ़ अंचल के मनोरंजन का पारंपरिक साधन ही नहीं, श्रद्धा भक्ति शौर्य और पराक्रम के प्रति ललक की मोहक अभिव्यक्ति भी है।

0: पितामा परन में अटल है।
1: अच्छा,
0: अब एको जन संतान नहीं होए तो फिर राज सुना हो गए भीष्म चिंता के मारे घायल। सतवती कहे बेटा मोरे सेती तय परन करे हस, अब मैं तोला आदेश देता हूँ, मैं तोला छुट्टी देवा था तैसा।

0: भी घायल हो गए और भीष्म लकथेर भैया अब तक शादी नहीं करत है तो एक ठमोर कहना मान।
1: अच्छा।
0: व्यास नारायण ला जल्द से जल्द बुला के ये घर में ले आ। भीष्म पितामह चंकर

पंडवानी स्वांग और संगीत का ऐसा मनोरम संगम है जहां महाभारत के अमर पात्रों की शौर्य गाथा हिलोरे लेती है। महर्षि व्यास द्वारा वर्णित और भगवान गणेश द्वारा अंकित महाभारत केवल युद्ध कथा ही नहीं अपितु समस्त मानवीय मूल्यों, आवेगों, मनोभावों और सबसे ऊपर मनुष्य की आदिम वृत्तियों और कामनाओं का सूक्ष्म चित्रण है। पंडवानी वस्तुतः महाभारत की शाश्वत कथा का छत्तीसगढ़ी संस्करण है। छत्तीसगढ़ी बोली में कितना माधुर्य और विस्तार है। जीवन के सूक्ष्म और गूढ़तम भावों को अभिव्यक्त करने की कितनी अपार क्षमता है ये पंडवानी को प्रत्यक्ष देखकर सुनकर ही समझा जा सकता है। पंडवानी की प्रस्तुति के लिए किसी विशेष पर्व त्योहार या अवसर की अनिवार्यता नहीं है। एक रात से लेकर कई रातों तक लगातार चलने वाली पंडवानी बैठकर भी गाई जाती है और खड़े होकर भी तथा घुटनों का सहारा लेकर भी। ये एक ऐसा एकल अभिनय है जिसमें अंग संचालन, भावाभिव्यक्ति, स्वरों की तीव्र आरोह अवरोह के साथ साथ संगीत की मधुर स्वर लहरियां श्रोताओं को सम्मोहन पाश में बांधी रखती हैं। तंबूरा पंडवानी का अभिन्न संगी और सहचर है। इसकी मंचीय प्रस्तुति में साथ बैठे हुकारू देने वाले रागी की भूमिका कथा को लयात्मकता, गतिशीलता देने और रोचकता को बराबर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

0: जो भाई बहनों सौ भाई गौरव जुआ के खेल खेली और सारी धन संपत्ति हारे के बाद में पांचों भाई पांडव ला 12 साल वनवास 1 साल अज्ञात वनवास भेज दी संग में द्रौपदी और पांचों भाई पांडव सहित।
1: अच्छा?
0: कहाँ चली कामयक बन के जंगल में
1: जी।
0: पांचों ये पांडव है कैसे।

0: पांचों भाई पांडव ना
1: अच्छा
0: एक ठन झाड़ के नीचे में बैठा दी।
1: हाँ जी।
0: अपन पत्नी द्रौपदी के साथ में पांचों भाई पांडव बैठे रहे।
1: हाँ जी।
0: उही बीच में
1: अच्छा।
0: उही जंगल में एक अच्छा। कामी नाम के राक्षस रहे।
1: अच्छा।
0: वो कामी नाम के राक्षस
1: अच्छा
0: कथे कैसे का कथे मनखैन मनखैन बोला सुगंध आवत है।
1: हाँ जी।
0: अवश्य कोई जंगल में आए है वे।
1: हाँ जी।
0: ऐसे कई के पर रूपला राजा के भेष बना के
1: अच्छा
0: और चली इस कहा जहाँ पांचों भाई पांडव बैठे रहा है।
1: अच्छा
0: ये दे रहेगा थे ना

छत्तीसगढ़ी पंडवानी में गायन की दो शाखाएं प्रचलित हैं, कपालिक और वेदमती शैली। इन दोनों शैलियों में सबसे ज्यादा प्रचलित शैली है कपालिक, जो शास्त्रीय कथा को लोक रंग के नए परिधान देकर पूरे आत्मविश्वास के साथ हमारे सामने लाती है। इस शाखा के गायकों ने समयानुकूल लोक रुचि के वाद्य यंत्रों का समावेश कर इसे रुचिकर बनाया है और गायकी की नई आक्रामक शैली का आविष्कार किया है। पंडवानी की ये आकर्षक शैली गायन के साथ आंशिक नृत्य नाटक का भी आनंद देने में पूर्णतः सक्षम है। इस विधा में संगीत, भावाभिनय और कथा व्याख्या तीनों का अनुपातिक समिश्रित सौंदर्य सचमुच सम्मोहन पाश में बांध लेता है श्रोताओं को। इस शैली की सबसे प्रख्यात कलाकार हैं विदुषी पद्म विभूषण तीजनबाई। पंडवानी की दूसरी शैली है वेदमती, जिसका अर्थ है शास्त्र पर आधारित कथा शैली, अर्थात महाभारत कथा पर आधारित शैली। छत्तीसगढ़ के पंडवानी लोक कलाकारों ने इसे छत्तीसगढ़ की सीमा से आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में स्थापित किया है। इन प्रमुख कलाकारों में पंडवानी के पितामह स्वर्गीय झाड़ू रामजी देवांगन, पूना रामजी निषाद, पद्म विभूषण विदुषी तीजनबाई, ऋतु वर्मा, विदुषी उषाबाई बार्ले, शांतिबाई चेलक आदि प्रमुख हैं।

0: कथा में की ना
1: है।
0: मैं अभिमन्यु के शादी करना चाहता हूँ। राजा विराट अपन कन्याला सुपुर्त करे।
1: हाँ भाई।
0: अरे कृपा सिंधु यदुनाथ तुम पांडव केरी प्रण

0: अर्जुन के पत्रिका पढ़ करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अर्जुन लिखे रे से जय मधुसूदन कुंज बिहारी, जय जय जय गोवर्धन धारी, भगत है तो नरतन तुम धरे हु, नाना चरित्र यमुनी बीच करे हु, अभिमन्यु के ब्याह हम कीन्हा, आए सादर यो दर्श मही दीन्हा।
1: हाँ।
0: वो लिख करके पत्रिका भेजी।
1: हाँ भाई।
0: अभिमन्यु लायो सुभद्रा।

0: घर तुझ का दैत्य बन में रहा मुलाकात होगी।
1: हाँ।
0: जननी सहित महतारी सुभद्रा के साथ
1: हाँ।
0: पहुंच जाते हैं पांडव के पास।
1: हाँ।
0: उकर कुल में जैसना शादी लिखेरी से निज कुल रीत ब्याह कराही अपन कुल के रीत के मुताबिक।

0: धृष्टद्युम्न,
1: हाँ,
0: शिखंडी,
1: हाँ,
0: राजा विराट,
1: हाँ,
0: उत्तरा कुमार,
1: हाँ,
0: और शंख,
1: हाँ,
0: और उपरोहित जौन रही से विराट के,
1: हाँ,
0: ये सब शादी के बाद में बैठिए,
1: हाँ,
0: सब विचार कर इन पांडव मन अपन कर्तव्य ला पूरा कर डरे हैं,
1: हाँ,
0: अब राजा दुर्योधन के कर्तव्य होते आधा राज पांडव कह दीना,
1: हाँ,
0: अब राजा दुर्योधन आधा राज देना चाहिए,
1: हाँ भाई,
0: कहने लगे कैसे किया जाए,
1: हाँ,
0: तो पांडव मन
1: हाँ,
0: राजा द्रुपद के स्तुति करी,
1: हाँ,
0: और किंड के महाराज में भेज दे के लाई,
1: हाँ,
0: अरे

और आइए अब चलते हैं बस्तर के मनमोहक लोक भावन वादियों में, जहां गूंजती है हल्बी, गोंडी, भतरी जैसे बोलियों में लोक स्वर लहरियां। बस्तर के भतरी भाग में प्रचलित लोक नाट्य यानी भतरा नाट्य उड़िया नाट एक गीतात्मक लोक नाट्य है। पौराणिक आख्यानों पर आधारित इस विधा में पात्र गा गा कर और नाच नाच कर संवाद प्रस्तुत करते हैं। आइए सुनते हैं ये भतरा नाट।

और इसी के साथ इस अंक का सफर यहीं तक। अगले अंक में किसी अन्य विधा के साथ पुनः उपस्थित होंगी। वाचन प्रीति यादव का, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजक पंकज मेश्राम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
2: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
4: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में। आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
2: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समतामूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
4: इसको हम समतामूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना। तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समतामूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना। अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
2: जी।
4: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
2: जी।
4: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
2: जी,
4: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
2: जी।
4: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
2: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
4: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
2: जी।
4: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
2: जी।
4: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
2: जी।
4: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े, और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दें। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है, इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
2: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
4: बिल्कुल।
2: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
4: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
2: जी,
4: है। ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
2: जी,
4: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
2: जी,
4: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है। इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
2: जी।
4: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
2: जी।
4: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
2: जी।
4: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
2: जी।
4: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
2: जी।
4: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
2: जी।
4: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
2: जी।
4: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
2: जी।
4: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
2: जी।
4: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
2: जी।
4: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
2: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
4: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
2: जी।
4: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
2: जी।
4: हैं, जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
2: जी
4: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
2: बिल्कुल।
4: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
2: जी
4: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है।
2: जी।
4: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है।
2: जी
4: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
2: जी
4: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
2: जी
4: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
2: जी
4: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है, और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
2: जी
4: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में।
2: जी
4: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
2: बिल्कुल।
4: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
2: जी
4: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है।
2: जी ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं?
4: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
2: जी
4: लेकिन इन वीडियोस में ऑडियो भी है।
2: जी
4: और इन वीडियोस में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है।
2: जी
4: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIET की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2: जी
4: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
2: जी
4: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
2: जी
4: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
2: जी
4: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो।
2: जी
4: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए।
2: जी
4: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो।
2: जी
4: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या? आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा।
2: जी जी
4: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
2: बिल्कुल।
4: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं।
2: जी
4: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
2: जी
4: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
2: जी
4: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
2: जी
4: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी सीआईटी एनसीईआरटी की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
2: जी।
4: तो ये भी एक हमारी पहल है
2: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
4: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप सीआईटी के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी। और एक और सरल उपाय है
2: जी,
4: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है। गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स सीआईटी एनसीईआरटी, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं
2: जी।
4: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
2: जी।
4: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
2: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
4: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
2: जी,
4: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
2: जी।
4: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
2: जी,
4: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
2: जी।
4: तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
2: जी।
4: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
2: जी। बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
4: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
2: जी।
4: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
2: जी।
4: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
4: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय प्रातः के 9:30 होने को हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सत्ते पे सत्ता के गीत और बताएंगे इस फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें।

श्रोताओं, फिल्म सत्ते पे सत्ता 22 जनवरी 1982 को प्रदर्शित हुई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म के निर्माता है रोमू एन सिप्पी और निर्देशक है राज एन सिप्पी। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रंजीता कौर और अमजद खान। अन्य भूमिकाओं में नजर आए सचिन पिलगांवकर, सुधीर लुथरिया, शक्ति कपूर, कमलजीत पेंटल, विक्रम साहू, आराधना, प्रेमा नारायणन, मधु मल्होत्रा, आशा सचदेव, कल्पना अय्यर और मैक मोहन।

श्रोताओं, फिल्म सत्ते पे सत्ता की कहानी सात सीधे साधे भाइयों रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे बड़े भाई रवि आनंद यानी कि अमिताभ बच्चन, जो अपने भाइयों के साथ जानवरों के बीच एक फार्म हाउस में रहते हैं, उनकी पत्नी इंदु यानी हेमा मालिनी के प्रभाव उनकी जिंदगी में आने से उनके प्रभाव से उनकी जिंदगी बदल जाती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब रवि के हमशक्ल बाबू के धूर्त चाचा रणजीत सिंह ने, जो किरदार अमजद खान ने निभाया था, द्वारा विकलांग उत्तराधिकारी सीमा सिंह यानी कि रंजीता की हत्या करने के लिए भेजा जाता है। कहानी बहुत ही रोचक और मनोरंजक दौर से गुजरती है और दर्शकों का मनोरंजन करती है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

श्रोताओं, फिल्म सत्य पे सत्ता की कहानी अमेरिकी फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स से रूपांतरित की गई है, जो स्टीफन विंसेंट बेनेट की लघु कहानी द सोबिन वुमेन पर आधारित है। फिल्म में अमिताभ बच्चन दोहरी भूमिका में नजर आए। कादर खान फिल्म में कथावाचक के रूप में थे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत किशोर कुमार, आर डी बर्मन और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, फिल्म सत्ते पे सत्ता के गीतों को गुलशन बावरा ने लिखा है, केवल दिलबर मेरे गीत को आनंद बख्शी ने लिखा। संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म के गीतों को गाया है किशोर कुमार, एनेट पिंटो, आशा भोसले, भूपिंदर सिंह, सपन चक्रवर्ती, दिलराज कौर, राहुल देव बर्मन और गुलशन बावरा ने। फिल्म के संगीत को काफी पसंद किया गया। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से काफी सफल रही और इसे अपने सदाबहार संगीत अमिताभ बच्चन के शानदार अभिनय के साथ ही सात भाइयों की अनोखी कहानी के लिए हमेशा याद किया जाएगा और आज भी दर्शकों द्वारा ये फिल्म बेहद पसंद किया जाता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में इस फिल्म का एक और गीत।

0: एक ही फिल्म से। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म सत्य पे सत्ता पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में हुए सड़क हादसे में भिलाई के 4 लोगों समेत 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए आज मतदान चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 पदों के लिए 96 मतदान केंद्रों पर 31,928 मतदाता अपने पदाधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 151 पदों के लिए 274 मतदान केंद्रों पर करीब 1,02,800 मतदाता वोट डालेंगे। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 से शाम 5 तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जा रहा है, जबकि पंचायत चुनाव में मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 तक मतपेटी के माध्यम से हो रहा है। पंचायत चुनाव की मतगणना मतदान के बाद संबंधित केंद्रों पर ही की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मतदाताओं से शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के इस अभियान का आयोजन 30 जून तक किया जाएगा। अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक और मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। ग्राम पंचायत, विकासखंड और जिला स्तर पर कृषक संगोष्ठी, कृषि चौपाल और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृषि वैज्ञानिक किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव तथा प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी देंगे। अभियान के दौरान किसानों को अपनी कृषि भूमि के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में भिलाई के चंद्राकर परिवार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा साच पास मार्ग पर हुआ, जहां पर्यटकों से भरी एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मृतकों में भिलाई मूल के एक दंपति और उनके 2 बच्चे भी

0: शामिल हैं। यह परिवार बेंगलुरु में रह रहा था। जानकारी के अनुसार दो परिवार डलहौजी से साच पास घूमने गए थे। वाहन के वापस नहीं लौटने पर जीपीएस के माध्यम से उसका पता लगाया गया। पुलिस और प्रशासन ने राहत अभियान चलाकर सभी शवों को बाहर निकाला। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना सामाजिक समरसता, सादगी और सकारात्मक मूल्यों को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन रही है। इस अवसर पर बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू भी सामूहिक विवाह समारोह में वैवाहिक बंधन में बंधे। उनकी बारात पारंपरिक बैलगाड़ी में निकाली गई, जो समारोह का मुख्य आकर्षण रही। इस बैलगाड़ी के सारथी उप मुख्यमंत्री अरुण साव बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए सादगीपूर्ण विवाह करना और बैलगाड़ी में बारात निकालना समाज के लिए प्रेरणादायी संदेश है। उन्होंने कहा कि यह हमारी लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है तथा नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सीख देता है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं आकाशीय बिजली भी गिरने की चेतावनी दी गई है। इसके चलते तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन समारोह में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गांव में अमराई यानी आम के बगीचे लगाने की परंपरा को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में आम का विशेष महत्व है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है और हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में हुए सड़क हादसे में भिलाई के 4 लोगों समेत 8 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलशन। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पुराने नगमे।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म साथी से, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। बोल मजरूह के हैं और संगीत है नौशाद का।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आरती मुखर्जी की आवाज में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। फिल्म का नाम है गीत गाता चल।

गुलशन कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पुराने नगमे। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार के स्वरों में गोविंद मुनिस के लिखे शब्दों को, और जिसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है आंसू बन गए फूल।

पिया का घर। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वरों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

गुलशन कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पुराने नगमे। लीजिए अगला नगमा सुनिए फिल्म उपहार से मोहम्मद रफी की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के, और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आई मिलन की बेला। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वरों में। बोल शैलेंद्र के थे और धुन थी शंकर जयकिशन की। अब लीजिए सुनिए गुलशन का अंतिम गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म है फर्ज़।

0: गुलशन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पुराने नगमे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड़दुम। इसमें आज सुनिए रामेश्वर और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट दो

लोक गीतों को कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन रहे थे रामेश्वर और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:59 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज की हमारी एक ही कलाकार हैं मशहूर पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। वे एक महान भारतीय पार्श्व गायिका हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ मराठी, बांग्ला, गुजराती और असमिया कई भाषा में गीत गाए हैं और संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन कल शाम यानी कि 31 मई को शाम हो गया। वे 89 वर्ष की थी। उन्होंने मुंबई स्थित लोखंडवाला आवास में कल शाम दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका शास्त्रीय गायन और पार्श्व गायन दुनिया में और रहती दुनिया तक उनकी आवाज़ सुरक्षित रहेगी और हमारी इन वादियों में गूंजती रहेगी और हम उनके साथ गाते गुनगुनाते रहेंगे हमेशा हमेशा। आज का ये कार्यक्रम पार्श्व गायिका को समर्पित है, उन्हें श्रद्धांजलि के तहत।

कभी कभी सामान्य श्रोता ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर गायक इतना सुरीला गाते कैसे हैं, और इसका जवाब है कि उन्होंने विधिवत शिक्षा ली होती है, और जो नहीं लिए होते उन्हें भगवान का साक्षात वरदान मिला होता है। जी हाँ, और आज हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की। सुमन कल्याणपुर के पिता शंकर राव हेमड़ी कर्नाटक के मैंगलोर के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। हेमड़ी उड़प्पी जिले के कर्नाटक के कुंडापुर तालुक में एक गांव है, वहां पे रहते थे। उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक शीर्ष पद पर कार्य किया और बहुत लंबे समय तक ढाका में तैनात भी रहे। माता और पिता सीता हेमड़ी के अलावा परिवार में 5 बेटियां और 1 बेटा था, जिसमें सुमन अपने बड़े भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। 1943 में उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने अपना संगीत प्रशिक्षण प्राप्त किया। सुमन की हमेशा से ही चित्रकला और संगीत में रुचि रही। सुमन कल्याणपुर मुंबई के प्रसिद्ध सेंट कोलाबा हाई स्कूल में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें चित्रकला में आगे की पढ़ाई के लिए प्रतिष्ठित सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। इसके साथ ही उन्होंने पुणे के प्रभात फिल्म्स के संगीत निर्देशक और एक करीबी पारिवारिक मित्र पंडित केशव राव भोसले से शास्त्रीय गायन सीखना शुरू किया। सुमन कल्याणपुर ने कहा था कि शुरू में गायन सिर्फ उनका शौक था, लेकिन धीरे धीरे संगीत में उनकी रुचि बढ़ती गई, और इस तरह उन्होंने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग से भी सीखना शुरू किया। इस तरह उनकी संगीत की शिक्षा बड़े बड़े गुरुओं से होती रही, और इस तरह संगीत में उनकी पैठ मजबूत होती गई, और उनका गायन इस तरह हमें बहुत ही सुरीला लगता है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की हमारी कलाकार हैं पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर के घर में हर तरह की कला और संगीत के प्रति झुकाव था, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए सख्त मनाही थी। फिर भी 1952 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने की पेशकश की गई और वो नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में सबसे पहले गाना गाया। उनका कहना है कि ये मेरा पहला और सार्वजनिक प्रदर्शन था, जिसके बाद मुझे 1953 में रिलीज हुई मराठी फिल्म सुक्राची चांदनी के लिए गाने का मौका मिला। उस समय शेख मुख्तार फिल्म मंगू बना रहे थे, जिसमें संगीतकार मोहम्मद शकी थे। शेख मुख्तार ने सुक्राची चांदनी गीतों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म मंगू के लिए 3 गाने सुमन कल्याणपुर को दिए गाने के लिए। हालांकि कुछ अज्ञात कारणों के कारण बाद में ओपी नैयर ने मोहम्मद शकी की वजह से ली और तीनों गीतों में से केवल एक लोरी कोई पुकारे धीरे से मुझको को ही फिल्म में रखा। इस तरह उनकी गायकी का सफर धीरे धीरे शुरू हुआ और वो फिल्मों में गाने लगी। एक बहुत ही शानदार गीत है, लीजिए सुनिए सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, लोरी है ये, हम आपको सुनवाते हैं। इस गीत को हमने लिया है फिल्म दिल एक मंदिर है से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
3: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की हमारी कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर। फिल्म मंगू के तुरंत बाद सुमन कल्याणपुर ने फिल्म दरवाजा के लिए गाना गाया, और इसलिए आमतौर पर इसे सुमन कल्याणपुर की पहली हिंदी फिल्म माना जाता है, क्योंकि ये फिल्म पहले रिलीज हुई थी मंगू से पहले। फिर फिल्म आर पार के लिए मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त के साथ ओपी नैयर ने हिट कलाकारों की टुकड़ी के गीत मोहब्बत कर लो, जी भर लो, अज किसने रोका है को गाया। सुमन कल्याणपुर के अनुसार उनके पास गाने के लिए एकल पंक्ति थी, और उनकी सेवाओं का उपयोग इस गीत में एक कोरस गायिका के रूप में किया गया था। यह एकमात्र ऐसा गीत साबित हुआ जिसे उन्होंने ओपी नैयर के लिए गाया था। आइए सुनते हैं आर पार का ये गाना।

तलत महमूद ने सुमन कल्याणपुर को एक संगीत समारोह में गाते हुए सुना था। उनके गायन से तलत महमूद बहुत अधिक प्रभावित हुए। एक गायिका के लिए यह एक लंबी छलांग थी जिसने सुमन को गायन के क्षेत्र में स्थापित करने में काफ़ी मदद की। तलत महमूद ने अपने साथ युगल गीत गाने के लिए सहमत हो गए जिससे फिल्मी उद्योग के जहन में उनका नाम बैठ गया और सुमन कल्याणपुर को फिल्म उद्योग में नोटिस किया जाने लगा। उन्होंने फिल्म मंगू, कोई पुकारे धीरे से तुझे गाना गाया। कल्याणपुर ने मियाँ बीबी राजी, बात एक रात की, दिल एक मंदिर है, दिल ही तो है, शगुन, जहां आरा, सांझ और सवेरा, नूर जहां साथी और पाकीजा। उन्होंने संगीतकार शंकर जयकिशन, रोशन, मदन मोहन, एस डी बर्मन, एन दत्ता, हेमंत कुमार, चित्रगुप्त, नौसाद, एन एस त्रिपाठी, गुलाम मोहम्मद, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए अनेक गीत गाए। यदि हम उनके गानों की लिस्ट सामने रखना चाहें तो हम आपको बता दें कि उन्होंने 3000 से अधिक फिल्मी, गैर फिल्मी गीत, गजल और भजन गाए हैं। आइए सुनते हैं उनका गाना, नसीब फिल्म का गाया ये गाना।

कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सुमन कल्याणपुर को 2023 में भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार 2009 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा संगीत में उनके जीवन भर के योगदान के लिए प्रदान किया गया। सुरसिंगार सम्मान हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय गीतों के लिए उन्हें एक प्रतिष्ठित पुरस्कार 1966 और 1970 में दो बार मिला। गादीमा पुरस्कार प्रतिष्ठान उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया ये पुरस्कार देकर। आज सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं है, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है और हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए यही कहेंगे कि वैसी गायिका न दूसरी थी न हो सकती है। लता मंगेशकर जी से उनकी तुलना की जाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी एक विशिष्ट और अलग पहचान बनाई और राम भजनों को विशेष प्रेम से और अनुग्रह से उन्होंने गाया। यदि आप हमसे पूछें तो हम यही कहेंगे कि उनके द्वारा गाए गए राम भजनों को सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। श्री राम ईश्वर अपने चरणों में उन्हें स्थान दे, ऐसा कहते हुए हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज की हमारी कलाकार थी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:31 में हैं। लीजिए अब सुनिए पाटा केंजा कार्यक्रम में लच्छुराम और साथियों के गाए गोंडी गीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पाटा केंजा कार्यक्रम में लच्छू राम और साथियों के गाए गोंडी गीत।

0: फाटक एंजा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लच्छूराम और साथियों के गाए गोंडी गीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए आज मतदान चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 पदों के लिए 96 मतदान केंद्रों पर 31,928 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 151 पदों के लिए 274 मतदान केंद्रों पर करीब 1,02,800 मतदाता वोट डालेंगे। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जा रहा है, जबकि पंचायत चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम से हो रहा है। पंचायत चुनावों की मतगणना मतदान के बाद संबंधित केंद्रों पर ही की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मतदाताओं से शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना तथा पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने इस अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से एक व्यापक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गांव में अमराई यानी आम के बगीचे लगाने की परंपरा को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में आम का विशेष महत्व है। महोत्सव में देशभर के 400 से अधिक किसानों ने आम की 250 किस्मों के लगभग 2000 प्रदर्शन प्रदर्शित किए। इस दौरान आम की विभिन्न श्रेणियों की प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम ने धमतरी जिले में पुलिस की पाठशाला का लोकार्पण किया। पुलिस की पाठशाला में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी किताबें निशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। यह लाइब्रेरी उन गरीब और मेधावी विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन संसाधनों और पुस्तकों के अभाव में नहीं कर पाते। लोकार्पण अवसर पर पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम ने कहा कि यह पाठशाला शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिनों तक तेज हवा चलने के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने में होने वाली देरी के कारण जून के पहले पखवाड़े में हीट वेव चल सकती है। आने वाली नमी बस्तर में भारी

0: गर्मी को रोकेगी, मगर मध्य और उत्तरी इलाके पहले पखवाड़े में गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की रफ्तार कम हो रही है, जिसकी वजह से इसके छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावित तारीख आगे खिसकती हुई नजर आ रही है। कांकेर जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 32,60,000 रूपये से ज्यादा कीमत की चोरी का सामान और वाहन बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है, जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी, यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान, बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 बजे तक, तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोक साहित्य पत्रिका मूचो माटी। संपादक हैं भरत कुमार गंगादित्य।

0: मजबाटी कार्यक्रम सुनतो जम्माय दादा दीदी मन के मजबाट ले खुबे खुबे जुहार। दादा दीदी मन तुम्ही तो जाना आसचे की मोचुमाटी लोक साहित्य पत्रिका ने आमी नगत नगत गोटवाट के आमचू रीति रुसुम बोली भाषा जो कैक विधा जसन कहनी आए ठसा आए कविता आए ये सब आए के धुरुन भाती आमियों से। तो ये आजी जो लोक साहित्य पत्रिका ने मैं धरुनीले से सबले पहिल गोंडी कहानी ये कहानी के आम चलगे अमरासोत भाई संतुराम आले ये कहानी के सुनो।
1: पीट पीटल राम अचो नाने कांतले गोतो और तो कोडाते।

तो बगा बगा कोडा परी तले रा तो कलपंज भूटला भूम तेले रा तो नारसीवा चंता कलपंज ले रा तो हुड़ा टेगा रेह तुर ले रा कोडा तोन तो कोडा तुन गुड्डुम मिना कोडा तुन रेह पुर रेह ची तुर ले रा ने ड्रा बाता एगा लाचता हुड़ा टें देते देते कसेलांग बातां पयाटिन दूर ले रा गातो नार मेटरुन कसेलांग वही हिंदूर ले रा गातो नार सीवा चुनता कल्पन ले गो तो तो बस तेरा निस्तेर तोर कहना घुड्डुम मिना पिर्री चीतूर ले रा गातो कसेलांग ओन दूर ले रा गातो हुड़ाटे चुच्चाई हुड़ाटे कसेलांग अगर तेह तुर चुच्चे चुच्चे का चुच्चाई कल्पन तुन पिर्री भोर उड़िया इन तोर ले रा और तो पर एक वितिन

गड़ा बगा बरी तुरलेरा आगा हुड़ा टही गकड़ा मटा हाकणे रेत रकोडा आगा तोटो रांडे मरमिंग की दुंगलेरा योयोंग पोयोंग भूमिरो कम कबादर को गोल पिटे योयोंग पोयोंग भूमिरो कम कबादर को गोल

깜깜하다 얼꽁고래 삐때 여용게 뽀용부미래 깜깜하다 얼꽁고래 삐때 여용게 뽀용부미래 인탈레라 아가톨라 야카르 힌탈레고톤 두미레 두크르타밋 카로 깜깜하다 얼꽁고래 삐때 두미레 두크르타밋 카로 깜깜하다 얼꽁고래 삐때 두미레 두크르타밋 카로 인탈레라 गुरारे एलेवा पीरीरो ऐदा दो टटटरंग किलिन तालेरा गुरारे एलेवा पीरीरो ऐदा दो टटटरंग आ सिलया करहिं तालेरा ओयोंगे पोयोंग भूमिरो इकम कबादर को गड़ पेटे ओयोंगे पोयोंग भूमिरो इकम कबादर को गड़ पेटे ओयोंगे पोयोंग भूमिये इन तालेरा अब तो ले गुत्तों तो रांडे तो सगा सी दुल वही इन तलेरा ओ तो हुआ बंडरे दो सिन पास की इन तदम हुआ टोटो रांडे।

0: ठियाँ, ए खोली ने ठिया ठिया, हुन खोली ने ठिया, पाइक बाबू की छेरा धर ली से अस्पताल ने निया।
1: छेरा धर ली ना।
2: हाले घटक वाले वाले सांगे से ऐसा कुकड़ी के कोलिया खाद ली, कुकड़ी के कोलिया खाद ली, कोलिया के धर ली बाग, कुकड़ी के कोलिया खाद ली, कोलिया के धर ली बाग, बड़े मछली नानी खाद ली, बड़े मछली नानी खाद ली, जीव ना लाडू चपा।
3: तो आले मैं सांगे से घरे नहीं आए रांधा, दुआरे भैंसा बांधा, घरे नहीं आए रांधा, दुआरे भैंसा बांधा, माटी के खोड़ ले तो कांदा, नहीं खोड़ ले गल गलिया
2: कांदा।
0: मोचो लगे आसे फाटलो पेन नी लगाए मैं सेन, मोचो लगे आसे फाटलो पेन नी लगाए मैं सेन, डारा माडो ने बिया हुआ नी लगाए मैं टेन।
1: खंडिया पालचो भंडिया भाचा, शोषण पालचो गाय, खंडिया पालचो भंडिया भाचा, शोषण पालचो गाय, आड़ी सियान संगे गुरिया गातला, अच्छा पब्लिका।
3: आले मुझे लगे आसे गोट उठा सा, सात समुन सोला धार नकली कुची तार, सात समुन सोला धार नकली कुची तार, खेना बिची गुड़ा उछाए भूल लगाएगा।
2: आले भाई को टक सांगे से, मन भरने सगा बना लो, मन भरने सगा बना लो, भूई होली बाटा बाटा, मन भरने सगा बना लो, भूई होली बाटा बाटा, हर एक काजे फेर नाचबे घसुन खजरी लाटा।
0: कंगी देन दे दर्पण देन दे झिटका मुंड के कोर, कंगी देन दे दर्पण देन दे झिटका मुंड के कोर, डारा पाना के उसान देन दे मैना भाई थैला पेट के भर।
2: तो इतरो अच्छा अच्छा ठसा मन के आमी सांगते रलु, सफाई सुन लु बोले, आरो गोटक सारा सरी बेरा गोटक ठसा मैं बोले सांगुन। उंचो कुकड़ी भाईग मानी, उंचो कुकड़ी भाईग मानी, देश से सोंचो गार, उंचो कुकड़ी भाईग मानी, देश से सोंचो गार, काली चो बुला मांगा खाया आजी होलो ठसा के आमी ये था सांगते रलू, आरु ये ठसा मन के सफाई बनातो काजे आमी जुहू रलू, अनीता निर्मल, भरत यादव, योगेश साहनी, आरु मैं पूर्णिमा सरोज। तो आज जो ठसा आम के दिया विदा, आरु सफाई ठसा कुन तो भाई बहन मन के आम जो बाटले
4: जुहार। हाँ तो दादा दीदी मन, तुम के ये ठसा कार्यक्रम के सुनून भाती खूबे नगत लागली होती, काय काजे ये कार्यक्रम चेस नहीं रहे, और ये कार्यक्रम जे तुम्हें सुनते रला ठसा, एके आज ही संचालन करते रला पूर्णिमा सरोज, और देखा ठसा कार्यक्रम बोले होली अदय अमचो लगे आसे हल्बी ने कविता पाठ, ये कविता पाठ के अमचो लगे धरुनीला सोत भाई जितेंद्र जोशी, आले सुनो ए मंचो ये कविता पाठ के।
5: ये मंचो पहली कविता है, कविता चो शीर्षक है झूलन उठे रान, घड़ घड़ घड़ बादरी गरजे झूलन उठे रान, रुख राई जमा हरिक होला हरिक होत पान, घड़ घड़ घड़ बादरी गरजे झूलन उठे रान, रुख राई जमा हरिक होला हरिक होत पान, बादरी ये तो कि जानो न भाती बनने मजूर बासे, बूटा चो फूल फूटो न भाती खिल खिल खिल हाँसे, बादरी ये तो के जानो न भाती बनने मजूर बासे, बूटा चो फूल फूटो न भाती खिल खिल खिल हाँसे, घड़ घड़ घड़ बादरी गरजे झूलन उठे रान, रुख रही जमा हरिक होला हरिक हो तपान, बादरी गरज सुनन भाती हरिक हो तमैना, बादरी गरज सुनन भाती हरिक हो तमैना, चितर सांबर कोडरी भालू संगे संगे हरना, पानी के ये तोर जानन भाती लम्हा मुसा खोजत ठान, घड़ घड़ घड़ बादरी गरज झूलन उठे रान, घड़ घड़ घड़ बादरी गरज झूलन उठे रान, रुख राई जमा हरिक होला हरिक हो तपान, बादरी ये तो के जानन भाती बनने मजूर बासे, बूटा चो फूल फुटन भाती खिल खिल खिल हाँसे, हरिक होन कोयली कुह के कावरा करे काँव, घड़ घड़ घड़ बादरी गरज झुलन उठे रान। हरि के होन लेहरा देवत जंगल आरो झाड़ी, नदी की करे कल कल कल झुमन उठे बाड़ी। हरि के होन लेहरा देवत जंगल आरो झाड़ी, नदी करे कल कल कल झुमन उठे बाड़ी। कोसरा मडिया चिकमा संगे लेहरु न पड़े धान, घड़ घड़ घड़ बादरी गरज झुलन उठे रान। घड़ घड़ घड़ बादरी गरज झुलन उठे रान, रुख राई जमा हरिक होला हरिक होत पान। बादरी संगे चमकुन उठे दखानो बिजली रानी, बादरी संगे चमकुन उठे दखानो बिजली रानी। किंजरुन किंजरुन चमकुन चमकुन दे से खा पानी। बादरी संगे चमकुन उठे दखानो बिजली रानी, किंजरुन किंजरुन चमकुन चमकुन ए से दखा पानी। पांडकी गुड़ा ने घुरन बले निहाय एबे घाम, पांडकी गुड़ा ने घुरन बले निहाय एबे घाम। घड़ घड़ घड़ बादरी गरज झुलन उठे रान, घड़ घड़ घड़ बादरी गरज झुलन उठे रान। रुख राई जमा हरिक होला हरिक होत पान। पानी संगे राने कुलिया कांदा संगे बोड़ा छाती, पानी संगे राने कुलिया कांदा संगे बोड़ा छाती। हरिक होन बेड़ा खाड़ा चो जागन उठे खेती, हरिक होन बेड़ा खाड़ा चो जागन उठे खेती। हरिक होन नाचन उठत खेती अर किसान, घड़ घड़ घड़ बादरी गरजे झुलन उठे रान। घड़ घड़ घड़ बादरी गरजे झुलन उठे रान, रुख राई जमा हरिक होला हरिक होत पान। मुझे दूसरा कविता आए परिवार नियोजन पर। हामी दुई हम चो दुई दुई ले आगर के भई नहीं, हामी दुई हम चो दुई दुई ले आगर के भई नहीं। नानी कुटुम सुटुम मुटुम बड़े कुटुम घोड़ा, नानी कुटुम सुटुम मुटुम बड़े कुटुम घोड़ा। नानी कुटुम अच्छा रहे बड़े कुटुम पोहड़ा। हामी दुई हम चो दुई दुई ले आगर के भई नहीं, हामी दुई हम चो दुई दुई ले आगर के भई नहीं। एक ने दुख दुख दुई ने सुख, तीन ने झगड़ा कली तीन रे ऊपर हाय मय मरुन गेली। एक ने दुख दुख दुई ने सुख, तीन ने झगड़ा कली तीन ले ऊपर हाय मई मरुन गेली। हामी दुई हम चो दुई दुई ले आगर के भई नहीं। नानी घरे न्याय दंड बड़े कुटुम ने लंद फंद, नानी घरे न्याय दंड बड़े कुटुम ने लंद फंद। नानी कुटुम ने साफ सफा बड़े कुटुम ने गंध, हामी दुई हम चो दुई दुई ले आगर के भई नहीं। नानी कुटुम के सबू पूरे बड़े कुटुम भूखे मरे, नानी कुटुम के सबू पूरे बड़े कुटुम भूखे मरे। नानी कुटुम सुखे रहे बड़े कुटुम झुरे, हामी दुई हम चो दुई दुई ले आगर के भई नहीं, हामी दुई हम चो दुई दुई ले आगर के भई नहीं। दखानु होलू आमे एबे सौ करोड़, दखानु होलू आमे एबे सौ करोड़। जीवना काजे दखानु एबे होय से तोड़फोड़, दखानु होलू आमे एबे सौ करोड़। जीवना काजे दखानु एबे होय से तोड़फोड़, हामी दुई हम चो दुई दुई ले आगर के भई नहीं। कुटुम्ब बाड़लो जुगे कमाली होली कम, कुटुम्ब बाड़लो जुगे कमाली होली कम। असन समय ए दे दखा नी पूरे सागलोन, असन समय ए दे दखा नी पूरे सागलोन। हामी दुई हम चो दुई दुई ले आगर के भई नहीं। उठू चेतु जागू नहाले बाड़े दे जुगे भार, उठू चेतु जागू नहाले बाड़े दे जुगे भार। समय आर तो के नी चेतले जाऊं ते धारे धार, हामी दुई हम चो दुई दुई ले आगर के भई नहीं। लेखा लेखी के नी करूँ हामी भीन, लेखा लेखी के नी करूँ हामी के बे भिन। लेखा लेखी लेखा ले जुगे लेखी कमाए सत असन ईली दिन, लेखा लेखी के नी करूँ हामी जुगे भिन। लेखा लेखी ले जुगे कमाए सत लेखी, लेखा ले जुगे लेखी कमाए सत असन ईली दिन। हामी दुई हम चो दुई दुई ले आगर के बही नहीं। मचो आखिरी कविता आए पर्यावरण पर। हम चो जीवना यही आयरान, हम चो जीवना यही आयरान। एक ही तुम्हें बचाओ भगवान, लेहरा मीरो पानी मीरो दातुन संगे पान। हम चो जीवना यही आयरान, एक ही तुम्हें बचाओ भगवान। लेहरा मीरो पानी मीरो दातुन संगे पान। बादरी दखानु कसन ऐसे रान के दखुन हरिक होयसे, बादरी दखानु कसन ऐसे रान के दखुन हरिक होयसे। किंजरुन किंजरुन चमकुन चमकुन दे से पानी चो दान। हम चो जीवना यही आयरान, एक ही तुम्हें बचाओ भगवान। लेहरा मीरो पानी मीरो दातुन संगे पान। हम चो जीवना यही आयरान, एक ही तुम्हें बचाओ भगवान। चाउर साग चो होली से कंटाल, छाती बोड़ा बोले हो बेसुकाल। चाउर साग चो होली से कंटाल, छाती बोड़ा बोले हो बेसुकाल। भुकचो मारे मूसा चुटिया उठान दखसत कान। हम चो जीवना यही आयरान, एक ही तुम्हें बचाओ भगवान। लेहरा मीरो पानी मीरो दातुन संगे पान। हम चो जीवना यही आयरान, एक ही तुम्हें बचाओ भगवान। रान ले आने दे कुलिया कांदा ते भी चेगे दे आज चुरांदा, रान ले आने दे कुलिया कांदा ते भी चेगे दे आज चुरांदा। तुई हम चो इतरी बिनती मान, नहाले तुच लगे दे से ठान। हम चो जीवना यही आयरान, एक ही तुम्हें बचाओ भगवान। लेहरा मीरो पानी मीरो दातुन संगे पान। पड़िया जाय से बेड़ा खाड़ा न्याय हम के भूती बाड़ा, पड़िया जाय से बेड़ा खाड़ा न्याय हम के भूती बाड़ा। पान दासुन संग दातु दारू पतर ने बाड़े से हम चो मान, पान दासुन संग दारू पतर ने बाड़े से हम चो मान। हम चो जीवना यही आयरान, एक ही तुम्हें बचाओ भगवान। लेहरा मीरो पानी मीरो दातुन संगे पान हमचो जीवना यही आय रान एक तुम्हें बचाओ भगवान। रान ले आने दे सर की सेवना तेबे चले दिए आमचो जीवना। रान ले आने दे सर की सेवना तेबे चले दिए आमचो जीवना। निया हम के और दूसर काम हमचो जीवना यही आय रान एक तुम्हें बचाओ भगवान। लेहरा मीरो पानी मीरो दातुन संगे पान हमचो जीवना यही आय रान एक तुम्हें बचाओ भगवान। लेहरा मीरो पानी मीरो दातुन संगे पान।
4: तो दादा दीदी मन का है रसिया ये कविता पाठ के सुन लू और ये आमचो लगे हल भी कविता के सुनाते रला भाई जितेंद्र जोशी। तो असनी फेर कविता कहनी ठसा असन कैक ज्ञानचो गोठ मन संगे मचो माटी लोक साहित्य पत्रिका धरून तुमचो पूरे आमी कोनी दिने फेर अमरवा तो जातो पूरे मौके दिया बिदा। मचो माटी लोक साहित्य पत्रिका सुन तो सब पाए लोग के मचो बाटले खुबे खुबे जुहार।

आप सुन रहे थे लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी। इस कार्यक्रम के संपादक थे भरत कुमार गंगादित्य। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इसमें दोपहर के 12:30 बजे हैं।

0: हाँ, तो घर द्वार कार्यक्रम सुन तो गांव का बहन मन के दीदी मन के जवनी संगवारी मन के मैं मैनमती करे से जुहार आर फिर रेडियो कटा कटा बसलो नान नान पीला मन के मोचे बाटले खूबे खूबे माया। तो देखा बहन मन तुमन मन तो अमर लास आर फिर देखे संगे संगे मैं का एक ठन गोड बात और ज्ञान ध्यान चो गोड बले धरुण भाती ऐसे। तो देखा असनी ची आज देखा घाम बेरा बले चले से आर फिर जैसा नौ तपा बलुआ थोसन खूबे घाम बले बेरा चले से मंत्र के बेके बे संज बेरा पानी बले मारून दे से। तो असन बेरा काय हो से कि आम चो देह हाथ पाए के खिंडिक नुकसान बले हो सके से स्वास्थ्य चो दंड बले हो सके से हुनी काजे आम के असन बेरा ने आप लो स्वास्थ्य चो ध्यान संगातुर खूब जरूरी है बोलो ने पीला हो कि सियान हो कि मेहरार हो सफा लोग के आप चो देह हाथ पाए चो ध्यान संगातुर है और एचो काजे जोन बले पौष्टिक जिनिस हो से हुन मन के खाओ तो रहे और घाम ने अगर घाम ने बुलतोर पहल खिंडिक एक दुई गिलास पानी नाले हुन पेज जोन रह से हुनके खाउन भाती घाम ने निसकतो रहे और जुगे जरूरत पड़ली तेबीच निकलतो रहे नाले हुन गमछा और नाले हुन छाता छतड़ी धरुन भाती घाम ने निकलतो रहे। बोलो ने आमी कमिया लोग के तो काम पड़ूची आए तो हुन चो काजे आम के नानी नानी तैयारी संगातो रहे और गोटक तैयारी संगाउन भाती बोलो ने नान नानी ध्यान संगालो ने आमी बड़े घाम ले बड़े बीमारी मन ले और जोन बोले नानी नानी जोन अडरा हो से नुकसान मन हुन चोले बोले हमी बाचुक सकूं से। तो देखा बहन मन असनी ची मैं बोलते रहे कि पीला मन जसन की घाम ने खूब बुल सोत हुन आमा चो जोन रह से आमा बगीचा थाने जाऊन भाती हुन काचा काचा आमा खाए सोत और घरे उन भाती पानी पीऊन दे सोत तो हुन बोले हुन पीला मन जो स्वास्थ्य का जे नुकसान करे से। तो पीला मन के बोले सांग तो रहे हुन मन के अच्छा अच्छा टक्कर सिखा तो रहे कि आप लो देह हाथ पाए चो ध्यान संगा तो काजे हम के बोले खिंडिक चेतु रह तो रहे और उनके घाम ने बोल तो काजे उन मन के मना बोले कर तो रहे और जैसन उन मन गाम घाम ने खेल सोत जाले तुरते एवं भाती सीतर पानी के निपियोत खिंडिक पसना सुखो हुंचो पाछे पानी नहाले पेज पीतो रहे। असन नानी नानी गोट के आमी ध्यान संगालू जाले आमी घाम चो होतो बीती कैक ठन रोगी बीमारी ले आमी बाचुक सकूं से। तो देखा बहन मन ये तो होए से कि जसन की गोठ मन में सांगे से मंत्र संगे संगे और भले गोठ मना से आले गोठ मन के सुनूं देखा।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
3: सो बेड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दुरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोलावेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चावेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दुरकिता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरो गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरो गाड़ी असित के सस्ता दोर की ता।
0: हाँ तो भाई मन ये तो रहे गोठ मन और फिर देखा आजकल घाम बेरा है पीला मन चो घाम बेरा चो छुट्टी भले आसे और कोनी कोनी बाजे कोनी कोनी बाटे पीला मन हुन शीतकालीन बोलो ने घाम चो जोन शिविर मन लगू है हुन ग्रीष्मकालीन शिविर मन हुन थाने बले हुन मन जाऊन भाती कैक ठन हुनर मन के हुन मन सीख सोत बले ने। तो असने सीखुन भाती हुन मन चो जोन ये तो क्लास काजे हुन मन चो तैयारी बले हो जाए से। तो देखा गोट तुम्हें गोठियाते रहें दे मंतरे गोटों को गीत सुना फिर पाछे हमें गोठियावा हाले।

0: हाँ, तो बहिन म एकाए सुन्दरी गीत रहे अरू आमचो चितरकोट छु अरू आमचो बस्तर राज्यो ये गुणगान करते रहने अरू आमचो इंद्रावती नदी छु मल्ल ने कितरो सुंदर ये गीत रहे और ये गीत के गाते रहत भद्रु कश्यप अरू हुंचो संगवारी मन तो देखा गीत गोविंद अरू रतो बस्तो आमचो काम बुता है सब पाए आमचो बस्तर राज्य जो ना गोटक चीना बाना आसन हो से और फिर देखा इथा चो आमचो जित्रो बले काम बुता है हूं तो अच्छा ले हो जाए और संगे संगे सफाए काम ने मेहरार मंचो बोले बढ़ून चढ़ून हाथ रहे से तो असनी चीज आमचो लगे गुटो को भेटवार्ता से जोन था ने आमचो बहिन भारती कश्यप हूं सिलाई करून भती का एक ठन आप लो रोजगार चो मूर बोले करला सोत और लोग मन के सिखाए सोत बोले तो वाले हूं मंचो गोट मन के हमी बहिन मन बोले सुनू और उन संग कसन कसन हूं बारती करला ये गोट मन के जानू बोले तो वाले सुनू भेटवार्ता
1: रेडियो सुन तो भाई बहन खूबे खूबे सेवा जोहार जसन की आमी कई कसन महिला स्वसहायता समूह बनानबाती स्वरोजगार करतो असन बहिन मन संग गोट बात करू से जे चोला आम की जानू खोए से कि उन मंचो जोन जीवना ने आर्थिक उन्नति बल ने दुई पैसा कसन कमानी कर सोत ये सब गोट बात करूँ से तो असनी आज मैं फिर मोटुक महिला स्वसहायता समूह चुआत तो ये मन संग गोट बात करें सब ले आगे तुझो नाव आरु गाँव चो नाव
2: सबके जुआर मचो नाम भारती कश्यप है मैं केसापुर कोटवार पारा चुए
1: अच्छा तो भारती दक तुम जो बोले स्वसहायता समूह का है नाम है स्वसहायता
2: समूह स्वसहायता समूह जागृति महिला स्वसहायता समूह
1: अच्छा कितलो लोग आसा जा लेता ने
2: समूह ने 10 जन आसो
1: 10 जन हाँ। कितलो बरख कसन होली बना लोर
2: होली 2016 चुए दादा
1: 2016 अच्छा बोले ने अभी तो 6-7 साल मतलब 8-1 साल हो तो ये समूह ने काय काम हो तुम छो
2: समूह ने लोन धरून भाती पहला जान उन चक्री निधि बलुआ 15,000 उन समूह के मजबूत कर तक आज मिरली जैसन कई खर्चा का असन का जे उनके बाद फिर 6 महीना बाद जानू CIF ऋण बलुआ गांव ने संगठन से उताल 60,000 दिला तो हम 10 दीदी जानू आधो दीदी नहीं बल्ला मतलब हम 5 धरून तुम धरा बता हम 6 दीदी 10-10 हजार रूपए बांट लू
1: अच्छा
2: उनने फिर मैं सिलाई मशीन आन ले
1: अच्छा
2: मैं सिलाई करूँ
1: अच्छा सिलाई करूँ हाँ। अच्छा बोले आगे बोल तो कोई सिलाई सीख ली होती
2: हाँ आगे सीख रहे मैं घर ले ची सीख रहे हैं पंचायत द्वारा
1: अच्छा
2: 3 महीना जो सिखा तो रहे हूँ नीति में सीख रहे
1: अच्छा प्रशिक्षण पूरा धर रहे
2: हाँ
1: हाँ तो बोले ने 10,000 समूह ले धर ले
2: हाँ।
1: और उनको सिलाई मशीन
2: हाँ।
1: अच्छा बोले ने ये भी बोले चले से काम
2: हाँ ये बल चले से
1: अच्छा तो सिलाई काज तो और बोले कहीं कहीं जमक लागे से
2: हाँ
1: काय काय लागे से जले
2: मैं दुनी सिलाई कपड़ा लेन जसन अस्तर फाल लगवाए तो मैं हुन बीती खट्टा अनुरवा जसन पाचे 6 महीना होलो के फिर बैंक ऋण मिरली 1 लाख रुपया
1: अच्छा
2: तो हुताल 20,000 धर ले और उन बाकी सामान आन ले जरूरत सामान है
1: तो ये भी कहीं दुकान असन खोल ली
2: हाँ दुकान फिर एक हर फिर उन पैसा छूट लोग जानू मके फिर दिला आम के 2 लाख रुपया तो फिर उतल में 30,000 धर ले और फैंसी दुकान बल खोल ले
1: अच्छा हाँ बोले पूरा कपड़ा वगैरह
2: हाँ,
1: संग बोले अच्छा तो जसन की काय काय भी थी बोले ने सिलुआस जाले तू
2: मैं जन बाल लेकी चाहे सब सिलुआ सूट ब्लाउज
1: अच्छा पूरा
2: हाँ
1: हाँ तू बोले ने कपड़ा अनुवाद की तू खुद चो दुकान ले कपड़ा घेन
2: नहीं हूं मन अपन मन अनुवाद और असन सिलून दे बोलू डिजाइन वगैरह संगवा तो मैं उसन बनाऊ है
1: अच्छा हाँ तो आजकल तो खूब डिजाइन वगैरह मन रहे से ये सब चीज की तू जाने से
2: हाँ जाने
1: अच्छा तो ये जुगे करून बोले ने काय चीज चो सिलाई महिला मन कराए सो
2: ब्लाउज ची ज्यादा सिलावा दादा
1: अच्छा ब्लाउज ज्यादा सिलाए सर तो ब्लाउज चो बोल तो कई कसन डिजाइन मन रहे से
2: हाँ।
1: और सब चो अलग अलग रेट बोल रहे से होते
2: हाँ, अलग अलग रेट
1: तो कसन हिसाब है तुम चो
2: जसन सोजे अस्तर ब्लाउज सोजे दिला जाले हुन चो 150 रुपए धरू है और कौन दीदी वात और आजकल मोबाइल होली सुता डिजाइन दखुआत और संगवाते दसन असन डिजाइन बना दे बोलून खिनि टाइम ज्यादा लागत भी थी डिजाइन चो 20-30 रुपए ज्यादा धरू है
1: अच्छा
2: पूरा ब्लाउज 300 रुपया अरे हाथ हाथी घर डिजाइन बल्ला जाले 350 रुपए धरू है
1: अच्छा
2: गाँव चो हिसाब
1: गाँव चो हिसाब अच्छा तो ये जो सिलते रहे ने जसन ब्लाउज ज्यादा सिले हैं बोलते एक दिन ने कितना सन सिल से
2: एक दिन ने मतलब मैं बुता बुती करुन भाती बस लेने 11 बजे तक हम 5 ठन सिलवे डिजाइन भी तीखी निकलेट लगवे
1: लेट लागे से असन सादा बीती
2: सादा बीती वाले ने मैं आगे 10 12 ठन सिलते रहे
1: अच्छा
2: हां एबे डिजाइन बोलवा तो उनके लेट लगवे
1: अच्छा तो सिल तो तान तू खुद एकला करवास क्या और बोल संग
2: नहीं एकला करवा
1: एकला है हां तू एकला से 10 12 ठन हां अच्छा ये तो अच्छा है तो दकी सिलाई चो जोन काम कर सी बोलिस तू फिर फैंसी दुकान बोले हाँ। तो दुकान बोले अच्छा चले से
2: हां जोन दीदी माने हुआ तो कपड़ा सिला फिर हम देखुआ तारू चूड़ी माला आसन नहीं हुआ
1: अच्छा अच्छा बोले ने ए तो जा तो लोग हां उन अच्छा उठे से बोले हाँ। सामान कहां लेने हुआ सर
2: ए तो सर लेने हुआ
1: अच्छा तो दक समूह ने जसन की तू तो सिलाई और फैंसी दुकान खोल लीस
2: हाँ।
1: बाकी जोन सदस्य मना
2: हुन मन बल्ला के कोनी ए छेरी व्यापार ने लगाला कोनी खेत ने लगावा बल्ला आप लहान अलग अलग धंधा सांगला दीदी मन
1: अच्छा अच्छा
2: एबे मैं समूह ने रोन सकरी महिला बल काम करू है
1: अच्छा
2: बाकी जोन नाम चो केसापुर गांव ने 23 समूह आसे हुन समूह में देखू है हुन मन के मतलब सांगवाए कि ये ताले असन पैसा निकरा लेने असन धंधा करा बोलन भाती सांग तो बीती है
1: अच्छा हां ये सक्रिय महिला जो काम
2: है सक्रिय महिला जो काम जन समूह नी बसे से हुन समूह बल जाऊन घर घर ले दीदी मन खाक दिवाए और जन लघु मन जो बस तो ठाना हुन लग बसान भाती हुन मन के सांग तोर
1: अच्छा हां हां तो जसन की बाकी जसन की बकड़ी और काय काय बोलिस कुकड़ी ये सब बोल कर सो ए बोल कर सो दे मन
2: हाँ बाकी दीदी
1: करे सो हाँ। अच्छा और जसन की कहीं खेती बाड़ी हिसाब ने
2: खेती बाड़ी बल करुआ सब्जी तो नहीं लगाते जोंदरा लगावा लाइन धान लगा बलून सांगवात जन कृषि सकिया सुन हुन मन संग बल बुलुक लगवा
1: अच्छा
2: दीदी जन खेते खेती करुआ थुन दीदी मन लग लगे उन सब सांगवा
1: अच्छा कहीं तू बलतरेस की उत्पादक समिति
2: हाँ। एबे जन पिछले बरक ले होली से उत्पादक समूह बलून आमचो केसापुर सिंहपाल संकुल ने 5 ठन उत्पादक समूह आसे गोडक नेंगा नारा से 2 ठन सिन बाहर आसे
1: अच्छा
2: और गोडक सिंहपाल और गोडक केसापुर
1: अच्छा तो ये ता काय काम है से काय कर
2: एता जानू जन नसनी जन दीदी मन लगे जानू खूब तेतर रुका से कोन दीदी काय जोंदरा लगाए से उसन दीदी चिन्ह अंकन करून भाती आम समूह ने जुड़ालो से 30 ले 35 जन दीदी के
1: अच्छा
2: मतलब हुन काम कर तो काजे फिर बाकी दीदी मन छथान ले सामान धरुआ बाकी ये काम कर तो काजे 35 दीदी जुड़ाल रा से
1: अच्छा
2: हुन सब आमी बैठक करुआम काय धरतराय कसन करतराय सर सुतर हुआम हम खेले जानू पैसा बल मिरली से धंधा करत का शुरुआत का जे 1,00,000 रुपया
1: अच्छा
2: और 50,000 चो सामान दिला से पूरा घेन तो सामान
1: अच्छा
2: वजन मशीन जितलो जरूरत सी चे सब दिला से
1: दिला से
2: दिला से
1: अच्छा तो ये हारक बोल कहीं असन होली घेन हाँ
2: घेन लू से
1: काय घेन ला सा
2: तेतर घेन लू
1: अच्छा तेतर
2: हाँ
1: अच्छा उनके फिर
2: घेनुन भाती फिर 2-3 कोचिया संग बात करून जोन था नाम के रेट होली उनके हुन कोचिया काम दिलू
1: अच्छा बिकलास बोला
2: हाँ बिकलू
1: अच्छा तो बोले ने ये था कसन फायदा अच्छा हो
2: ये शुरुआत रली गुने दादा 5-6 हजार असन होली
1: अच्छा
2: पूरा 1,00,000 बल नहीं लगा लू मतलब 50-60 हजार सामान धर लू उतलो आम खोली
1: अच्छा
2: जोन दीदी उता मेहनत कर रहा ये उरला काटा टंग रहा हुन मन के भूती जसन फिर
1: अच्छा हाँ हुन तो आए छी मोर ने घाट

0: पनि नि देतर
1: अच्छा
0: समूह छ धरुनभाती
1: धरुनभाती अच्छा ये कहाँ ए चबल कोन लग थाना से
0: हां ये दरबा
1: अच्छा दरभा से अच्छा नहीं तब तक घेनुन बाती संगा तोर गांव ने संगा उकलाई पड़े से ये चो कच कहीं ठान आसे तुम चल लगे
0: ए बस नी आप इस दिन खोल रहा से बात चले से बल बले सर बोलूं से मैं बेलू ताज बोर्ड मेंबर है ए पियो था ना
1: अच्छा
0: तो ये भी हुन का तो आप इस दिन खोल रहा से फिर सामान धरते के लेने गोटक जगह दखवा बोलू से
1: अच्छा हाँ हाँ तो ये सब काम कर तो काजे जसन की तुम जो स्व सहायता समूह ये उत्पादक समूह ये सब चला तो काजे बलेन कहीं प्रशिक्षण कहीं कोनी बाटे सन होली से
0: ये भी उत्पादक समूह का जे कुन लग प्रशिक्षण नहीं दिला से आय बोलते रहला कुन धन रायपुर कहाँ बोले बनाऊं दे बोलते रहो मात्र नहीं दिला से
1: अच्छा और समूह का जे
0: समूह का जे संकुल बलुआत
1: अच्छा।
0: मतलब हम जो सब दीदी मन का जे जन 300 समूह आसे 4000 दीदी जुड़ला सन तो हुन चुका गोड़ संकुल आसे चिंगपाल
1: चिंगपाल
0: हाँ तो काई छो उसन ट्रेनिंग होता है चिंगपाल करवा
1: अच्छा पूरा महिला मन होता
0: है हाँ महिला मन होता है
1: अच्छा
0: मीटिंग वगैरह हले बले
1: हुनी
0: चिंगपाल
1: अच्छा मीटिंग वगैरह बले कसन हो ऐसे महीना ने सप्ताह में साल में
0: ये चिंगपाल संकुल ने बले ने इसी मेंबर बोलुआ उनके जन संगठन ले गांव चो संगठन ले दुई जन दीदी चुनुन भाती समूह लोग चुनु रुआ तो हुन दीदी जानु महीना ने 21 तारीख के हर महीना बैठक हुआ है
1: अच्छा।
0: सिंहपाल संकुल ने
1: अच्छा
0: होता यात्रा फिर जैसे ऊपर ले काई स्कीम हुआ है काई योजना के बारे में सांगुआ तो हुन दुई दीदी सुनुन भाती एवं आप लोग गाँव चो दीदी मन के सांगुआ है
1: अच्छा
0: असन असन इसकी मिली से तुम असन करा बोलन बात
1: अच्छा हाँ तो भारतीय कश्यप सांग जसन की पढ़ा कितलो पढ़ ली थी जाल तुई
0: मैं दसवीं पास
1: दसवीं पास दक दसवीं पास पढ़न बात इतलो अच्छा काम कर से जसन की महिला स्व सहायता समूह उत्पादक समूह बना तो के बोले ने महिला मंचो गोटोक लगे जुआ हो तो रे सब काम कर तो बोले ने कसन महिला मंच रुचि अच्छा
0: अच्छा दादा आगत ले फिर कोई बोलुआत कोई दादा बाहर ही नहीं कर ले बले झगड़ा लागत रे काय लागत रे जसन ये भी सोचा था समूह होली उसन बेराले सब दीदी चू मुले यही चीज सुनक मिरु है कि नहीं यार ये समूह होलो बेराले ये बात बाहर ही निकलू से हम ये बात डंडिक बल जाऊं से असन कई होले ने घर ही ले बले झगड़ा नहीं लागत असन सब दीदी चू मुले सुनक हुआ
1: अच्छा हाँ हाँ बोले ने ये चो कारण बोले ने महिला मन बल दुई पैसा कमाए
0: और कहाँ कई हो लेने बलुआत तो, सब दीदी मन की हम ये दाए आप लोग घर चो दादा के पूछो ना आम सांगू आम बलुआत
1: अच्छा,
0: सांगुन जातोर
1: अच्छा सांगुन जातोर हाँ हाँ हा, ना ले आगे फिर
0: आगे
1: झगड़ा लड़ाई बोले
0: मतलब होते रहे
1: होते मतलब तो ये भी कहीं बोले ने कोनी तान गेने बोले ने कहीं तुम के घर ले कहीं डर नहीं रहे
0: नहीं नहीं रहे
1: बोले में असन महिला मंचो गोटोक झिझकपन बोले मेटली बोले
0: कई बार हम ही बोले रायपुर धमतरी असन ट्रेनिंग बल गेलू से
1: अच्छा अच्छा रायपुर धमतरी बंदे हाँ। कितलो लोग असन तुम चो समूह ले जाओ रला जाले
0: समूह ले नहीं असनी गांव ले कोनी दीदी के असन चुनन बात पटावा
1: अच्छा तू ही बोल जाओ रिसुता
0: हाँ हाँ
1: हाँ बोले ने
0: असन एपीओ चो जन आए हुन चो काज बोले गोटक प्रधान बागले बोले एपीओ आसे हुन चो काज बोले धमतरी प्लानिंग काज बोले जाओ रले मैं हुन एपीओ ने जानू सोचे सब्जी बीज अगर आप बिक तो बीतिया
1: अच्छा
0: ए किसान दीदी मन लगले हमारा तो केडर द्वारा उन काम होता बोले मैं जाऊँ है
1: बोले ये ताबल प्रशिक्षण तुमको दिला बोले हाँ हाँ तो आले भारती कश्यप तो इतलो अच्छा बोले तुम चो स्व सहायता समूह और खुद चो जो कपड़ा सिलाई बीती ये सब गोट के सांगली साले जुहार
0: जुहार दादा
2: हाँ तो बहन मन काय सुंदर ये गोट मन की बहन सांगते रहोत भारती कश्यप और ये मन संगे भेंट करते रहोत बलबीर सिंह कच्छ और ये मन स्व सहायता समूह जो इमन जो नाव रहे नव जागृति महिला स्व सहायता समूह बोलो ने हुन मिलुन मिसुन भाती बहिन मन सफाई मिलुन भाती कितरो सुंदर उन काम बूता करे सोत और ट्रेनिंग बोले धर सोत और ट्रेनिंग बोले दे सोत ने तो असन हम जो बहिन मन कहीं काम बूता ने पाठ कुती नहीं आसोत कहीं बोले काम के हुन मन मूर कर ला जले हुन के अच्छा ले करुआत और हुन के सफाई बाटे हुन गोट के आप लोग समझाऊआत बले और सीखुआत बले और अच्छा ले सीखुआत तो असनी हमनी जोन बहिन मन घरे आसू हुन मन बले गोटोक स्व सहायता समूह बनाऊन आप लोग जोन गोटोक समूह बनाऊन भाती कहीं बले नानी चुनी गोट के रोजगार के मूर करुन भाती पैसा हुन मन कमाउकला सकुआत तो देखा भाई बहन मन बलोने कोनी बले काम नानी नहीं रहे कोनी बले काम बड़े नहीं।

0: भले ने कोनी बड़े काम जो ना है उन चमूर नानीच काम ले हो है तो हुनी का जे हमके विचार करतो रहे कि कोनी भले नानी काम ले हमें मूर करूं और हुनी काम फिर पाछे बड़े हो जायसे और लाभकारी हो जायसे। तो देखा ई संगे संगे मुझे जातो समय भले हो से तेबे घर द्वार कार्यक्रम सुन तोर सब पाए गाँव करी बहन मन के दीदी मन के जहरिया संगवारी मन के मैं मैनामती करें से जुहार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर द्वार, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब समाचार हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
2: मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रूपये से लेकर 53.50 रूपये तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खर्च गोट का पुनः प्रसारण।
4: काश्तकार भाई बहन मन, घरे काई बोले साग हो, मांतर खिंडिक चटनी होले फिर नी सांगा, चर फर आए और इचो स्वाद बोले गोटक दूसर होए से, असने काके जर धरो नाहले जूड़ धरो, उन पहल मुर करे से चटनी के और चटनी ने फिर धनिया होले फिर नी सांगा ने, तो हुनी का जे दका आमी दुखू से कि एक ही चटनी हो साग हो ने तो आमी लगाऊ से, मात्र एक गोटक मसाला बीती फसल बोलाए जाए से, ये जो पाना तो आम के काम ऐसे ची, मात्र ये जो बीचा बोले आम के काम ऐसे। किसान भाई बहन मन, धनिया जो नंगत कमानी का जे आमी देखू आओ कि कौन सा समय हो ऐसे, एचो काजे खिंडी गरम समय लागे से, बोलतो ने एक यार घाम दाय नहीं, खिंडी खिंडी जसन शीतकार चो बोलो ने सर तो समय आमी देखू आओ नहाले मूर समय देखू हुन समय नगत हो ऐसे, असने एचो बीचा पका तो काजे बोले खिंडी गरम महा समय रहो तेबे हुन बीचा बोले सूखे दे। ए फसल काजे भूई चो तैयारी नगत कर तो रहे, असन तो ये सफाई माटी ने नंगत कमानी करुक सकूं, मांतर जोन लाल मटियार भूई हो से ए जोन धनिया हो से ए चुकाजे खूबे नंगत हो से, धान पाकुन भाती काटलो पाचे नंगत करुन नांगर धरतो रहे, बोलो ने गोटो 3-4 हर नांगर धरतो रहे और जोन माटी रहे से हुनके भुरभुरा बनात रहे, असने धान चो जोन सड़ई मन रहे से हुनके बले बेचुन भाती अलगे ने उन पकान देत रहे, और जोन पाटा रहे से हर नांगर ने बोलो ने एक हर नांगर धरलू तो हुन थाने पाटा चलात रहे, फिर दूसरा हर ने पाटा चलात रहे, 2-3 हर जितलो हर आमी नांगर धरू से उतलो हर पाटा चलान देतो रहे। असने धनिया चो जोन फसल काजे खत मन बले लागे से, एचो काजे गोबर खत, कंपोस्ट 20 टन, अमोनिया सल्फेट 150 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 300 किलोग्राम और पोटास 100 किलोग्राम जो 2.5 एकड़ जो नाम चुबेड़ा रहे से हुन थाने देतो रहे। ये सपाए खत के दिलो पाछे 40 किलोग्राम जो होए से यूरिया ए जो घोल बनन भाती ए थाने सपाए बाटे छींचतो रहे, ए खूबे होले जो धनिया चो फसल रहे से एके चेपान दे दे, तो ई काजे एके हिसाब ने देतो रहे। पहल हार जसन धनिया चो गाजा होए से हुन समय ने 30 दिन पाछे और दूसर हार 40-45 दिन पाछे एके देतो रहे, बोलन समय चो आम के ध्यान देवक लागे से। फसल काजे 2.5 एकड़ बेड़ा ने धनिया बुनतो काजे 10-15 किलोग्राम जो धनिया रहे से ए बीचा लागे से, बोलन 2.5 एकड़ बेड़ा ने आम कितरो धनिया लागे से, असने एचो बीज उपचार बोले करतोर जरूरी होए से, तो बुनतो पहल बीचा के समान भूई ने एके बिखराउन देतो रहे और एके रमनतो रहे हाथ ले, बोलोनी ये 2-2 भागा हो असंधक तो रहे, बोलोनी एक यार पिसान बल हो जाए उतरो जोर ले नी लगड़ तो रहे, तो 2-2 भागा होले फिर एके ओंडिया तो रहे और एके 18-24 घंटा बोलोनी 1-1.5 दिन नहाले 2 दिन महा 1.5 दिन दखा उनके पानी ने भिजाउन संघान देते रहे, फिर एके पानी ले निकराउन भाती छाए ने जोन हो से बोलन भोती नहाले ऊपर छाया से खुला थाने हुन लगे ने उन भाती सुखान देत रहे, गच छाए छीने उन भाती बिखराउन देत रहे, तो ये पानी के काय सुखे दे। फिर ये था 22 टिन नावचो जो नोखत हो से 2 चिमटी धरतो रहे और 1 किलोग्राम के बीज उपचार करतो रहे, फिर बुनतो समय ने एके दखतो रहे कि ये नंगत आसे कि नहीं, फिर एथा जसनामी बुनक नेलू तो हुदल दाय जोन ओरी रहे से एके बल ध्यान दे तो रहे तो ओरी चो ओरी जोन रहे से ए एक हाथ चो दूरी ने रहो और बूटा चो बूटा बोलने आधा हाथ चो दूर ने संगात रहे अधिक दूर नी संगात रहे। और ये बोले दखत रहे कि जसन हाइब्रिड बीती आमी देखू से बीचा नहल देसी बीचा तो हुन हिसाब ने क्योंकि बाड़ू आए तो हुन हिसाब ने हुन फैलू बोले आए।
1: आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट का पुनः प्रसारण। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: श्रोता सुमन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार कीजिए हरिप्रिया का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जीवा फिल्म से, आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। सुनने की चाहत हम तक लिख भेजी है आप सभी श्रोता साथियों ने। बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। ताजपुर मोरवा से श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली साकरा से जयंत कुमार बैरागी। एयरपोर्ट रोड वंदनानगर इंदौर से मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परिसंजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता खर्जे। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम छिंदीडीही पुजारी पारा जिला कोंडागांव से सेतुराम चक्रधारी, मंगतीन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी, आस्तिका चक्रधारी। शेरकोट जिला बिजनौर से इस गीत को सुनना चाहे मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सासदारानी हिना कौसर। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पम्मी भाटिया। दौलतबाग बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। ग्राम पजोनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंचोलिया। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजूर जाजोरिया। जिला लातूर हुन से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैज नबी शेख, शाकिर शेख, इस्लाम बी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर शेख, सानिया, शकील पठान, बिस्मिल्ली शेख, गदर शेख, आणे नीलोफर शेख। तालुका बिलोली जिला नादेड़ हुन से चांदनी, अयूब, सैयादानी, बाल, राज, अमन, सैयद और परिवार के बहुत सारे सदस्य। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर। बिहार कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आसरा फकीर। बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अप्रैल फुल फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। गीत की रचना की है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहन, ऋतिक और बलबीर सिंह। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत, परवीन अब्बासी। चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। ग्राम परसाटोला, जिला अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारनी मसिया। यहीं से आप हैं रिजवान खान, आशिया, सबीहा, अनस और रेहान। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। बुलंद बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, टुक टुक। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, परी। जिला उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुणत। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा यदु, रीना यदु, लक्ष्मीना यदु, मनोज साहू और जोगिंदर साहू। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, अक्षय और आरू साहू। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: श्रोता सुमन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लहू के दो रंग फिल्म से। फारूख कैसर के लिखे इस गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने और संगीत है बप्पी लहरी का। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। भाटापारा से है बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनडीही से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिसा, रायपुर से नीलू मेघ, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका यादव और तेजल यादव, ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद्र, रिया, रेणु, रेनिका और रागिनी यादव, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवम, शिवानी श्रीमाली और नीलू मीनूराज श्रीमाली, खरगोन से आप हैं सुनीता सोनवड़े, खुशी सोनवड़े, प्रियांश सोनवड़े, आशीष सोनवड़े, पूनम सोनवड़े, कृष्णा सोनवड़े और शुभम सोनवड़े, साथी हैं ध्रुवांश सोनवड़े। ग्राम महोद से आप हैं भैया तणवी, रीना तणवी, सनी बाबू, रोजीबाई तणवी, परु मुबारक बारे, बिलास मनोहर ठाकुर, तैमूर बारे, भोकरी तालुरा रावेर से आप हैं अरशद तणवी, आरिश अरसलान, यूनस तणवी, मुशर्रफ खां तणवी, जरीन तणवी महोद से ही हैं, मुबारक तणवी, परवेश तणवी, बिटिया रोजमनी तणवी, तैमूर तणवी और पूरा तणवी परिवार। मालेगांव से आप हैं दत्ता घायाल, सुनीताबाई घायाल, सानिका घायाल, गजानन घायाल, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक और मीका बीरक, खंडवा ग्राम लोहारी से रमेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, संजय कालूनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, महामाया पारा दरचूरा से फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी, प्रीतम कुमार साहू, दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू, कोल्हापुर से आप हैं तुषार कुरुने, प्रसिक कामले, एकता कामले, मेघना कुरुने, उत्कर्षा कामले, अरुण यगुलकर, कोल्हापुर से आप सभी हैं। भाटापारा से आप हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू, अकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक साहू और उमा देवी साहू। आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। रेलवे कॉलोनी राजस्थान से फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा और उनके परिवार के सदस्य। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बेमिसाल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। आप हैं दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से गजानन येले नवदीप येले, शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी, पसरा तपस्या करिश्मा कामले। आप हैं महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, मछली गोदाम कैदुमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह श्रीमती उषा सिंह प्रियंका पूजा सिंह लीलू रितु सिंह ऋषभ सिंह। आप हैं मधुबनी से राजू कुमार गुप्ता विनीता गुप्ता रवि गुप्ता गौरव गुप्ता कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता मास्टर रुद्र गुप्ता एम के गुप्ता और उनके परिवार के सदस्य और मित्रगण, संजय कुमार गुप्ता संजीव गुप्ता रश्मि गुप्ता सर्वजीत कुमारी गुप्ता और सुधांशु कुमार गुप्ता। सीतामढ़ी महावीर स्थान से आप हैं प्रभात कुमार गुप्ता अरविंद गुप्ता मंटू गुप्ता निक्की गुप्ता अविनाश चंद्र ज्योति गुप्ता जाह्नवी और पीहू। आप सभी हैं पटना से। इसी गीत को सुना चाहा है चार मीनार चौक गंडई पंडेरिया से दरियानवाल अनीता राज मोटवानी राजेश मुकेश मोटवानी, गांधीबाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल सेतपाल भूमिका और सुशीला दीदी, बाग बहारा भदरसी से आप हैं पन्नालाल सेन तारा सेन कौशल सेन खुशबू सेन, जेल रोड रायगढ़ से आप हैं भाई नरेंद्र कुमार तिवारी, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से, गुमला झारखंड से एसएम जावेद सगुफ्ता अंजुम, गोरबा बिलाईगढ़ से आप हैं देवलाल कर्ष कामनी कर्ष और यश कर्ष, बेडी से आप हैं राजेश सोनी कंचन सोनी गायत्री ढोमने वैष्णवी ढोमने चंचल ढोमने अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। इसी गीत को सुनना चाहते हैं भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयागराज चौधरी मालती चौधरी गणेश दादा मराठा कार्तिक भाव मराठा परिसंजना ललिता खर्चे, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक किरण गीतू निहारिका और वेनिस बत्ता। इसी गीत की फरमाइश हम तक लिख भेजी है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गाना।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं दीवाना फिल्म से, कुमार शानू की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। बड़ा बाम्बू सुपारी साई गांव से आप हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा प्रीति और देवेंद्र ताती। लौंडीगुड़ा बस्तर से आप हैं चंदन नाग, हरीश नाग, बाल सिंह नाग, उदय नाग, कमल नाग। दरभा बस्तर से आप हैं रामधर बघेल, रामधर कश्यप, उदय ठाकुर, मोतीराम मौर्य, दुखुराम मौर्य। संबलपुर से आप हैं गौरतम उर्वर्षा, डोमेन लकी, डोमन लाल कोठारी, अर्जुंदा बालोद से दिनेश यादव, साधना यादव। मंचुआ से आप हैं आयश रावटे और रिंकू रावटे। बालोद से आप हैं मंगतूराम यादव, चित्ररेखा, साहिल, शिवम, केशव, माधव, राकेश, रितेश, पोषण, नेत्राम और संतुराम। दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका सेन, पुष्पराज सेन, पोषण और पंचू सेन। धाड़ीनादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, वैशाली बाठे और उनके परिवार के सदस्य। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद बोरगांवकर, सुभाष बोरगांवकर, अंशुमन और ओवी। दतरंगी से आप हैं मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार साहू और सागर कुमार साहू। गोलबाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमीम परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम देवाल से शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, छोटू पूजा, रोशनी अजय और वामिका गंगराडे। जिला खंडवा से आप हैं अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। गोलबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में बॉबी फिल्म से। आनंद बख्शी की लिखी गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी हरदेवलाल पारा सिग्मा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव। राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर कांति गुप्ता, दादा ठाकुर, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। लखनऊ से आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और पंकुरी गुप्ता। कांति निकेतन से आप हैं मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता।

पटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामनी वर्मा, सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी बेमेतरा से, अघनपुर धर्मपुरा से डॉक्टर वनीता नायडू, डॉक्टर कृष्णराव नायडू, ईश्वर राय नायडू, रोजा देवी नायडू, अमृता संतोष नायडू, चार मीनार चौक गंडई पंडिरा से दरियानामल अनीता मोटवानी, राजेश रेशम अनिलराज मोटवानी, झूलेजाल चौक तिलदा से हरीश कमल सेतपाल भूमिका और उनके परिवार के सदस्य। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

हमारे कार्यक्रम का इंतजार कीजिए और ज़रूर आपकी भी फरमाइश पूरी होगी। फरमाइश एक खत लिखें और हरिप्रिया को दें। अब श्रोता सुमन कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन आकाशवाणी का। ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: 4,000 crore rupees last month on improved supplies of goods and services and continued expansion of collection from imports. The gross GST collection in May last year was 1,88,000 crore rupees. Gross central GST collection from domestic transactions last month stood at 37,397 crore rupees. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The West Bengal cabinet headed by Chief Minister Shubhendu Adhikari was expanded today with the induction of 35 new ministers, taking the strength of the Council of Ministers to 41. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to 35 BJP MLAs at a swearing-in ceremony held at Lok Bhavan in Kolkata. We have a report.
1: 13 cabinet ministers got berth in today's expansion. The members who sworn in today as the cabinet ministers include Shopon Dasgupta, Arjun Singh, Tapos Rai, Shankar Ghosh and others. The cabinet expansion is being seen as a significant step in strengthening the state government's administrative structure following the formation of the new government. The new ministers are representing different regions of the state and a mix of experienced legislators and first-time ministers. The allocation of portfolios among the newly inducted ministers is likely to be announced later. Sandipan Dasgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme completed 6 years today. PM Swanidhi has enabled millions of street vendors to access easy credit and build sustainable livelihoods over the last 6 years. Since its launch in 2020, more than 1 crore 12 lakh loans have already been disbursed. Hailing the scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said PM Swanidhi has transformed the lives of countless street vendors by ensuring access to collateral-free credit, financial inclusion and new opportunities for growth. More from our correspondent.
2: Under the scheme, collateral-free loans of 15,000, 25,000 and 50,000 rupees are provided in three progressive tranches with interest subsidy and credit guarantee support. The initiative has benefited over 75 lakh beneficiaries across cities and towns. Loans worth over 17,800 crore rupees have been provided under the scheme. Over 55 lakh beneficiaries have been onboarded digitally under the scheme. Together, they have carried out over 841 crore digital transactions worth nearly 8.96 lakh crore rupees. Beneficiaries under PM Swanidhi have also received nearly 800 crore rupees through digital cashback incentives and interest subsidies. The scheme has been extended until March 2030. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
0: Notification was issued today for biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to poll on the 18th of this month. Notification was also issued today for Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra, Tamil Nadu and Odisha. The polling will be held on the 18th of this month. Counting of votes will take place on the same day. 5 new judges have been appointed to the Supreme Court, taking the apex court's working strength to 37, including the Chief Justice of India. The centre had last month promulgated an ordinance amending the law to raise the Supreme Court's sanctioned strength to 37 judges from 33, excluding the Chief Justice of India. The prices of 19-kilogram commercial LPG cylinder used by hotels, restaurants and other businesses has been hiked across the country. However, there has been no change in the rates of domestic cooking gas used by households. The price of commercial LPG cylinder has been hiked by 42 rupees in Delhi and it will now cost 3,113 rupees 50 paise. In Mumbai, it has been hiked by 43 rupees 50 paise and will now cost 3,067 rupees 50 paise. The latest increase in commercial LPG prices came in the backdrop of rising global energy costs triggered by escalation of tensions in West Asia. Tensions have flared up once again in West Asia after the United States carried out strikes on Iranian radar and drone-controlled sites. The strikes targeted facilities in Gorokh and Kashmir Island. The military action was conducted in response to shooting down of an American MQ-1 Predator drone by Tehran operating over international waters over the weekend. Meanwhile, Kuwait today said its air defenses were confronting hostile missile and drone attacks approaching the country. No group has claimed responsibility for the attacks on Kuwait. The recent attacks reflect the fragility of a ceasefire in the Iran war. Our West Asia correspondent has the details.
3: Against this backdrop of military exchanges, diplomatic channels remain cautiously open. United States President Donald Trump said he is close to reaching a very good deal with Iran, even though American media reports suggest he is pushing for significantly tougher terms than previously discussed. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi confirmed that the exchanges of messages between Tehran and Washington is ongoing, but was careful to note that nothing can be considered final until a deal is formally concluded. Elsewhere, Israel's expanding ground invasion of Lebanon has drawn sharp international criticism. France has formally requested an emergency meeting of United Nations Security Council to address the situation. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: Malaysia today began enforcing rules barring millions of children younger than 16 from owning social media accounts, joining a global effort to tighten online safety protections for young users. Other countries, including Australia, Brazil, and Indonesia, have also announced age-based restrictions for children's access to social media. In Myanmar, the death toll from a powerful explosion in Kangtup village of Namkham township has risen to 55. More than 70 people were injured in the blast, which occurred yesterday following the accidental detonation of materials allegedly stored for mining purposes. The result of the joint entrance examination JEE Advanced 2026 has been declared for admission to the premier Indian Institutes of Technology IITs and other top institutions. Announcing the results, IIT Roorkee said, out of a total of 1,79,694 candidates who appeared for the exam on the 17th of last month, 56,880 candidates have qualified, including 10,107 females. Shubham Kumar from the IIT Delhi zone secured the first rank. On to sports. In the 22nd Asian Under-20 Athletics Championships, India delivered a historic campaign, finishing second in the standings with 19 medals comprising 10 gold, 5 silver and 4 bronze in Hong Kong. The runner-up finish marked India's best ever performance at the Continental Track and Field Championships outside home soil. A total of 48 Indian athletes, 30 men and 18 women, competed in the tournament, held from the 28th to the 31st of last month. The championships are serving as a qualifying event for the World Under-20 Athletics Championships, scheduled to be held at Oregon in the United States in August. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent of Asian Under-20 Athletics Championships on winning 19 medals. In a social media post, Mr. Modi said this outstanding performance reflects the determination and excellence of India's young athletes. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women grapplers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze at Da Nang in Vietnam. Leading the charge, Deeksha in the 43-kilogram category and Garima in 73-kilogram category clinched gold medals. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Tripura, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and West Madhya Pradesh today. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Rajasthan till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Hlaing hold bilateral talks in New Delhi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for street vendors. And India ends impressive campaign at Asian Under-20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रूपये से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
5: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
6: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफीन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
4: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
7: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
8: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
9: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
8: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
4: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
10: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
4: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपये होगी। मुंबई में 43.50 रुपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3067.50 होगी। कोलकाता में 53.50 की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3255.50 होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3283 होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमरीका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमरीका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
11: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
4: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
12: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
4: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कला और कलाकार।
14: दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा।

कला और कलाकार कार्यक्रम सुनतो सब भाई भाई बहन मन के मैं मैनामती करें से जुहार और फिर रेडियो कटा कटा बसलो नैन नैन पीला मन के बले मोचो बाटले खूबे खूबे माया। तो देखा भाई बहन मन, कला और कलाकार मंचो गोट ये तो इतरो रह से कि केबे नि सरे दे। आरु अलगे अलगे प्रकार चो हुनर कला और हुनके साथ तो लोग मंचो मान गुण ये बले खिंडिक अलगे आरु आगर रहुआ है। कोनी कला हुनर जोन रह से हुन पुरखती ले चलते ऐसे आरु कैक ठन कला हुन गुरु शिष्य परंपरा ले बाढ़े से मतलब गुरु हो उन भाती हुन सीख तो लोग के सिखाए से शिष्य के असनी ची हमचो जोन लोक कला चो परंपरा है हुन जोन आए पीढ़ी ले चलतो बीती परंपरा होए से बलों ने जोन पीढ़ी ले चलते ऐसे हुन चो पीढ़ी चो लोग मन हुन कला के सीखू रहे सोत आरु आगे बढ़ाते जाए सोत। हुन मन चो पीढ़ी ने कोनी नहले कोनी आप लोग कला के और आप लोग कला परंपरा के आगे बढ़ाते जाए से मंतर आज ही चोजुग ने कहा हुए से कि केबे केबे जोन पुरखती चो कला के बढ़ा तो लोग मन चो कमी हो जाए से परिवार ने। तो यही काजे ये लोक कला चो हुनर के प्रशिक्षण चो माध्यम ले बले सीखिया लोग मन के सिखाऊ आगे बढ़ा तो कोशिश करते रहतो रहे नहले यथा चो जोन दुर्लभ कला है और लोक कला मनाए हुन मन चो विलप्ति असन हो जाए दे और आगे जो ना है हुन न सुन जाए दे। तो यही काजे आज ही युग ने हमके ध्यान संगा तो रहे कि हम चो जोन बले जूना पुरखती ले ए तो बीती जोन कला मनास होत कलाकारी मनास होत हुन मन के हमके बढ़ा तो कोशिश करतो रहे। और आजकल तो सरकार बाटले बले प्रशिक्षण चुका जे कैक ठन योजना मन बले बनली से तो जोन मूर कलाकार आस होत हुन मन प्रशिक्षण चो हिसाब ले जोन सीखिया लोग मन के सिखा उक सकूत। तो यही काजे जोन लोक कला है हम चो जोन लोक कला जोन बोलो ने हम चो राज चो जोन कला है हुन गोटक विशेष प्रकार चो कला होए से जोन आप लोग विशेष पहचान बले रखे संगाए से जैसन कि हम चो बस्तर राज चो जोन हुन लकड़ी चो कला है मूर्ति बना तो कला है घड़वा कला है बेल मेटल चो कला है माटी ले कई प्रकार चो कलाकृति बना तो रुआट मनाए कला मनाए हुनर आए और उसने ही बाँस ले बना तो बीती हुए से और फिर संगे संगे जोन कैक प्रकार चो जोन शिल्प आए लोहो शिल्प हो कि कहीं बल शिल्प हो और फिर संगे संगे ये तो बना तो वाट मनाए कला मनाए उसने ही हम जो लोक गीत लोक जोन वाद्य मन रह से बजा तो गाओ तो ये गोटो कला और कला परंपरा बले रहे से हम जो राज जो कहानी जो कला बले अलगे रहे से। तो असने ये सब फाय तीज के हम के बचाउन संगा तो कोशिश करतो रहे और उनके पहल तो हुन मौखिक रहे जोन बले कहानी आए गीत आए गोविंद आए ये सब आए चीज आजिकाली हुनके हम जो जोन भाई बहन मन पढ़ून लिखून आसोत जाले हुनके लिखून संगावत तेबे कहे हो दे कि हुन लिखून बाती रलो ने हुन केबे नसे दे बले नहीं अरु कैक ठान ने तो हुन मन के हुन रिकॉर्ड करुन भाती बले जसने हम चो रेडियो थाने बले हमें गीत गोविंद के रिकॉर्ड करुन भाती संगावलू से तो हुन जोन परंपरा है हुन कला है हुन ए तो पीढ़ी का जे बाचू रह दे। तो असन कोशिश हमन मन के करते रहते रहे जे चोले हम चो कला बले बाढ़े दे और कलाकार मन चो

0: जोन भविष्य बले उज्जवल रहे दे आरु ये जोन है हम जो देश का जे राजकाल राजकाज बले नंगत रहे दे आरु जोन कला के आगे बढ़ा सोत हुन मन के पुरस्कार देतो जो योजना मन बले रहे से हुन राज्य सरकार बांटले बले आरु हुन भारत सरकार बांटले बले तो यही काजे हमके कला के सीखतो रहे लोग मन के सिखातो बले है। तो देखा भाई बहन मन मैं तो गोठे आते रहें दे मानता राम चो लगे गोठ मन और बले आसे तो आले गोठ मन के सुनून देखो
1: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज सुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयनाद मिंदे
2: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जानवर मन चो इलाज बोले सस्ता होतो भरसा आसे जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बनातो लोग और घेंतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होए दे
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 to 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 to 4 तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा आमचो फोन नंबर आए 07782226666 फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने
4: क्या बात है उमेश आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ
5: हाँ यार पत्रकार जो हूँ
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो
5: सुधीर मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ
4: उमेश स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम पता फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो
5: क्यों
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है
7: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
8: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
0: हाँ तो भाई बहन मन ये तो रहे गोठ मन आरु हमी जैसन की गोठे आलू की कला और कलाकार जोन रहसोत कोनी भले हुनर के जानू लोग मंचो खिंडिक अलगे पहचान भले रहसे आरु हुन मन के लोग मन जानसोत भले आरु हुन मंचो मान गुण भले आगर होए से तो असनी आजी चो हम चो कलाकार चो नावा से जनगढ़ सिंह श्याम ये मन जोन गोड़ कला है उनके विश्व स्तर तक पहचान भले दिलाला सोत तो ये मन चो गोठ मन के हमें गोठियावा मंत्र ये मन चो स्वागत काजे हमें गोटक लोकगीत सुनाऊं दे उसे और पाछे ए मंचो जीवना चो गोट के गोठियाऊं दे तो वाले सुनो सबले पहलिए गीत के एक गावला सोत लखेसर खुदराम और हुंचो संगवारी मन

हाँ, तो काय सुंदर ये गीत रहे। आरु ये गीत के गावते रहत लखेश्वर खुदराम आरु हुंचो संगवारी मन। जैसन कि मैं पूरे सांगते रहले कि आज जो कलाकार जो गोठा में गोठियाऊं दे जंगहर सिंह श्याम चो, ये मन हम चो जो गोंड कला है उनके विश्व स्तर तक पहचान दिलाला सोत। आरु जंगहर सिंह श्याम गोटोक अग्रणी आरु हुन समय चो बलुने समकालीन जोन भारतीय कलाकार रहोत, जोन जंगहर कलम नाव चो भारतीय कला चो गोटोक नुआ शैली के जो संस्थापक माने जाए से। हुंचो जन कलाकृति मंचो प्रदर्शनी भोपाल दिल्ली टोक्यो और न्यूयॉर्क संगे संगे दुनिया भर चो कई ठन ठान मन ने व्यापक रूप ले आयोजित होते रहे। हुंचो सब ले उल्लेखनीय जोन प्रदर्शनी जोन हो रहे हुन पेरिस ने हुंचो मैजिशियंस डे ला टेरे 1989

दिल्ली के जोन क्राफ्ट म्यूजियम ने ज्योतिन्द्र जैन बाटले हुन क्यूरेट करू रहोत आरु अदर मास्टर्स जोन रहोत 1998 हुता शामिल रहोत आरु हुनचो 1988 चो जो जोन कृति रहे हुन लैंडस्केप विद स्पाइडर 2010 ये 2010 ने न्यूयॉर्क चो साउथ बीच ने 31,250 डॉलर ने बिकू रहे जोन कोनी आदिवासी कलाकार का जे सबले पहल हार रहे कि हुनचो जोन कलाकार ये हुन डॉलर ने बिकू रहोत आरु जंघर जोन रहे हुन मध्य प्रदेश विधानसभा चो विधान भवन आरु भोपाल चो भारत भवन चो गुम्बद चो संगे संगे अलग अलग भाग ने जोन चित्रित चित्र बनालो रासे हुन मन के जोन आदिवासी और समकालीन भारतीय कला ले सबले प्रतिष्ठित संग्रहालय मन ने गोटोक एक आसे हुन आपलो चित्र मन के कागज आरु केनवास चो काम ने अनुन सबले पहिल गोंड कलाकार मन ने जोन रहोत सबले पहिल रहोत ये प्रकार चो हुन चो जंगर चो कलम नावले हुनके हुनचो कलाकारी के जानुक मूरहोली आरु हुनचो शैली चो मूरहोली जंगर सिंह श्याम चो गोट के फेर आ गया मी हुनचो जीवना चो गोट मन के गोठियाऊ दे मंतर संगे संगे हुन मन चो मान काजे गोटक लोकगीत और सुनाऊ देऊ ये गीत के गावला सोत ममता चंद्राकर आरु हुनचो संगवारी मन तो आले सुनू ये गीत के

हाँ, इत्र सुंदरी गीत के छत्तीसगढ़ी गीत के गावते रहत ममता चंद्राकर आरु हुंचो संगवारी मन। तो फिर एवं आमी आज चो कलाकार चो गोट मन के गोठिया तो काजे आरु आज आमी गोठियाओं से जंगर सिंह श्याम चो गोट जोन गोंड कला के विश्व स्तर तक चीना दिलारो। तो जंगर चो जीवना चो गोटो कोनी कोनी गोठाउर गोठियाओं दे से हुन मन चो जन्म हुन पूर्वी मध्य प्रदेश चो मंडला जिला दंडोरी जिला चो पाटनगढ़ गाँव ने हुन प्रधान गोंड परिवार ने हो रहे। हुन घोर गरीबी में पले बढ़े रहोत जे चो कारण ने हुन चो हुनके स्कूल छोड़ पड़ ली और फिर खेती बाड़ी ने हाथ धरुक पड़ ली। और हुन चो जन्म 1962 ने पाटनगढ़ मध्य प्रदेश ने हो रहे। और हुन भैंसा चराते रहे और फिर लगे ने गोटोक दूसर गांव ने हुन गोरस बले बिकते रहोत। 16 बरस चो उम्र ने हुन चो बिहा होली सोनपुर गाँव चो नानकुशिया बाई संगे जोन पाछे हुन चो साथी कलाकार बन ली। आरु अक्टूबर 1981 ने हुंचो बिहाव होली। आरु विवाह चो खिंडिक बरक पाछे भारत भवन कला संग्रहालय चो प्रतिभा खोजकर्ताओं मन बाटले जंगरले संपर्क करे गेली। ये समय हुंचो मुलाकात गोटोक पहले निदेशक कलाकार जगदीश स्वामीनाथन संगे होली जे चोले दुनो चो मंजी आजीवन सहयोग चो मूर होली। स्वामीनाथन जंगर के भोपाल आनुन एक पेशेवर कलाकार जो रूप ने काम करतो काजे राजी कर लो। स्वामीनाथन फरवरी 1982 ने भारत भवन जो उद्घाटन प्रदर्शनी ने जंगर के पहल हार पहल नमूना पेंटिंग के उता दखाला। और जल्द ही जंगर जो जोन भारत भवन जो ग्राफिक आर्ट्स विभाग ने उनके नौकरी वाले मिल ली। और हुता आप लोग परिवार चो संगे संगे भोपाल चो प्रोफेसर कॉलोनी ने स्वामीनाथन चो घर चो पाटकुती रौक मूर करला। और 1986 ने आप लोग खोज के बोलो ने पाँचे बरख ने उन 26 बरख जो ये कलाकार जंगर श्याम ये अब मध्य प्रदेश सरकार बाटले दिलो देतो बीती सबले बड़े सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शिखर सम्मान ने सम्मानित किए गली। ये चोले हुनके शीघ्र प्रसिद्धि बले मिरली झटके। और हुन भोपाल ने जोन स्थित नवा विधान भवन विधानसभा भवन जे चो प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन करे गेली रहे। और हुन चो बाहरी जोन भित्ति चित्र बनातो चो काम के हुन जंगर के सौंपला। 1989 ने पेरिस ने पाम्पिडी सेंटर चो मैजिशियंस डे ला टेरे उन पृथ्वी के जादूगर प्रदर्शनी ने हुंचो कला के प्रदर्शित के गेली करे गेली। अरहुता जापान चो टोका माच

हाँ तो भाई बहन मन ये गोंडी गीत के गावते रहो लक्ष्मण आरु हुंचो संगवारी मन तो हमी गोठियाते रलु आज चो कलाकार जंघर श्याम जो गोठ मन के तो इमन चो जोन जीवना चो गोठ के तो हमी गोठियाते रलु आरु हुंचो मरना जोन हो रहे हुन 2001 में जापान ने हो रहे आरु ये मन चो जोन शैली आए हुन खूबे सुंदर रहे जेके जंघर कलम जो नाव ने हुन प्रसिद्धि मिलू रहे। जंघर जो चित्रकला जो जो प्रमुख जो विषय मन रहत ठाकुर देव बड़ा देव कला हनिन देव आदि ये गोंड देवता मन रहत और जोन थाने चित्र मन ने हुन चो बाघ हिरण कछुआ और मगरमच्छ असन दखा पड़ते रहे असन महान कलाकार रहत हम चो जंघर सिंह श्याम तो दखा हुन कलाकार के हमी यथाले श्रद्धांजलि बोले देव से और हुन जो कला के आगे बढ़ातो काजे आजिकाली हम चो कलाकार मन जो आसोत हुन मन काम बोले करे सोत आरु उन मन के आगे बढ़ा तो कोशिश भले करे सोत तो असने हमें आम के भले कला मन के आगे बढ़ा तो कोशिश बेरा बेरा ने करते रहते रहे जैसन कि यथा जो जो चित्रकार आसोत एम एफ हुसैन और बोले बड़े बड़े कलाकार मन उन जो कला जो खूबे तारीफ भले करला और यही संगे संगे देखा हम चो जातो मुचो जातो समय भले हो से तभी मुके विदा दियास आरु कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब फाय भाई बहन मन के जा तो पूरे मैं मैना मती करें से जुहार। दादा, दादा, दादा, दादा, दादा, दादा, दादा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ही जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:01 में हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। एफएम पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे आपसे आकाशवाणी 396.82 मीटर पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये चक्तलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले सुनिए आज के सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अभी कुछ ही समय पश्चात शाम 5:05 पर सुनेगा हल्बी बोली में समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। साथ ही सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:30 पर सुनेगा गोंडी गीत, प्रस्तुति होगी गणेश मंडावी और साथी। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। शाम 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव। कार्यक्रम नानोली में सुनेगा गोंडी गीत, कलाकार होंगे लक्ष्मण और साथ ही रात 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम पिलामन काजे गोट। हल्बी बोली में इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी जानकारी, प्रस्तुति होगी मिनेश पानीग्राही की। कार्यक्रम जीवना चौसोर भत्री में सुनेगा मिलेट्स महिला स्व सहायता समूह दंतेवाड़ा की रंजना सिंह से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच, रात 9:15 पर। कार्यक्रम भेंटघाट का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। इस कार्यक्रम में श्री मनबोध बघेल से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच।

0: 10 बजे कार्यक्रम कोदोमाली में आप सुन सकते हैं गोंडी गीत। कलाकार होंगे मनीराम मंडावी और साथी। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल के सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 8:30 पर आप सुन सकेंगे छत्तीसगढ़ साहित्य पत्रिका मोर भुइयां प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। आप सुन पाएंगे सुबह 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कल प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर होगी भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह 6:20 पर प्रसारित किया जाएगा चिंतन आलेख। स्वर होगा ब्रह्म कुमारी मंजूषा का। श्री रामचरित मानस का गायन होगा सुबह 6:25 पर। स्वर होगा सुरेश वटकर का। संगीत निदेशक होंगे सतीश भाटिया। सुबह 6:35 पर आप सुनेगा हल्बी कृषि सामिकी पर आधारित कार्यक्रम बेड़ा खाड़ा चौगोट। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर। लोकवाद धुन पर आधारित कार्यक्रम हुलहुली का प्रसारण होगा सुबह 6:40 पर। इसमें आप सुनेगा लोहजारिन मातापाड़। वादक कलाकार होंगे भागीरथी और साथी। सुबह 7:05 पर प्रसारित किया जाएगा नमस्कार जगदलपुर। इस कार्यक्रम का आकर्षण होगा कहानी सत्य छाया। कहानीकार होगी जया द्विवेदी। साथ ही सुनेंगे मधुर गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। सुबह 9:00 प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9:30 पर। यह कार्यक्रम आधारित होगा फिल्म दिल ही तो है पर। सुबह 10:30 पर आप सुन सकते हैं बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। कलाकार होंगे धनुर्जय और साथी। सुबह 11:00 प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम आधारित होगा निर्माता निर्देशक मणि रत्नम पर। लोकवाद धुन पर आधारित कार्यक्रम पाड़ का प्रसारण होगा सुबह 11:30 पर। वादक कलाकार होंगे किशन और साथी। बस्तर का रंगकर्म ये रूपक आप सुनेंगे दोपहर 12:00। इस रूपक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता होंगे के परेश। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर प्रसारित किया जाएगा दैनिक कार्यक्रम श्रोता सुमन। कला और कलाकार आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। कल सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होगा शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर आप सुनिएगा ध्रुवी गीत। कलाकार होंगे पार्वती और साथी। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर आप सुनेगा शाम 7:00। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुन सकते हैं शाम 7:20 पर। रात 8:00 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। इस कार्यक्रम का विषय होगा संगीत शिक्षा का महत्व। प्रस्तुति होगी वीणा श्रीवास्तव की। रात 8:30 पर कार्यक्रम पीलामन काजीगोट में सुनेगा राजा राम मोहन रॉय से जुड़ी जानकारी हल्बी बोली में। प्रस्तुति होगी तनुश्री मोहंती की। पुरानी फिल्मों से इस कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे रात 9:15 पर। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं मोचो मंचो गीत पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकवाद धुन पर आधारित कार्यक्रम पाड़ का प्रसारण होगा रात 10:00। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा तेल पाड़ और भारत पाड़। वादक कलाकार होंगे सुक्रू बघेल और साथी। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। पेश है हल्बी बोली में समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार।
1: जुहार समसामयिक विषय मन ने आधारित कार्यक्रम मन संगे मैं हितप्रीता ठाकुर सुन तो लोग मन आज ही हम ये कार्यक्रम ने सार्थक PDS योजना चो गुट के सांगवा। केंद्र सरकार देश ने खाद्य सुरक्षा के मजबूत बना तो बाट ने गुटुक बड़े ढांका उठा ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो अध्यक्षता ने गेलो 27 मई के आर्थिक मामला मंचो मंत्रिमंडल समिति ने सार्थक PDS योजना के मंजूरी देतोर होली। ये योजना गरीब और जरूरतमंद परिवार मन तक राशन व्यवस्था के और अधिक मजबूत बना तो कोशित आए। केंद्र सरकार ये योजना लागून 25,530 करोड़ रुपया खर्चा करे दे। सार्थक PDS चो उद्देश्य देश चो गोटुक गोटुक पात्र लोग मन तक समयाने और पारदर्शी उवाट बल्ले कपट नोहलो नंगत उवाट ले खादी जिरिस मन के अमरातो राय। देश ने करोड़ों लोग मन सार्वजनिक वितरण प्रणाली बल्ले PDS राशन ले मिर्तो खादी जिनिस मन उपरे भरोस ने रह सत। असन ने सरकार आपलो जूना उपाय उवाट मन के नवा तकनीक मन ले जोड़तो निर्णय धरली से। सार्थक PDS योजना अदाय राशन व्यवस्था के और अधिक स्मार्ट बनाए दे। ये योजना लागू राशन चो परिवहन भंडारण और वितरण उपरे खास ध्यान देतोर होई दी। राशन दुकान मन ने ई पास मशीन चो उपयोग आगे लेची करतोर होती रही से। अदा ये थाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता बल्ले एआई मशीन लर्निंग आरु ब्लॉकचेन जसन आधुनिक तकनीक मन के बल्ले शामिल करतोर होई दे। एचुअली राशन बांटतो काम ने पारदर्शिता बाढ़े दे आरु गड़बड़ी मन ने कमी आए दे। सरकार जो लक्ष्य आए कि जरूरतमंद व्यक्ति लोग मन के हुनमन जो हक अधिकार बिन झंझट बाधा की मीरो। ये योजना बरक 2031 तक लागू होए दे। सरकार जो मानतोर ये आए कि तकनीकी जो बेहतर नगद उपयोग ले राशन व्यवस्था और सरल होए दे। अदाए लाभार्थी मन के आपलो जानकारी अरु राशन संघ चो मिसलो सफाई सुविधा मन मोबाइल एप अरु डिजिटल उवाट मन ले बले मीरे दे। मेरा राशन अरु अन्न सहायता जसन मुरियानी मन आगे लेची लोग मन चो सहायता करे से। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बले प्रवासी बल्लो ने श्रमिक जसन काम करतो लोग मन के नवा सुविधा दिली से। अदाय हुन मन देश जो कहाँ बले कोनी बले राज ने राशन मिराव पाउक सक दे। सार्थक पीडीएस योजना राशन दुकान चो दखा रखा के और मजबूत बनाए दे। राज ने कमांड आरु कंट्रोल सेंटर बनातोर होए दे जे ठान ले पूरा व्यवस्था ने नजर राखतोर होए दे। इचुले शिकायत मंचो समाधान और अधिक रोशनी होक सके दे। सरकार चो कोशिता है कि कोनी बले पात्र परिवार खाद्यान्न लिछांडी नी रहत। गांवरिया आरु धुरिया ठान पर गनमन ने रतो लोग मन के बले ये योजना चो लाभ मिरो। ये पहल मुरियानी सोजे राशन बांटतो तक रह दे असन नोहाय। पहाड़ ले ये भरोस आरु मान सम्मान संघ चो मिसलो गोठाए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सांगला की सार्थक पीडीएस योजना चो उद्देश्य राशन दुकान मन के नगद समर्थन देतो और खाद्य वितरण व्यवस्था के अधिक पारदर्शी संगे प्रभावी बनातो राय। हुन मन बल्ला कि ये फैसला ले देश चो लमसम 80 करोड़ लोग मन के सीधा लाभ मेरे दे जे सरकार चो खाद्य सुरक्षा योजना चो आसरा ने आसत। हुताय छत्तीसगढ़ चो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बले ये योजना चो स्वागत करून एक गरीब कल्याण खाद्य सुरक्षा और सुशासन चो बाट ने गोटोक ऐतिहासिक मुरियानी असन सांगला। श्री साय बल्ला की ये निर्णय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तकनीकी आधारित अधिक पारदर्शी जवाबदेही और नागरिक केंद्रित बनातो बाट ने महत्वपूर्ण ढाका असन होए दे। मुख्यमंत्री बल्ला की ये निर्णय सोजे राशन बांटतो काम ने आधुनिक बनातो रेचे नुहाए पहाड़ले गरीब मंचो जीवना ने भरोस सुविधा और सुशासन के और मजबूत करतो निर्णय आए। सांगतो असन गोठ ये आए कि सार्थक पीडीएस योजना तकनीक और संवेदनशीलता चो बेहतर उदाहरण बनुन पूरे इली से। ये योजना सांगे से कि जेबे सरकार चो विचार सेवा करतोर हो और व्यवस्था आधुनिक तकनीक संगे मीरसे से तो योजना मन लोग मन चो जीवना ने सकारात्मक बदल आने से देश ने खाद्य सुरक्षा के मजबूत बना तो बाट ने सार्थक पीडीएस गोटोक नवा आरु भरोस संगचो मुरियानी असन होन पूरे इली से।
0: अभी आप सुन रहे थे हल्बी बोली में समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। आकाशवाणी का ये चक्तलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। पेश है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: जुग बदले से राज बदले से चतुर हो तो राय, जुग बदले से राज बदले से चतुर हो तो राय। संगवारी मान सांजोली युवाणी कार्यक्रम सुनत राय तो रेडियो चालू करून बसून रहतो राय। उन सपा बाट टाकतो संगजोरिया संगवारी मन के स्वागत करें से अपन मंचो मनपसंद कार्यक्रम युवाणी ने। आजिचो युवाणी कार्यक्रम के दरुन हमरलू से मैं आय तुमचो रेडियो संगवारी मनीराम बघेल
1: और मैं आए सेमलवती पटेल। आमी दोनों करूं से सपाई लोग के
0: जुहार। अले जुहार बेट तो कर लू ना सेमल ने।
1: हाँ मनीराम,
0: मांतर में तू के दकेश ना सन काय का जो मुंह के उतरा उन बोसुन दिली सीस
1: नहीं जानिस मनीराम, इतरो गाम छे के से
0: हाँ।
1: ने गाम, और जानिस हाँ। नौ तो पाबली चले से
0: हाँ, आजकल तो चले से ची काय हरी आजकल छु गाम के तो तू दक्षिस ची ने
1: हाँ। पानी पीऊ की पसिया पीऊ असन जीव लागे से ने
0: रसन वाल लागे से कि काय रुक छाय नाल का अच्छा काय तो दन सीतर टान ने बसुन बाती रो असन ने।
1: हाँ मनीराम,
0: हाँ वाले सेमलपति।
1: हाँ मनीराम,
0: आज आमी गोटो असन गोट के धरुन हमर लुसे ने आमचो संगजोरिया संगवारी मन लगे
1: हाँ।
0: उन गोटा है सोशल मीडिया चो युवा मन का जे प्रभाव ने
1: हाँ। आले उनके बले हमरा तो जरूरी है ने
0: हाँ। और सोशल मीडिया तो जानसी जी ने
1: हाँ।
0: गोटो कसन काय तो हाय कि आमचो काजी गोटो आमचो जीवना ने जरूरी होन गेली से ने
1: हाँ, हाँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चो व्यापक बले आए ने एचो माध्यम ले संचार के सरल बना ली सी एचो ले कई प्रकार चो जानकारी मन बले मिले सी
0: हाँ। और आजकल चो लोग मन सोशल मीडिया ले किंडिक दूर बल ओ तो उग चाय सोते ने
1: हाँ।
0: और ये गोट बले गलत गोट नो आए कसन बल्लो ने कि आज चो समय ने हमी सोशल मीडिया चो इतरो आदी होन गेलु से कि हमी डंडी के उतले दूर हो तो काज बले सोचुक पड़े से ने
1: हाँ। और जानिस मनीराम बियानी उठून सबले पहले मोबाइल बल दक्षोत ने
0: हाँ।
1: कि काली चे दिने काय ओली से काय नहीं बलते सबले पहले मोबाइल दक्षोत
0: हाँ।
1: ने
0: हाँ।
1: जानकारी दक तो कर ने
0: हाँ। और सोशल मीडिया चो द्वारा हम के कुबे नवा नवा सीख मन के सीखू जानू का और असन दकुक बल मिरे से ने
1: हाँ।
0: और युवा एचोले युवा मन चो सोच ने गोटो का सही बल प्रभाव पड़े से उनचो संगे संगे गलत बल प्रभाव पड़े से जानू ने
1: हाँ।
0: और असन कितरी अफवाह मन बल फैलते जाए से कि सोशल मीडिया के माध्यम ले
1: हाँ।
0: ने
1: और सोचून समझून सावधानी ले काम के करतो रहे ने
0: हाँ।
1: सोशल मीडिया असन आई कि दूर दूर तो पहल तो असन चीज आए ने
0: हाँ। और सोशल मीडिया आमचो युवा मन का जे गोटो का बुरा प्रभाव बोले नहीं ये बल दुख मिले से कि अचो माध्यम ले युवा मन देश दुनिया चो घटना मन नया नया तकनीक मन के सीखुक जानुक तो मिरे से ची ने
1: हाँ।
0: और एचो संगे संगे फिर एचो गोटो का विचार और गोटो दायरा बल बढ़ते जाए
1: हाँ।
0: से ने
1: एचो संगे और रोजगार बने ने जुड़लो जानकारी मन बले मिरे से
0: और एचो माध्यम ले गोटो का नया कौशल बल सीखुक मिरे से ने
1: हाँ। जसन की हर लोग ले कुछ अलग अलग सीखुक मिरे से ने
0: हाँ।
1: दूसरा ले झूठ तो अवसर बल दे से दूसरा चो सुनुन खुद के बले इमत लागू आए कि आम के आत्मविश्वास बले बढ़े देने
0: हाँ। और असन सामाजिक जागरूकता बले उत्पन्न हो जाए से ने कि कहीं असन सामाजिक अभियान और जनहित चो काम मन के बले युवा मन चले मन चो भागीदारी बढ़ जाए से ने सोशल मीडिया के माध्यम ले
1: हालांकि सोशल मीडिया चू नकारात्मक प्रभाव बले आए कसन बल्लो ने अधिकतर लोग समय चो बर्बाद पढ़ाई ने ध्यान कमी और मानसिक चिंता बनुक सकुआ कई यार असन ओली से कि लोग दूसरा ले जीवन ने आप लो तुलना कर सोत और धीरे धीरे आत्मविश्वास कमी वैसे गलत गलत सूचनाएं अफवाह और साइबर अपराध चो चिंता चो गोटो हिस्सा बने से
0: और सोशल मीडिया आसन कोटो प्लेटफॉर्म होली से कि जोन तान कई ची बले गोटो नाल कई ची बले हो डंडिक वायरल हो जाए से ने
1: हाँ।
0: ये बीच समय ने आसन होली से कि सपाय लगे मोबाइल मन ही ली सपाय मतलब फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब आसन दुनिया भर चो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाए सोते ने
1: साइबर बुलिंग और प्राइवेसी ऑनलाइन ट्रोलिंग पहुंचातोर चोरी और अनुचित व्यवहार चो कतरा हमेशा बनुक सके सी
0: और सेमल बत्ती
1: हाँ मनीराम
0: सोशल मीडिया एकदम असन बल नो आए कि आम चो काजे के उपयोग करतो ची नो आए बोलते असन गोड बल नो आए ने
1: हाँ।
0: आम के काय कि सोशल मीडिया दखवा बोले ने गोटो अच्छा बोले और गलत बोले आए ने
1: हाँ।
0: अच्छा करवा बोलो ने कि ये बीच समय तु दक्षिस बोलो
1: ची
0: कि
1: अच्छा
0: इतरो सोशल मीडिया ने बोले इन्फ्लुएंसर मनासोत कि आप लोग गोटो कमाई चो जरिया बन जरिया बनाऊ दिलासी सोशल मीडिया के बोले और नकारात्मक प्रभाव बोल दखवा बोले फिर असन बोलो ऐसे की કોની પોડુક લીકુક બોલ ચાંડુન બાતી દિન દિન રાત રાત ભર બોલે મોબાઈલ ચી ખેલતે રહેશો તને એ બેચો ઓનલાઈન ગેમિંગ ઓલી અસન દુનિયા ભર છો
1: કાય મોલી તું છો દુનિયા ભર છો ને
0: હા આવ રે મન કે કાય કી કેંડે કામ કે સોચુન સમજુન બાતી એ મન છો ઇસ્તેમાલ કરવા તો આમ છો કાજે કઈ ગલત બોલ નો આય ને
1: હા અચ્છા ચીજ આય
0: હા કેન્ડિક બસ આમકે ઇતરો ધ્યાન સંગાતો રહે કે કોણ કિતરો યુઝ કરલે ગલત હોય દે આર કિતરો આર કાય યુઝ કરલે ને સહી રહે દે બોલતે ને હા તો આલે મેં બોલતે ને એ ગોટ મન કે હતા તે બાઉ બોલન બાતી
1: હા માનીરામ
0: હા કાર્યક્રમ ને આગે તો બડો હા માંતર ઊંચો પહેલા આમ ચો લાગે એ સૂચના મન બલા છે તને
1: તો
0: મેં બોલતે રહે એ સૂચના મન કે બોલે આલે અમરાઉં

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: नाले जाला मन के तो हमरा लुसे मलबती ने
4: हाओ मनीराम
3: अदाय मैं बोलते रहे कि आज जो कार्यक्रम ने हम जो संजोरिया संगवारी मन का जे काय काय के आनलु से आले के बले हमरा बोलन माती
4: संगवारी मन आज तुम जो का जे आनलु से नए तरानी जनता ने सुना से नुआ नुआ गीत और सामुदायिक गीत ये च संगे आनलु से कहानी पाठ और आनलु से ज्ञान ध्यान चो गोट
3: तो सेमलवती अदाय मुर करुन दगु पे राजीचो आमचो कार्यक्रम चो नए तराने चो गीत मन के ने
4: हाँ।
3: तो आजीचो पहिल गीत आहे संगवारी मान फिल्म एयरलिफ्ट ले एक स्वर दिलासो अमान मलिक और अरिजीत सिंह अरुण मंचो संगवारी मान गीतकारात कुमार संगीतकारात अमान मलिक तो हाले सुनु पेर हे गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: काय सुंदर गीत रे सेमल ने।
3: हाउ मनीरा
2: गीत रेली फिल्म हेयर लिफ्ट चो ने। और ये फिल्म 2016 ने रिलीज हो लोगों टोक बेहतरीन और ऐतिहासिक हिंदी ड्रामा थ्रिलर फिल्म रहे। 1990 ने इरा कुवैत युद्ध चो दौरान कुवैत ने पसलो 170,000 भारतीय मन के सुरक्षित वापस आंतो ने सबले बड़े नागरिक बचाव अभियान ने आधारित ये फिल्म रैली। और ये फिल्म राजा कृष्ण मेनन चो निर्देशन ने बनलो फिल्म रैली। और ये फिल्म ने मुख्य भूमिका अक्षय कुमार और निर्मत कौर मुख्य भूमिका निभाव रो। तो सेमल हदाय पे रशनी हदाय और गोटो गीत सुनन द कुने।
3: हाँ, अगला गीत है फिल्म कबीर सिंह ले स्वर दिला से अरिजीत सिंह, गीतकार मिथुन और एक संगीत बले दिला से मिथुन। तो या सुनू ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: श्यामलवती।
3: हाँ मनीराम।
2: गीत सुन लें तो सुनते चिरो बाए से ने।
3: हाँ।
2: मंत्र का है कि हमी नए तरह ने चु गीत मन संगे संगे और बल गीत मन के दरुनी उरु हमने।
3: हाँ।
2: असनी आजी बले दरुनी लु से सामुदायिक गीत आम चु लगे से ने।
3: हाँ।
2: तो आल सामुदायिक गीत के बले हमरा अंदर को बोलते हाँ। रहे।
3: सामुदायिक गीत आए कन्नड़ भाषा ले रचनाकार डी आर गौड़ा और संगीतकार आए गीता तो या सुनू ये सामुदायिक गीत।

0: Ale ia tu reli saya melbati ne
1: samudai
0: git. Awas ni kami samya samya samya ni kaya tu. Am tu sang joria sangwari man kaje pera. Gyan dian cu god man baldo runi uru amne. As ni aji bale am tu lagi gyan dian cu god bitre aso. As ni samane gyan cu god ne. Ia I adarit Bharat cu pahili bank cu samband ne. Ye bank cu udghatan 16 Mei 2026 ke जीएस रोड गुवाहाटी असम ने असम चो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा उद्घाटन कर लो रहा से
1: हाँ ये बैंक चो मुख्य विशेषता ई आई की ईसा का फिजिकल और डिजिटल बैंकिंग सेवा चो हनुदा संगम आसे ने
0: हाँ
1: उन्हीं लागून ये बैंक चो नाम फिजिकल संगालोर बले आसे
0: हाँ और संगे संगे ये बैंक ने पैसा जमा करतो नाल पैसा निकरातो काजे असन काईची बले चिट्ठी पत्री चो काम नी करतो रो से कसन बल्लो ने ये बैंक पूरी तरह ले डिजिटल बैंक होली से यार ये बैंक ने कागज पत्र चो जरूरत नहीं पड़े से ने
1: हाँ
0: बोलुक सकू कि ये बैंक एकदम कागज रहित बैंक आए बोलून बाती
1: हाँ ये बैंक चो मुख्य उद्देश्य आए वित्तीय समावेशन बल्लो ने प्राथमिक उद्देश्य शहरी क्षेत्र मन ने संगे संगे उन वंचित और कम सुविधा वित्तीय समुदाय तक आधुनिक वित्तीय सेवा अमरातूर जेचो पहुंच पारंपरिक बैंकिंग तक सीमित बले आसी
0: हाँ।

0: और संगवारी मन ये तो रही एआई वालों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बैंक आधारित बैंक जो गोट ने
1: हाँ।
0: और एक तो सुरता रह दे ची होती संगवारी मन ये बैंक हासे गुवाहाटी असम ने
1: हाँ,
0: ने
1: हाँ।
0: तो आदाय मैं बोलते रहे फिर कार्यक्रम ने हम गीत गोविंद बाटे जो बोलते से मल
1: हाँ मनीराम अगला गीत है फिल्म चीट इंडिया ले ये गीत के स्वर दिला से अरमान मलिक और गीतकार मनोज मुंतासिर संगीतकार बप्पी लहरी तो या सुनू ये गीत

0: काय सुंदर गीत रे सेमल ने।
1: हाउ मेनी राम,
0: मैं तो गीत के सुनते सुनते तुके देखते रहे कि ती वाले जेलन जाते रहे तुके मन के मन के भाव लिया सन लागे से।
1: हाउ मन के तो भाव ली छी मनी राम।
0: हाँ रसनी आम चो संग जो रहा संगवारी मन के बल भाव लियो तीने तो गीत मन तो सुनाते छी रोमाने मानते रामी असनी पर आम चो संग जो रहा संगवारी मन का जे गोटो कहानी पाठ बल दरुन आनलू से ने ये चो नाव है अपने आपके चिता तोर ने। तो वाले कहने की मैं बोलते रहे कि आम बल सुनू और अपने आपके चिता न देखू ने। तो वाले कहने की आम चो लगे कौन हमारा सो
1: कहानीकार निर्जल शर्मा। तो या सुनुं दुकु ये कहानी पाठ की।
2: नमस्कार, मैं निर्जल शर्मा आज आप लोगों के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका शीर्षक है स्वयं को पहचानो। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने खुद को जान लेने के बाद जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया एवं सदैव आत्मसम्मान से जीवन जीने का तरीका सीखा। रामपुर शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह अपने जीवन यापन के लिए वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजर बसर करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह भीख मांग रहा था। उसी समय एक यात्री ट्रेन से उतरा। सूट बूट पहने हुए वह आदमी बहुत अमीर दिखाई पड़ता था। भिखारी ने सोचा, क्यों ना इससे भीख मांगूं, अमीर आदमी से भीख मांगने पर मुझे अधिक भीख मिलेगी। बस यही सब सोचकर भिखारी ने उस सूट बूट पहने हुए आदमी से भीख की गुहार लगाई और भीख मांगने लगा। भिक्षा मांगता देख उस सूट बूट वाले आदमी ने कहा, क्या तुम हमेशा भीख मांगते हो? तुमने हमेशा लोगों से मांगा ही है, क्या कभी तुमने किसी को कुछ दिया या किसी को कुछ देने का सोचा? भिखारी आश्चर्यचकित हो गया, उसकी आंखें खुली रह गई। वह हड़बड़ाते हुए बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगकर ही अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता हूँ। साहब मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। उस अमीर आदमी ने भिखारी से कहा, जब किसी को तुम कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें कुछ मांगने का हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने का हो तभी मैं इसके बदले तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना सुनने के बाद भिखारी वहां से मायूस लौटकर वापस आ जाता है एवं अमीर आदमी अपने कार्य की ओर चल पड़ता है। समय बीतता गया किंतु भिखारी को उस अमीर की कही बात बार बार याद आने लगी। वह उस बात के बारे में सोचने लगा। वह बात उसके दिल में इतनी उतर गई, वह दिन रात उसके बारे में सोचने लगा। मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मैं किसी को कुछ देने लायक नहीं हूँ, लेकिन कब तक मैं बिना कुछ दिए लोगों से मांगता रहूंगा? बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया, जो भी उस व्यक्ति को भीख देगा उसके बदले वह उस व्यक्ति को जरूर कुछ ना कुछ देगा। लेकिन अब उस भिखारी के दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था, वह तो खुद भिखारी है, भीख मांग कर ही अपना पेट पालता है, ऐसे में वह क्या दे सकता है? ऐसे सोचते सोचते कई दिन बीत गए किंतु कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। एक दिन इन्हीं प्रश्नों में भिखारी विचार मग्न था कि अचानक उसकी नजर कहीं जा टिकी और वह खुशी से चिल्ला उठा। उसे अपना मार्ग मिल चुका था। उसने देखा कि रेलवे स्टेशन के पास छोटे छोटे पौधों से फूल खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं, और उसे अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। कोई भी उसे भीख देता तो उसके बदले भीख देने वालों को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग पाकर खुश हो जाते और अपने पास रख लेते। कुछ दिनों में ही उसने महसूस किया कि उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास सभी फूलों को तोड़ लाता और उन्हें भीख देने वालों को दे देता। यही सिलसिला चलता रहा। भिखारी ने महसूस किया, जब तक उसके पास फूल रहते हैं तब तक उसे भीख मिलती है, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते हैं तो उसे भीख मिलना बंद हो जाती है। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसने देखा कि वह सूट बूट वाला अमीर आदमी ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले कुछ फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, मेरे पास आज आपको देने के लिए फूल हैं, आप मुझे भीख दे दीजिए, मैं बदले में आपको कुछ फूल दे दूंगा। उस साहब को भिखारी की बात बहुत पसंद आई। साहब ने कुछ रुपए दिए और भिखारी ने उन्हें कुछ फूल दिए। साहब ने जाते जाते उस भिखारी से कहा, क्या बात है, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। यह कहकर वे चले गए। उस साहब द्वारा कही बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। बार बार साहब की बात घर कर गई। वह सोचने लगा एवं खुश होकर चिल्लाने लगा। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। उसे लगने लगा कि सफलता की चाबी उसके हाथ लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। और उस दिन के बाद भिखारी फिर कभी स्टेशन पर भीख मांगने नहीं लौटा। 8 माह पश्चात उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम पहली बार मिले हैं। पहले व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम तीसरी बार मिले हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं, हम 2 बार कहाँ मिले थे। अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और अपनी सारी घटना सुनाई। वह दूसरा व्यक्ति अचंभित हो गया जब उसने जाना यह वही भिखारी है जिसे उन्होंने भीख के बदले कुछ देने की सीख कही थी। वे बहुत खुश हुए और पूछा, आज तुम सूट बूट पहने कहाँ जा रहे हो? कुछ देर बाद पहला व्यक्ति बोला, आपने पहली मुलाकात में मुझे प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है और मैंने यह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा और इससे ऊपर उठकर मैंने कुछ भी ना सोचा। आपसे दूसरी मुलाकात के बाद मुझे अपने एहसास दिलवाया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि वास्तव में मैं भिखारी नहीं व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे। वे मुझे भीख नहीं, फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इतने सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आया कि मैं छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे फूलों के बीज खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। लोगों को फूल बहुत पसंद है और इसी पसंद ने आज मुझे फूलों का व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। तो देखा दोस्तों, भिखारी ने जब अपने अंदर की छिपी हुई काबिलियत को जाना तो वह भिखारी से एक व्यापारी बन गया। पहले उस भिखारी को सबके आगे अपने 2 वक्त भोजन के लिए हाथ फैलाना पड़ता था, किंतु अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से वह आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपनी सोच को नैरो थिंकिंग यानी छोटी सोच नहीं रखना है, हमें अपनी सोच बदलनी है। सोच बड़ी रखेंगे तो उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि खुद को सदैव छोटा समझेंगे तो सदैव छोटे ही बने रहेंगे, जहां चाह वहां रहा। इसलिए सदैव प्रयासरत व अच्छी सोच रखनी चाहिए। हमें अपने अंदर की छिपी हुई काबिलियत को पहचानने का प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्षमता अवश्य होती है जो उसे औरों से अलग व आगे बढ़ने के लिए सहायक होती है। स्वयं को पहचानो एवं अपने अंदर की प्रतिभा को जानकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं एवं आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।
0: काय नगते कहानी पाठ रही श्यामल बती ने अपने आपके चिता तोरने आप लोग बोल ने आप लोग हुनर के चिता
1: तोरने
0: एक हमरा तिर निर्जल शर्मा ने आरु सत्य गोट बल सांगला की ने कि गोटोक भिकारी रलो उन भीख मांगुन का रलो ने उन पे आगे जाऊन बाती फिर गोटोक व्यापारी तक बनुन गेलो
1: आगे तो, जाऊन ने

0: अब आय ची की असन आपलो हुनर के जब तक आम्ही नी चितामा आम्ही
1: बाहर जब तक नी निकरावा ने
0: तो आम्ही काही करूक नी शकवा ने तो असन हुआय की आम्ही मैं तो जाने मानते कि उनके मैं किंडी किंडी जाने मानतर उनके अच्छा कर लेना और अच्छा ले जान सके ने हाँ, हाँ। मानतर का है कि लोग चार लोग दग दे तो काय बल दे बोलते तो गोड बल असन बल हुआ है नी
1: समान रुआ है
0: हाँ। तो लोग जो पूरे लोग तो काय ची बल बल दे मानतर का है कि हम के आप लोग उनर के किंडी सिख तो का जे हाँ। किंडी काय तो बल लागू है लाज बलूक पुड़वा है काय दुई लोग पूरे जुकुक बल पड़वा है ने
1: आंसू बलिया
0: हाँ आमचो उनर के बस पहचान तो रहा ने उतरो ने कई ची बल काम नी हो बोलते भी थी नी हो ने तो वाले ये तो रेडी कहानी ने अदा पेर गीत गोविंद बाटे मुर करूं बोलते रहे मैं
1: हाँ
0: अगला गीत आए फिल्म कलंक ले स्वर दिला सोद अरिजीत सिंह और नीति मोहन गीतकार रात अमिताभ भट्टाचार्य संगीतकार रात प्रीतम तो या फिर संगवारी मन सुनंद को ये गीत के

0: श्यामलवती,
1: हाँ मणिराम,
0: गीत मन तो सुन लेने, सुनते चिरोग बाय से ने
1: हाँ।
0: अंतर काय करो आने गीत तो आस्ती चाम चलेगी मंत्र क्या है कि हम के समय हिसाब ने समय के दखुन चलु पड़े से ने
1: हाँ। घर तो घर जातर जरूरी है ने,
0: घरे जातर जरूरी तो है ची मंत्र क्या है कि समय ने उन बात हम के समय ने जाग बल पड़े से नी ने
1: हाँ।
0: पर जसन पनाए बोले हम बेर कर तो इधर दाल नी इला से बोलता संगवारी
1: मंत्री
0: तो काय बोले समय ने जाग बल पड़े से
1: हाँ।
0: तो संगवारी मन फिर कोनी दिने असनी नवा गोट नवा गीत और नया विचार के दरुन फिर हम अमरुआ अदा हम के दियास बे बिदा जा तो पूरे युवाणी कार्यक्रम सुन तो सप्पाय संजोरिया संगवारी मन के मैं मणिराम बघेल
1: और मैं सिमलवती पटेल
0: हम दोनों करूँ से शुभ संध्या जुहार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान

0: व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चक्तलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर भी सुन सकते हैं। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आज 6 बछर पूरा। प्रधानमंत्री हक्कीहीन की बिना गारंटी के कर्जा मिले ले लाखों रेहड़ी पटरी वाले मन के जिंदगी में हो है सुधार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है आज राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के करी शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में घलो प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण ल बढ़ावा दे पर आज ले खेत बचाओ अभियान शुरू। और प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव पर आज डारेगी वोट। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 बछर पूरा हो गए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है योजना के प्रशंसा करत कहीं कि पीएम स्वनिधि योजना है बिना गारंटी के कर्जा वित्तीय समावेशन और विकास के नवा मौका खोल के लाखों रेहड़ी पटरी वाले मन के जिंदगी में सुधार करे है। प्रधानमंत्री है सोशल मीडिया पोस्ट में कहीं कि यह योजना विश्वास सम्मान ऊपर आधारित है। बछर 2020 में योजना के शुरू होने के बाद अब तक 1 करोड़ 12 लाख कर्जा दे गए है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के रामसिया गांव ले राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ करें। 1 महीना तक चले यह अभियान देश के खेती वाले भूइया ला बचाए और किसान मन ला वैज्ञानिक खेती करे बर जागरूक करे की दिशा में बड़का पहल है। इति छत्तीसगढ़ में घलो प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण ला बढ़ावा दे बर आज ले खेत बचाओ अभियान शुरू हो गई है। कृषि मंत्रालय के ए अभियान में किसान मल्ला प्राकृतिक खेती सही मात्रा में खातु के प्रयोग और माटी के उर्वरा शक्ति ला बचाए के बारे में जागरूक करे जाही। ग्राम पंचायत विकास खंड और जिला स्तर में कृषक संगोष्ठी कृषि चौपाल और जन जागरूकता कार्यक्रम रखे जाही। कृषि वैज्ञानिक मन किसान मल्ला रासायनिक खातु के दुष्प्रभाव और प्राकृतिक खेती के फायदा के बारे में जानबा दी। अभियान के दौरान किसान मल्ला अपन खेती वाले भूइया के एक हिस्सा में प्राकृतिक खेती करे के बात कहे जाई। संगे संग खातु के कालाबाजारी और जमाखोरी रोके बर निगरानी व्यवस्था ला और मजबूत करे जाई। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव पर आज मतदान डारेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक नगरीय निकाय में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 पद पर 96 मतदान केंद्र में मतदाता मन वोट डारिन। तो उहे त्रिस्तरीय पंचायत मन में जनपद पंचायत सदस्य सरपंच और पंच के कुल 151 पद पर 274 मतदान केंद्र में 1 लाख ले ज्यादा मतदाता मन अपन मत के प्रयोग करीन। नगरीय निकाय में मतदान बिहनिया 8 बजे ले संझा 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आएगी। तो उन्हें पंचायत चुनाव में मतदान बिहनिया 7 बजे ले मंझनिया 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम ले हुई। पंचायत चुनाव के मतगणना मतदान के तुरते बाद शुरू हो गई है। राज्यपाल रमेन डेका हा आज लोक भवन में राखे गए एक विशेष कार्यक्रम में माना स्थित SOS बालिका गृह के नोनी मन ले गोट बात करें। संगे संग उमन अंगदान और देहदान के संकल्प लेवैया मानवता के सेवा के संदेश दिवैया 75 जिन लोगन मल्ला सम्मानित करें। ए मौका में राज्यपाल है कहीं कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाए ले कतकोन जरूरतमंद लोगन मल्ला नवा जिंदगी मिल सकते। ओमन कहीं कि जौन लोगन मन अंगदान और देहदान के संकल्प ले हैं ओमन समाज के बड़का नायक है। राज्यपाल है नोनी मल्ला शिक्षा अनुशासन आत्मविश्वास और कड़ा मेहनत करे के बारे में कहीं। विश्व तंबाकू दिवस के मौका में प्रदेश भर में नशा मुक्ति और जन जागरूकता अभियान चला के लोगन मल्ला तंबाकू और आने नशीला पदार्थ के दुष्प्रभाव के जागरूक करेगी। ही कड़ी में सूरजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डहार ले जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मन में जागरूकता कार्यक्रम संगोष्ठी और जनसंवाद राखेगे लोगन मल्ला नशा के गलत दुष्प्रभाव के जानबा देगी। थाना मन में नियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स मन धार ले कतकोन जगह में लोगन मल्ला तंबाकू सेवन ले होवैया बीमारी के बारे में बताएगी। ये मौका में गांव के लोगन मन के संगे संग युवा मल्ला नशा मुक्त समाज बनाए के शपथ दिवाएगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर से सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब बांचे समाचार कोती। होटल रेस्टोरेंट और आने व्यवसाय मन में प्रयोग होवैया 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के भाव में बढ़ोतरी करेगी है। राजधानी रायपुर में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के भाव में 52 रूपया के बढ़ोतरी हो है तो उन्हें 5 किलोग्राम सिलेंडर के भाव में 13 रूपया 50 पैसा की बढ़ोतरी हो है। मुख्यमंत्री आज कोंडागांव जिला के ग्राम पंचायत बड़े कनेरा में बने अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र के निरीक्षण करें। इस दौरान उमन ग्रामीण डिजिटल सुशासन के अभिनव मॉडल सेवा सेतु के कामकाज लघलो देखी। सुशासन तिहार में राखे गए जन समस्या निवारण शिविर में आम लोगन मन ले गलत व्यवहार और अपन काम में लापरवाही बरते के आरोप में जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पांडेल निलंबित कर दिए गए है। संभागायुक्त दुर्ग ढार ले जारी निलंबन आदेश में कहे गए है कि जन समस्या निवारण शिविर में ए अधिकारी मंडहार ले आम लोगन मन के संग गलत व्यवहार करेगी जौन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के विपरीत हरे। ए बारे में संभागायुक्त दुर्ग ढार ले मुख्य कार्यपालन अधिकारी ल कारण बताओ नोटिस घलो जारी करेगी रहीस फिर ओमन एखर बने ढंग ले जवाब नहीं दे पाइन ये आदेश तुरते प्रभाव ले लागू हो गए है। लोक निर्माण विभाग मार्च 2026 तक मंजूर करेगे जम्मो काम पर 30 जून तक निविदा मंगाए है और 31 जुलाई तक काम शुरू करे के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल आज जम्मू मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता मन के बैठक लेके विभागीय कामकाज के समीक्षा करें। ओमन नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन में सड़क संपर्क परियोजना ला अवैया बछर के 31 मार्च तक पूरा करे और संगे संग भू अर्जन ले जुड़े मामला ला अवैया 6 महीना में निपटारा करे बर कहीं तो उहे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा नवा रायपुर में विभागीय कामकाज के समीक्षा करें। बैठक में ओमन कहीं कि आम लोगन मल्ला विकसित भारत अधिनियम के बारे में पूरा जानबा देना शासन के पहली प्राथमिकता है। ओमन 1 जुलाई ले लागू होवैया ए अधिनियम के बारे में पूरा जानबा समाज के आखिरी मनखे तक पहुंचाए बर विशेष जागरूकता अभियान चलाए के बाद कहीं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में हुए सड़क दुर्घटना में भिलाई के चंद्राकर परिवार के संगे संग 8 जिन लोगन के मौत हो गई। ये घटना साच पास रद्दा ऊपर हुई जहां पर्यटक मल्ले भरे एक ठिन कार करीबन 500 मीटर गहरा खाई में गिर गये। मृतक में भिलाई के एक दंपत्ति और 2 जिन लड़का घलो शामिल है। ये परिवार मन बेंगलुरु में राहत रहीन। जानबा के मुताबिक 2 परिवार डलहौजी ले साच पास घूमे पर गए रहीन। गाड़ी के वापिस नई लहूटे के जानबा मिले के बाद जीपीएस के माध्यम ले एकर पता लगाया गिस। हादसा के कारण के जांच करे जाते। जुआ और सट्टा के विरुद्ध चलाए जात ऑपरेशन अंकुश के तहत रायगढ़ पुलिस आईपीएल फाइनल मुकाबला के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलावत एक ठिन संगठित गिरोह के पर्दाफाश करके 2 जिन सटोरी मन गिरफ्तार करे है। आरोपी मन के तीर ले मोबाइल फोन नोट गिने के मशीन और सट्टा के रकम ले जुड़े 31,99,000 रूपया नकदी बरामद करे गये है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज लोरमी के गांव जरहापारा में जन चौपाल लगा के गांव के लोगन मन ले गोट बात करके जरहापारा में देवगुड़ी बनाए बर 5 लाख रूपया दे के घोषणा करीन। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम धमतरी जिला में पुलिस की पाठशाला के लोकार्पण करीन। एम आने आने प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी ले जुड़े किताब मल्ला मुफत में दे जाही। और रायगढ़ जिला के मांड नदी में हाथी के सावा के नदियां में डूबे ले मौत हो गए। यह घटना खरसिया रेंज के गुर्दा गांव के तीर हुई। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आज 6 बछर पूरा। प्रधानमंत्री कहीं कि बिना गारंटी के कर्जा मिले ले लाखों रेहड़ी पटरी वाले मन के जिंदगी में हो है सुधार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के करें शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में घलो प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण ला बढ़ावा देबर आज ले खेत बचाओ अभियान शुरू। और प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव पर आज डारेगी वोट। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इन्हें सिरावत है। जय जोहार।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:20 होने को है। संस्कृत में समाचार
3: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी म्यामायाः राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन च नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिकसभ्यतागत सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। अनेन भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने प्रतिशतं 98% विपणौ शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षपूर्तौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् अनया योजनया पथव्यवसायिभ्यः प्रगतेः नूतनावसराः प्रदत्ताः। पश्चिमबङ्गालस्य मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारं विधाय 35 नूतन मन्त्रिभ्यः मन्त्रिमण्डले स्थानम् अयच्छत्। अपि च हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां अण्डर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी म्यामायाः राष्ट्रपतिः ऊ मिन आउं लाइन च अद्य नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिकसभ्यतागत सम्बन्धान् इतोऽपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यामा भारतदेशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्य अनन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सहमत्यं प्रकटितम्।
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल

0: गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधि CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं संधिः देशद्वयस्य आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। एकस्मिन् राष्ट्रीय दैनिक पत्रे प्रकाशिते लेखे श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं निधिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता संधेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशतं 98% शुल्कमुक्ति कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
2: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षाणि पूर्णानि अभवन्। श्रीमोदी अस्याः योजनायाः प्रशंसां विधाय अवदत् यत् पीएम स्वनिधि योजनया प्रतिभूतिं विना ऋण प्रदानं, वित्तीय समावेशनम् अपि च विकासस्य नवीन अवसराः प्रदत्ताः, येन लक्षशः पथ विक्रेति जनानां जीवने उन्नतिः समागता। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारम् अकरोत्। राज्यपालः RN रविः कोलकातायाः लोकभवने आयोजिते समारोहे 35 नूतन मंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कारितवान्। समारोहे मुख्यमंत्रीवर्येण सह अन्य वरिष्ठ नेतारः अपि उपस्थिताः आसन्। नवनियुक्त मंत्रिभ्यः विभागानां आवंटनम् अनन्तरं भविष्यति। शपथ ग्रहण समारोहे स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शकर घोष च शपथ वचनं स्वीकृतवन्तः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जाल पटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। सिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्रीमाल्सः अवादीत् यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। जलशक्ति मंत्री CR पाटिलः, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेन्द्र सिंहः च अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां जलानुसंधान विकास संबद्धां एकां कार्यशालां उद्घाटितवन्तौ। अत्रावसरे श्री पाटिलः अवदत् यत् अस्यां कार्यशालायां जलसंकटस्य समाध्यानेषु व्यापक विचार विमर्शो विधीयते। अस्मिन् अवसरे जलशक्ति मन्त्रालयेन, इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन च जलसंसाधनानाम् आकलनाय, प्रबन्धनाय च उपग्रहाधारितानुप्रयोगम्, उन्नत प्रौद्योगिकीं च दृढयितुं सन्धिः हस्ताक्षरितः। व्यावसायिक प्रतिष्ठानेषु प्रयुज्यमानस्य 19 किलोग्राम भारमितस्य एलपीजी इति वातिभाण्डस्य मूल्ये वृद्धिः सञ्जाता। परं गृहेषु प्रयुज्यमानस्य एलपीजी इति वातिभाण्डस्य मूल्ये परिवर्तनं नैव कृतम्। अवधेयं यत् वैश्विक परिदृश्ये तैलमूल्येषु अस्थिरता कारणेन इयं वृद्धिः जाता। पश्चिमेशियायां अमेरिका ईरानयोः गतिरोध अपि अपरं मूल्यवृद्धिकारणं वर्तते। वस्तुसेवाकरस्य सकलसंग्रहः विगतमासे 3.2% संवर्ध्य 1,94,000 कोटिरूप्यकाधिकः अभवत्। विगते वर्षे मई मासे संग्रहः 1,88,000 कोटिरूप्यकाणि आसीत्। गतमासे केन्द्रीय वस्तुसेवाकरस्य संग्रह 37,790,300 कोटिरूप्यकाणि अपि च राज्य वस्तुसेवाकरस्य सकलसंग्रह 45,043,100 कोटिरूप्याणि आसत्। एकीकृत वस्तुसेवाकरस्य संग्रह 1,50,090,900 कोटिरूप्यकाणि आसीत्। सर्वोच्चन्यायालयेन 5 न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अनेन सहैव मुख्यन्यायाधीशं समेत्य न्यायाधीशानां संख्या 37 संवृत्ता। विधिन्यायमन्त्री अर्जुनराममेघवालः सामाजिकसञ्चारपटले अवोचत् यत् राष्ट्रपतिना मुख्यन्यायाधीशस्य परामर्शानन्तरं सर्वोच्चन्यायालये 5 नूतनन्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अवधेयं यत् केन्द्रप्रशासनेन विगते मासे एकं अध्यादेशं प्रस्तूय विधो संशोधनं कृतमासीत्। हांगकांग नगरे आयोजितायां 22वीं एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि 5 रजतपदकानि 4 कांस्यपदकानि च समेत्य 19 पदकानि विजितानि। पदकतालिकायां भारतेन द्वितीयं स्थानं प्राप्तम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 22वीं एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि प्राप्तवद्भ्यः भारतीय दलेभ्यः वर्धापनानि प्रदत्तानि। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् इमे युवानः भारतस्य कीर्तिं विश्वस्तरे प्रापयितुं निरन्तरं प्रयत्नं कुर्वन्ति। एतेषाम् उज्ज्वल भविष्याय प्रधानमन्त्रिणा शुभकामनाः प्रदत्ताः इति वार्ताः।
5: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गणेश मंडावी और साथियों के गाए गोंडी गीत।

अभी आप सुन रहे थे गणेश मंडावी और साथियों की गाय गोंडी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करो।

0: आइए फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए आज हुआ मतदान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 52 रूपये और 5 किलोग्राम के सिलेंडर में 13.5 रूपये की वृद्धि की गई। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए आज मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 पदों के लिए 96 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 151 पदों के लिए 274 मतदान केंद्रों पर 1,00,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया गया, जबकि पंचायत चुनावों में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम से हुआ। पंचायत चुनाव की मतगणना मतदान के बाद संबंधित केंद्रों पर ही चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से खेतों में संतुलित खाद प्रयोग करने की अपील की।
1: हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नंदा धुंध खाद मत डालो, अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाओ और उसके बाद कौन से खाद की कितनी जरूरत है, संतुलित खाद डालो। उसे को खेती बदलनी है, बदलनी है मतलब ऐसी करनी है कि जिसपे किसान को ज्यादा आमदनी हो और ज्यादा फसल पैदा हो और खर्चा घटे। ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए।
0: इधर छत्तीसगढ़ में भी प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो गया है। कृषि मंत्रालय के इस अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। ग्राम पंचायत, विकास खंड और जिला स्तर पर कृषक संगोष्ठी, कृषि चौपाल और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृषि वैज्ञानिक किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव तथा प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी देंगे। अभियान के दौरान किसानों को अपनी कृषि भूमि एक हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। होटल, रेस्तराओं और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देशभर में वृद्धि की गई है। राजधानी

0: जयपुर में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 52 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। अब यह सिलेंडर 3,346.50 रूपये में मिलेगा। वहीं 5 किलोग्राम के सिलेंडर के दामों में 13.50 रूपये की वृद्धि हुई है। अब यह सिलेंडर 882.50 रूपये में उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कोंडागांव जिले के ग्राम बड़े कनेरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत संरक्षित लगभग 150 वर्ष पुरानी उड़िया भाषा में लिखित प्राचीन पांडुलिपियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इन पांडुलिपियों को सहेज कर रखने वाले परिवारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज की भागीदारी के बिना सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान भारत की बौद्धिक विरासत को सुरक्षित रखने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत बड़े कनेरा में स्थापित अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण डिजिटल सुशासन के अभिनव मॉडल सेवा सेतु की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में माना स्थित एसओएस बालिका गृह की बालिकाओं से संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने अंगदान और देहदान का संकल्प लेकर मानवता की सेवा का संदेश देने वाले 75 नागरिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ने से कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लोक निर्माण विभाग ने मार्च 2026 तक स्वीकृत सभी कार्यों के लिए 30 जून तक निविदाएं आमंत्रित करने और 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजनाओं को अगले वर्ष 31 मार्च तक पूरा करने तथा भू अर्जन से जुड़े मामलों का आगामी 3 से 6 माह में निराकरण करने को कहा। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने नवा रायपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को विकसित भारत अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी देना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने 1 जुलाई से लागू होने वाले इस नए अधिनियम के प्रावधानों और नियमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने को कहा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में नशा मुक्ति और जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। इसी कड़ी में सूरजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जनसंवाद आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। थानों में नियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा विभिन्न स्थानों पर लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को नशामुक्त समाज निर्माण की शपथ भी दिलाई गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए एक सड़क हादसे में भिलाई के चंद्राकर परिवार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा साच पास मार्ग पर हुआ, जहां पर्यटकों से भरी एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मृतकों में भिलाई के एक दंपत्ति और उनके 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये परिवार बेंगलुरु में रह रहा था। जुआ और सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन अंकुश के तहत रायगढ़ पुलिस ने आईपीएल फाइनल मुकाबले के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, नोट गिनने की मशीन तथा सट्टे की रकम से जुड़े 31,99,000 रूपये नकद बरामद किए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुकमा, बीजापुर, बस्तर सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों के साथ ही महासमुंद, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा सहित प्रदेश के 18 जिलों में तेज हवा के साथ

यह घटना खरसिया रेंज के अंतर्गत मांड नदी के गुर्दा गांव के पास की है और कांकेर जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 33 लाख रूपये कीमत का चोरी का सामान और वाहन बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए आज हुआ मतदान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 52 रूपये और 5 किलोग्राम के सिलेंडर में 13.5 रूपये की वृद्धि की गई। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। शाम के 7 बजे है, पेश है दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: उमर दृष्टि रूने हैं।
1: अमर लेखा है
0: राम राम राम राम
1: राम राम पुलो राम राम
0: दक्टिरू अमित उमर रू
1: okay.
0: अंतर दक दादी मन बल बसला से
1: हाँ।
0: मन बल जुहार करतो रहे
1: okay. एची संगे बस्तर केसर कार्यक्रम सुनतो सब पाए गाँव करी दादा दीदी सियान सजन और संजोरिया संगवारी मन के मैं टीरू
0: और मैं फूलो
1: अमित दोनों करूँ से
0: राम राम, राम राम और नानी नानी पीला मन के हम चो दोनों चबाड़े खूब
1: मया और
0: लाड़ मैया चुआ कर ले मन खिने हरी खूब कहने
1: okay.
0: एक आज खिन लगे लगे करते रहते रहे
1: oh.
0: कसन बोले एवन कसन पढ़ाई काज बोल बोल कुला गोए ने एक आज खिन अनगर मैया करते रहे
1: oh. कसन बोल लेने हमी तो रोजे दिना ज्ञान ध्यान चो गोड संगे संगे गीत गोविंद बोले दरु नम्रो से जीने okay.
0: मान तो टीरू दख आम चो जन बस्तर ने कई जाति चो लोग मन रहे सोत ने जाति पात चो लोग मन रहे सोत अरे मन सपाय लोग मन का सपाय मिशन भाती हरिक मन ने रहे सोत अरे सपाय चो जसन गोण मुरिया भतरा धुरुआ और कई जाति चो और बोला आसोत सपाय आप लोग जोन का बोले लोग जोन संस्कृति रहे से उन मंडे जुड़ रहा से
1: okay.
0: पुरकती डाले
1: पुरकती बोले ने हम जो
0: दादी पुरखा पाटी डाले जो जोन रीति रिवाज रहे से ये सब पाए के धर्म भाती आप लोग जीवन ने काम करे सोत
1: कसन बोले ने हम जो कसन कान पाना है रहन सहन कसन है
0: गीत गोविंद हो से
1: अरसनी ची हम चो देवी दावी मन चो संस्कृति बोलो ऐसे ने
0: उसने बोले आम चो जो ने बस्तर ने ये लोक पर वो लोक तिहार खूब हो से ने हर दुई दिन तो कहीं ना कहीं तिहार हम रहे से
1: हम रहे से ठीक है
0: और ये था फिर बस्तर दशहरा ये गोटक विश्व प्रसिद्ध है बोलो ने 75 दिन चो हो से और ये थाने कितरो पूजा पाठ हो से है कि नहीं और गाँव गाँव तो देवी धामी सपाए हमरे सोत अरे था हर दिन कहीं ना कहीं पूजा पाठ हो से
1: क्या
0: और एक सप्पा लोग मन का सुंदर हरिक मन ने मिशन भाती बनाए सोत
1: बनाए सोत का कसन बोले ने आम चो बस्तर ने का अनेक समाज चो लोग मन आसत ने तो उन मन बोले आप लोग संस्कृति होली मतलब
0: रीति रिवाज
1: होली आप मन चो नियम

0: કસનબલ ને મરણી ને ભિયા ને
1: સટી ને બોલો ને પીલા દાયલે તો ધરુણ ભાતી મરતે તક જીવન બોલ રીતિ રિવાજ સપાય કે માને સો તાર અચ્છા ધરુણ ભાતી ચલે સો આપણો જીવન
0: ઓકે
1: ને અસિન તક કલા ઓર શિલ્પ કલા ને બોલ કઈક ઠન હોય છે જન ડોકરા કલા હે અસને લકડી કલા હોય છે બાંસ કલા હોય છે એ સપાય આમ જન એ કલા મના તે સપાય વિશ્વભર મેં ખૂબ પ્રસિદ્ધ હશે ને અરસને નાચા ને બોલક કઈક નાચા હોય છે માંદરી નાચા હોય છે મોરિયા નાચા હોય છે પંથી નાચા હોય છે ઝેલા હોય છે સપાય ગોટો આપલો જન આગ જમાના જન બાજા મન રહે છે હું થાને બજાતી ગયેલી અમે નાચી જાય છો તાઈ નહીં
0: ઓકે
1: અરે આમચો સામાજિક પરંપરા હોય છે અરે થા ગોટો ઓર હોય છે ઘોટુલ એ બોલે આમચો દાદી પુરખા પાટીદાર ચલતી હોય છે એ બોલે નિભાય છો તેમાં ને
0: ઓકે એ બદલે નિભાય છો કસન બદલે ને એ સબ કે બચાન સંગાલો જાલે આમચો એ તો પીડી બોલે જાન દે ને
1: જાન દે અર શીખ દે બોલે
0: હા શીખ દે બોલે અરે આમી ઉમન કે ની શીખાલે ને કાં લે શીખવા
1: એ પ્રકૃતિ ચો જન હોય છે દેવ પૂજા અને દેવ પાળ હોય છે દેવ પૂજા હોય છે ગજ ખૂટ હોય છે પાણી હોય છે ડોંગરી હોય છે સપાય કે પૂજે છો નહી પૂજા પાઠ કરે છો ગાંવ ની ગુડી બોલ હોય છે એ સપાય કે ધરણ ભાતી મન ચલે છો
0: ચલે
1: માનસોત અરસ ને પીલા મન કે બોલ શીખાતો રહે
0: શીખાત રહે
1: એ જો સપાય છો ગોટો માન રહે છે અહીની
0: હા ધક ફૂલો એ તો ગોટોલી ને અસની ચી આમ ચલાગે જાલા મન બલાસે આલ એ જાલા મન કે બોલે અમરા હું
1: આલે આલે
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
3: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपर एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपर एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नी होली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रहे दे असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रदे।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा कीवा लेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़ इत बुताते इव सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बुता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मुंड चक्का ना गाड़ी 1% जीएसटी मौला तेने दोर किता अदेन के और सुबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता।
0: પુલો એ જાલા મંકે તમરાલુ ને
1: માન તો ટીરુ દક हम गोट गोठे आलू जाला मन के सुन रू सफाई बड़े बड़े लोग मन रहो से ने
0: okay.
1: सफाई ज्ञान ध्यान चुकोट मन के खूब ध्यान देवन भाती सुनू से
0: oh.
1: मन तर पीला जिला मन का चुकोट कहानी होले नहल कविता होले हरी कुवात ने
0: हरी कुवात का उसने ची हम चो मोडरा ने कविता पाठ आसे अरे कविता पाठ के हम चल लगे दरोनी ला से डी एस बघेल आले कविता पाठ के बोले अमी बोले सुनो और गाँव करी दादा दीदी
1: बोले सुनो नाव का है
0: ये कविता पाठ चो नाम आए बस्तर चो चीना बाना
1: आलते भी कविता पाठ के हम बोल सुनू
0: आओ
7: सपाई सुन तू दादा दीदी भाई बहन मन के मैं डीएस बघेल बाटली सबके जुआर करें मैं आपन मंच पूरे धरुन ले से मानव अधिकार दिवस चो एक कविता पाठ सुना ए दादा ए दीदी ए भाई बहन मन आमे सपाय जानू से आमचो देश कितरो सुंदर भारत देश आय ए दादा ए दीदी ए भाई बहन मन आमे सपाय जानू से आमचो देश कितरो सुंदर भारत देश आय दखानी रोजे बरक 14 नवंबर के पीला मंचो बाल दिवस मनाऊ से गुरुजी मंचो 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाऊसे और हर बरक 15 अगस्त के रोजे बरक आजादी पर्व दिवस आमे मनाऊसे ए दादा ए दीदी ए भाई बहन मन आमे सपाए जानू से आमचो देश कितरो सुंदर भारत देश आए ए दादा ए दीदी ए भाई बहन मन साँचे संगे संगे आमे सपाए 10 दिसंबर 1948 ले मानव अधिकार दिवस रोजे बरक आमे मनाते यूसे ए मानव अधिकार दिवस ले आमे सपाए मानव जीवन जीव तो काजे और दादा दीदी भाई बहन मन समाज परिवार चो उन्नति बढ़ती काजे आमे

की बहन मन आमे सपाए के जानू से आम चो देश की तरो सुंदर दखानी भारत देश आए। मैं तुम के सांगे से मौली काम चो अधिकार चो उपलक्ष्य में आम के काये काये मीरे से होनी संगे संगे दखानी नैतिक अधिकार बोले आम के मिरली से ये हक ने ये अधिकार ने आमे आम चो माए बाप के और गुरजी मन चो गोट के मान तो राय और सही सही गोट के सांग तो राय होनी अधिकार होनी हक संगे आम के दखानु कानूनी अधिकार बलि मिरली से ये दादा ये दीदी ये भाई बहन मन आमे सपाए जानू से आम चो देश की तर सुंदर आय भारत देश आय कानूनी अधिकार आम चो मनुक सब चो बाएले पिला झीला मंचो समान कानून आम के मिरली से ये दादा ये दीदी ये भाई बहन मन नामे सपाए जानू से आम चो देश की तोरो सुंदर भारत देश आय सपाए दखानु 10 दिसंबर 1948 ले आमे मानव अधिकार दिवस रोजी बर कामे मनाते उसे ये अधिकार संगे संगे दखानी आम के धर्म और संस्कृति चो अधिकार बले आम के मिरली से ये हकले ये अधिकार ले आमे सपाई देशवासी मन के आपलो आपलो धर्म चो तिहार मना तो अधिकार बले मिरली से जसन की सपाई धर्म चो लोग मन आपलो आपलो धर्म अनुसार तिहार और पूजा पाठ करसो ये दादा ये भाई बहन मन आमे सपाए जानू से 10 दिसंबर 1948

10 डिसेंबर 1948 ले मानव अधिकार दिवस रोजे बरका में मनाते उसे। ए दादा ए दीदी ए भाई बहन मन ए चे संगे संगे आम के दखानी समान अधिकार और स्वतंत्र अधिकार बोले आम के मिरली से ए अधिकार ने आमे सपाई के ये आमचो भारत देशो निवास ने आम कोनी बोले राजने जाऊन रहो सकू और धंधा पानी करूँ कमाऊ खाऊ कर सकूँ आमचो देशो भित्रे आमे कहाँ बोले बुलुक लाए सकूँ। ये दादा ये दीदी ये भाई बन आमे सपाए जानू से 10 डिसेंबर 1948।

0: अधिकार दिवस रोजी बरक मनातो होईसी हो न दिन ने आमे सपाई मनु जीवना संगे संगे समाज परिवार उन्नति बढ़ती होये से ए दादा ए दीदी ए भाई बहन मन और सपाई चु भलाई बले होये से ए दादा ए दीदी ए भाई बहन मन आमे सपाई जानू से ए आमे सपाई चो मूल अधिकार आए ए दादा ए भाई बहन मन सपाई चो मानव जीवन चो उड़ती बाड़ती काजे मानव अधिकार जरूरी होये से आम चो देश की तरो सुंदर भारत देश आए रोजे बरक 10 दिसंबर ले मानव अधिकार दिवस मनातो आए ए दादा ए दीदी ए भाई बहन मन सुना मामे सपाई जानू से 10 दिसंबर 1948 ले रोजे बरक 10 दिसंबर के आमे मानव अधिकार दिवस मनाऊ से।
1: तो पुलो एक काय सुंदर कविता पाठ के तो सुन लू ने।
2: अरे के कौन सांग तो
1: DS बघेल।
2: हाँ काय सुंदर गोट मन के सांगला ने कविताश ने एक आम बल सुन लू और पिला जिला मर सुन भाती सीखला बोले
1: okay.
2: इता नंगत नगर कोट में नहीं रहे ने
1: तो असनी सी
2: दिवस चो रहे पीला जिला चो दिवस चो रहे
1: okay.
2: सपाई कोट में रहे था
1: तो असनी कविता पाठ के तमरा लू ने असनी ची और अम चलगे गोटो गीता से आले गीत के बोल सुनो पाचे गीत कुरिया मंच नाव के सांगवा।

0: हाँ तो टीरू दक्का सुंदर गीत रहे ने,
1: आओ का
0: अरे गीत की गहन रोत
1: लके सर को द्रा मारू उन मंच
0: संगवारी
1: संगवारी
0: मन
1: मन
0: दक। ये गीत संग संग आप जो जातो समय बोले होली
1: होली का
0: आलते बिदा धरू ने
1: आले ती मोटरा गडरक सकल मैं भी दादा रहे
0: आले
1: एची संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनते सपा गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संग जोरिया संगवारी मन के मैं टीरू
0: और मैं फूलो
1: आमी दोनों करूं से
0: राम
1: राम,
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जगदलपुर को। शाम के 7:20 हुए हैं। पेश है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव।

0: खुबे नंगे थोली रे, खुबे नंगे थोली।
1: हाँ।
0: भगवान आमचो ऊपरे असनी दया करते रहो, देखनी।
1: हाँ।
0: भगवान चो दया ले काय सुंदर आमचो फसल होली से।
1: होए हो, महाप्रभु असने आम के अस्तिर ने संगाओ ने।
0: हाँ काय?
1: भगवान चो कृपा ने इत्रो बेड़ा खड़ा आसे और गुटकी ची बेटिया से आमचो।
0: हाँ।
1: काय सुंदर है बे बतर हिसाब ने फसल होली से हो।
0: हसनी तो आए।
1: आम के और काई काम धंधा करू बल नहीं लागे। सत्य ची बल लासो आमी दू ची जान तो डोकरा डोकरी।
0: हाँ, डोकरा और डोकरी।
1: कितरो के खावा तो जितरो बले आसे खुबे आसे ने।
0: खुबे आए, खुबे आए। हो काय मानतर नहीं रे, ये कल जुक ने कल हिसाब ने जसन कमानी होए से नहीं, केवे केवे तो दखुन मोके खूबे अचरिज लागे से।
1: हाँ, ये कसन बीती अचरिज लागे से हो तुमके?
0: ये बीती अचरिज लागे से रे कि आमचो बेड़ा ने तू आगे दखते रहीस।
1: हाँ।
0: कितरो मुंड नागर लागते रहे,
1: लागते रहे, लागते।
0: ये बे काय उतरो नागर तियारू से लागे से नहीं तो लागे।
1: ये बे कहाँ नागर तियारू लागे से ने?
0: होई काय? ये
1: बे एकला दुकला लोग देसी नागर के फांस हो नहाले फिर ट्रैक्टर चाहिए बेकार ने
0: होनी के तो बोले से।
1: हाँ।
0: कहाँ बुलुन बुलुन नांगर फान तो काजे लोग डगरा तोर और कहाँ ये ट्रैक्टर ने डंडी कसन जोपुन सारसत
1: सत्य।
0: कितरो फरक होन गेली से। आगे बेरा चो और ये बे चो कमानी ने कसन
1: सत्य
0: अचरिज बीती गोट नु आए गुनु।
1: हाँ, अचरिज बीती गोट तो आए चे।
0: हाँ।
1: एबे जानू सप्पाय कमानी चुवाट मन बले तो बदल ली से हो।
0: हुन तो आए समया दखून धीरे धीरे लोग मन सीखते गे लकाय।
1: हाँ।
0: आमी जानू चुचाय बेड़ा ने धान के पेरुन देते रलू।
1: हाँ।
0: बुना हिसाब ने धान चो कमानी करते रलू।
1: हाँ, हाँ।
0: पाछे काय आए रोपा उवाट के जान लू,
1: जान लू।
0: रोपा उवाट के तो जान लू।
1: हाँ।
0: फिर और बले कयक उवाट मन के जानते गेलू।
1: सत्य
0: आए कि नु
1: आए?
0: समय हिसाब ने कमानी वाट मन सपाय बदलून गेली से।
1: हाँ,
0: हाँ। सत्य की नु है?
1: एहो तुम्ही हाँ। बेड़ा चो लोबिया और सेमी के टूटा तो काजे फैले पारा चो लोग मन के सांगलास कसन देखला पाचे फिर भूल कुन जाऊँ हास।
0: अच्छा सुरता करा लीस रे।
1: हाँ।
0: मैं सत्य भूल कुन रले
1: देखलास
0: आले काई नहीं हुई डंडी के बेजान भाती सांगुन दे दे।
1: हाँ।
0: मांतर दख है आमचो नोनी काय करे से।
1: नोनी ए नोनी ए लक्ष्मी
2: ओ आया
1: कौन बाटे गेली श्री हुन खोली ने तो पड़े से
0: आले पड़े से जाले पड़ो नहीं काय काज हाक देसी
2: काय होली आया
1: ए दे तुझे बाबा
0: काय नहीं बेटा मैं ची नोनी कहाँ गेली बोलते रहे एबे शहर बाट ली ले तेबे तू चो आया संगे गोठिया तो के तू के नी देखुन पूछते रहे काय
1: आले
0: ची काय
1: आले मैं तुम चो काजे चाह मनाऊ नाने से हो।
0: हाँ आले कनी कोन चाह पियों देस
2: हे पढ़ते रहे काय बाबा शहर ने जाऊन भाती खेती मोहक माचो साहब मन संगे भेट घाट होली काय?
0: हाँ हाँ भेट घाट बोले होली और जमाए ओसो जेके बेड़ा ने लगा तो राय उनके बोले घेनु ना अल्ले से।
2: अच्छा तो आए ये बाबा।
0: हाँ।
2: ये काली के नहीं।
0: हाँ।
2: आम चो बेड़ा के दखुक आम चो स्कूल चो लेका लेकी मन ए हुआ
0: आम चो बेड़ा के।
2: हो
0: अच्छा अली ये होत नहीं मांतर बेड़ा ने काय के दख दे गुनु
2: काय के दख दे?
0: हो
2: बेड़ा के दख दे और बेड़ा ने कसन उपजन कसन वाट ले होए से ये गोट के पूछ दे।
0: असन
2: देख बाबा मैं बारहवीं पढ़े से
0: पढ़
2: और एग्रीकल्चर धर ले से खेती कमानी आम चो मूर धंधा है यही बोलूं तो स्कूल चो सफाई लोग जानत चे।
0: हाँ।
2: यही काजे बल्ला सोत कि काली के ये वात मने।
0: असन
2: हो
0: हाले ते बे होत नहीं ये सोमारी। हाँ। सोमारी
1: होय
0: काली के तू रेटे रेटे ले बेड़ा चो काकड़ी मन के टूटा उरसे।
1: हाँ।
0: नोनी चो संगवारी मन ए बात मने उन मन के खा...

0: टूटा संग जानू आले एदे चाह के पिया था और जहाँ से फैले पारा
1: बाटी देश
0: बुती लोग की तिहार तो काजे
1: हाल देश देश आली नोनी की चाह नहीं दीस
0: जा बेटा तू जाओ निकरा पीउ से रे
2: हाँ आया जाए से और तू जो काजे बोले आने से
0: है अले आन खिंडिक माँ
1: बिल्कुल महालक्ष्मी महा आए मोचो बेटी आले चाह तो सरली
0: हाँ।
1: मैं जाए से भी रे
0: आले
1: आले मोचो फटफट चीचो चाबी कहाँ संगली ये दे ये लगे आसे मैं जाए से आए
0: आले जा
1: हाँ हो ये दे जाए
0: से झपकी आसे
1: हाँ हो झपकी

0: राम राम ना रघु, तू के लगे दखले गुनु फटफटी के थे बाले। कसन काय काय हाल चाल है बाबू?
1: हाँ हाँ राम राम ना रे।
0: राम राम राम राम
1: मचो तो हाल चाल नंगते नंगत आए।
0: हाँ
1: जाले तू ही सांग, तू ये भी समझ भी रही है फले पारा कहाँ जाओ रईस?
0: काली ले सेमी और लोबिया के टूटा हुआ बोले दे बल्ले से।
1: अच्छा
0: यही काजे फैले पारा बाटे भूती लोग मान खाक दे जाऊ रहे हैं। सुन लीज
1: ए ना रहे तू
0: ओय
1: मच बाड़ी चो साग फसल ने किंडे के कीड़ी बीमारी महा दखा दे सोत
0: आसन
1: मके तो चिंता धर लेबे ना।
0: हाँ
1: कसन करें दे बोले से।
0: हाँ हाँ
1: अले तू ची काई उपाय सांगुन तक।
0: अरे भकवा माने ये चोका जी आगत ले काई उपाय करते रहीस
1: नहीं
0: आगे चो महा ये बे काई चो बले अड़ना भोले काई तकलीस नियाए।
1: अच्छा
0: तू चो लगे मोबाइल नियाए
1: मैं तुके मचो चीपा के सांगे से और तू ही मोके मोबाइल के पूछीस।
0: होई ना तू चो चीपा चो उपाय मोबाइल ने चे आसे होंचे ही काजे बलने से।
1: मोबाइल ने?
0: हाँ
1: ये मोबाइल ने फिर कसन उपाय रह देता ना।
0: तू आगे सांग नू मोबाइल आसे कसन तू चो लगे।
1: आमी मोबाइल घेनून काय करवाना आम के फिर काचो संगे को ठहते और आयता और ये मोबाइल फोन महा अड़रा जिनिस मन नुआ पीढ़ी चो लोग मंचो झंझटात जाले तू ये उपाय तो सांग नू।
0: देख रखू तू ये भी बले कौन जुग ने जीवसी जाले मैं नहीं जाने। मैं तू चो उपाय के मोचो मोबाइल ने निकरा से एधर
1: हले
0: हाँ यदि मोबाइल निकला ली है यदि दा ये अबर ये नंबर के लगाए समय है। हाँ हेलो किसान कांसल सेंटर से। हाँ हाँ मैं रायतू राम बगल बले से। हाँ हाँ मोचो चीपाए। हाँ हाँ हेलो हाँ ये देना रघु तू चो चिपा के तू सांग धर मोबाइल हेलो कर।
1: हेलो
0: हाँ
1: हाँ हाँ हाँ हाँ मचो चिपा आए। ओहो ये देना तुच मोबाइल पक्की भीती है उपाय बल लगा लिस ना।
0: हाँ
1: बड़े बड़े साहब मन सके तुचो जान चीना से ना।
0: कैसन बाबू
1: एक के हार मोबाइल ने गोठाउन देलिस।
0: ये साहब मन संगे गोठिया तुर काम तू चो लगे मोबाइल होनो ने तू ही भले करुक सकिस।
1: ए ना रघु तू ही जानू बड़े किसान रामी नानी किसान
0: सन नु है बाबू
1: आमी कसन गोठा सकून देना।
0: ये भी गोठिया लिस्ट तो उसनी तो गोठिया से
1: उन तो तू चो फोन ने तू ही लगा लिस गुनु गोठा ले काय।
0: देख ना रघु यही काजे तो तू के मैं भकवा बोलू है। ये भी मैं जानू फोन करू रहे किसान कॉल सेंटर ने समझ लीस
1: काय।
0: किसान कॉल सेंटर
1: काय बीती सेंटर ने
0: किसान कॉल सेंटर ये सफाई किसान मन का जे खुबे फायदा बीती गोठाए। ये थाने कोनी बले किसान आप लो फसल चो रोग बीमारी मन के गुचा तो काजे सोर सलाह धरुक सके।
1: अच्छा।
0: और एता फोन लगा तो काजे पैसा बले नी लागे। सुन लीस
1: जाले ये तो खुबे नगद गोठाए।
0: हाँ नगद तो गोठ आए चे हुन मन सफाई उपाय के मोबाइल ने सांग सोत फिर हुन मन चो सांगलो हिसाब ने उपाय कर तो राय समझ लीस।
1: ओए ना सत्य बोल लीस उपाय मोबाइल ने चिया से ने।
0: समझ लीस ने आले तू चो उपाय तो मेर ली अबर मैं जाए से आए। राम राम
1: थेप थेप तू फिर शहर बाटे के बे जावास?
0: काली के आमचो नौनी मनचो संगवारी मन बेड़ाचो फसल मन के दखुक एसत परंदिन जाऊं का कह जाए गनु।
1: मैं बले ते बलते रहे
0: आसन
1: मुझे बेड़ा का जे उपाय बले घेन तू।
0: हाँ हाँ
1: और संगे संगे गोटक मोबाइल बले घेन तू बोलते रहे।
0: अब रिलीज तू लाइन देने आले जावा ठीक है
1: आलते।

0: तेरा तो फोटो खींचना रहता है।
1: कसन
0: होली काका, इतरो हर बार नहीं कहाँ ले चीज
1: कहाँ ले नहीं उन्होंनी तुचो बाबा काली संज बेरा भेटू रहे।
0: हाँ।
1: हुन सांगलो की तुचो संग चो पड़तो पिलामन आज बेड़ा के दखु के दे। तेबे मैं विचार कर ले की मैं बोले दंडिक जाऊं दखेन दे।
0: अच्छा तो होली काका, मैं जानू खेती किसानी विषय धरून पढ़ाई करे से।
1: अच्छा।
0: ये सफाई मोचो संगे पढ़ सो। आज ही आमचो बेड़ा के दखु किला से आले जाऊं। हुन दे हुन लग ले आए आमचो बेड़ा।
1: अले राम राम ना रे तू।
2: हाँ राम राम रघु, राम राम। तू ये बाटे कसन ना? और हाँ ये पिला मन तुम्हें ये बाटिया या ये बाटिया लाड़ी बाटिया ये लगी या ये लगे ये बाटिया ये बट बस आई या ये दे दे मोसनी स्टार्टिंग का है धरा बस है। हाँ बस है बस है बस है ठीक है बस है
1: बस बस बस। मैं यही पिला मन के दखूक और ए मन के काय सांग से हुन गोट के सुनूक इथा अमर ले से ना।
2: हाँ जाले अच्छा तो कर लीस आले पिला मन।
1: हाँ
2: हाँ मैं तुम चो संगे गोठे आए दे। लक्ष्मी सांगते रहे कि तुम्हें मोचो किसानी चो कहनी सुनु आहास मने सत्य आए ठीक है भाई है नहीं हुसन जाले सांगे से सुना है। मानतर आम चो सोमारी कौन बाटे गेली ए ए सोमारी कौन बाटे गेली जाले सोमारी
3: ऐसे सुने से
2: हलाओ हाओ
3: हाओ हाओ ए दे तो काकरी मन के टूटा बलू रहा जे
2: हाओ हाओ हाओ हाओ
3: पीला मन खा दे बलून।
2: हाँ बोलू तो रहे
3: होनी का जे तो का रसिया कौरी काकरी मन के टूटा ले से।
2: अच्छा कर ली
3: काय सुंदर नोनी बाबू मनात। ओहो ए दे बाबू नोनी मन ए दे दे कडरी और ए दे पिसलो नोन मिरी बोले आसे ए दे काकड़ी के बोले खाहा और ए दे मन चोट के बोले सुना।
0: काकड़ी और कडरी के ये बाटे दे साया।
3: हाँ हाँ
0: मैं कार्टून कार्टून सफाई के देते जाएंगे
3: ए अच्छा हो दे नोनी ए दे।
2: हाँ ठीक है आले अदा मैं मोचो गोट के मूर करे से आए। नोनी बाबू मन सुना है
3: सुना सुना सुना सुना
2: बेड़ा खाड़ा चो कमानी आम चो पुरखती बेरा ले आमी करते रहूं। मानतर एबे चो हिसाब ने दिन दुनिया खूबे बदल ली। एबे समया जसन चले से उसने हिसाब ने बेड़ा चो कमानी करुक पड़े से सत्य आई की नुआ काय के सांगुआ हास्ता आगे जानू सोजे बेड़ा ने बीज के पेरन देते रहूं। असनी दखा रखा करते रहूं खत भात बले गोबर खत हुन बले काई हिसाब नहीं फेर पाछे धीरे धीरे दूसर खत मन के बले लगाऊ सीख लू।
1: हाँ।
2: ते बले बले उपजन ने काई रोग राई कीड़ी बीमारी मन हुन गेलो ने कोके

0: अंतुता आमचो गावले टप्पाय लाफी एपचो हिसाबने 20 किलोमीटर महा ठान ने गराम साहेब साहब मन रते रहत।
1: अच्छा
0: सुनला हुंचो लगे जाऊन सांगतो के हुन कीड़ी बीमारी चो उपाय सांगते रहे। खिड़निक जान लो लोग जावत और नहीं जान लो लोग कहां ले जाता जाता था। मानतर उन्नत वाट हिसाब ने सोजे पेड़ तो फांदा के छाड़ून भाती किसान मन आपलाहान बेड़ा मन के खोड़ून भाती गभार बनाला और चिखल मताऊन रोपा उवाट करूक मुरियाला।
1: अच्छा।
0: रोपा उवाट करतो के उपज बाढ़ ली। पीला मन ध्यान दिन मोचो गोट के सुनसास का सुना है। देखा रोपा उवाट संगे संगे जान लू सपाय सरकारी खत के लगाऊ और पाछे उपजन बले एक के हार बाढ़ते गेली। उपजन बाढ़ली मानतर कीड़ी बीमारी बले बाढ़ली रोग राई मन बले बाढ़ला उपाय का जे खूबे मुश्किल होते रहे। केवे नगद फसल बले होए और केवे पुईत नाय फसल कीड़ी ना हले रोग ने न सुन जाए। किसान चोक जीवना ने काय के सांगा से पीला मन के भाई सुख बले आए के भाई दुख बले आए। मानतर पाछी हमी धीरे धीरे नगद गोट के बले जान लू गोटो खूबे नगद गोट मोचो जीवना ने होली। मोचो घर ने महालक्ष्मी महा मोचो बेटी जन्म ली और ये नोनी मोचो बिया चो 20 बरख पाचे भगवान चो दिलो वरदान महाईली। नोनी के मैं बड़े बाढ़ते जातो के स्कूल पठा ले।
2: हाँ, के ने।
0: हो ये बाटे नोनी स्कूल ने पढ़ून बाढ़ते गेली और ये बाटे मोचो दखते दखत काय के सांगा से नुआ नुआ बेड़ा खड़ा चो वाट मन दखुक मिरली। सुन सास काय आगे जानू बरक कार ने एक हार धान कमाते रहू काय काजे बल्ले चमास बतर लागून गोट की फसल होते रहे। फिर खेती मोहकमा चो लोग मन नगत उवाट मन सांगतो के मैं बेड़ा ने बोर खोड़ा ले।
1: अच्छा।
0: बोर खोड़ा तो के धान संगे संगे सब्जी भाजी चो बले कमानी करूक धरलू।
1: अच्छा।
0: बाढ़ती चो जुगाए बाबूनोनी मन सुन सस काय असनी बाढ़ती होते गेली कि सब पाए लगे मोबाइल होली। मैं आए अपड़ अपड़ के दुई थपड़ असनी लोग मन बलतो मांतराम चो नोनी बल्ली बाबा मैं तुके और आया के मैं पढ़ुक लिखू सिखाए दे। नोनी आम के घरे खिंडिक खिंडिक सांगतो के अखर मन के अंदाजुक सकलू और लोग मन चो दखा दखी मैं बले कोटो मोबाइल घेर ले। और ये मोबाइल मोचो काजे खूबे सहा होली। गोटो किसान बस काने सांगला तेबे हुन नंबर के लिखाउन घरे नीले। हुन नंबर ने नोनी के फोन लगाऊ बल्ले।
1: अच्छा।
0: सुन सास काय मोके गोठिया तो काजे डर लागली। तेबे नोनी लचनी के गोठिया उग बल्ले।
1: अच्छा।
0: उदल दाए नोनी नवमी पढ़ते रही। एके हार सर सरा गोठिया ली किसान कॉल सेंटर ने। हाँ काय
2: बढ़िया बढ़िया
0: सत्य मैं तो अचरी झोन गेले मौके फेर नोनी हुन नंबर ने फोन लगाऊन सिखा ली। फेर काया एब्बे काईच बले चीपा अड़ना भो फसल के काई रोग होली काई कीड़ी दखा दिली काय खत भात के बे कसन करतो राय देतो राय और दूसर बले गोट होलो ने मैं सीधा किसान कॉल सेंटर के फोन करवाए।
3: सत्य आए ने
2: सीख लाने बढ़िया बढ़िया
0: ते बोले ये बे नहीं मौके फोन लगाऊन लगाऊन टकर पड़ ली। अबे काई चे हो चिंता फिकर नहीं आए। फिकर कर तो लोग कृषि मोहकमा बाटले हुता फोन थाने बसला से। आम के सोजे फोन कर तो राय आपलाहन चिपा के सांग तोराए और हुन मन सीधा हुंचो नगत उपाय के सांगुन देसो फिर होली हुन उपाय के करते कर तोराए आम के और उपजन धरते धर तोराए समझला
3: सुनलास पिला मन कितरो सुंदर आपलो कहनी के रे तू सफायच पुरे सांगलो ए कहनी नहीं पिला मन ए सोजे रे तू रमचो कहनी नुहाय ए गुलाय किसान समाज चो कहनी आय एबे जसन रे तू राम आपलो किसानी काम के इतरो नगत हिसाब ले करे से हुनी काजे उसने मैं बोले आप लोग काजे काली के गोटक मोबाइल घेरे दे बोलते रहे
2: अच्छा है, अच्छा है,
4: ये तो खूबे हरिक चोट है काका आले एक हार सब पाए रघु काका काजे तापड़ी पेटून दिया
2: तो पिला मन सुन लास है गोटो किसान च कहनी कसन लाग लिए कहनी
5: ये तो खूबे सुंदर कहनी आमी सुनलु और लक्ष्मी चो बाबा श्री रेतुराम बघेल काका जसन ये कहनी के सांगते रहला सत्य मके बोले सन लागली कि ये कहनी सप्पा किसान मंच कहनी आए
1: सत्य
5: काका आमी नहीं सप्पाए एग्रीकल्चर बोले खेती किसानी ये विषय के धरून पढ़ाई करूं से मचो संगवारी मन के बोले मचो यही बोलते रहो से कि ये बे अगर पढ़ा लिखा नहीं होन बोले ये काका इतरो नगद कमानी कर सोत आमी ये बे नगद पढ़ा लिखा होन भाती कमानी कर लो ने कितरो नगद कमानी कर तू
0: हाले पिला मन तुम्ही सप्पाए लक्ष्मी बेटा चु लागून ए था इलास आम के मान दिलास तुम की जुहार लागो आले सोमारी अदा पीला मन का जे कहीं चाह चाहिए सन हिसाब बले होय दे कि नहीं
5: नहीं नहीं काका कहीं चाह पानी नहीं लागे ये ता बेड़ा था ने इतरो लोग के कहाँ चाह पानी था तुम जो गोट के सुनुन सुनुन काय सुंदर काकड़ी के खादलू से खातो के जीव के अस्थिर लागली से
1: अस्थिर लागली
5: चाह चाह के छाड़ून पहाड़ ले अबर खिंडिक तुम चो बड़ा बड़ बुलाऊं दियास
0: आले तेबे आले जाओ दखाऊं दे दे गोटोक गोट आउ राय बाबू गोटोक भागने हाँ दे दखा होता हाँ दे दखा सा आज का
1: है
0: होता ना इमाए बासना धान लोकटी माची के लगा ले से आउर एवे हुंचे ही कमानी के धर ले से जेबे फेर सपाय बाटे जेवी हिसाब ने कमानी बोलतो के हुनी हिसाब ने कमानी बोले करे से आले जाओ हुनी बाटे जाओ दखाए जाए जाओ जाओ या सबु जन या है
3: आले ना रह तू तू ही पीला मन के बेड़ा के दखाओ और मैं जाए से बे काल के शहरे जावा काय मचो काजे मोबाइल घेनुक मंतर ना गोटो गोट मोके समझुक नी होली
0: काय गोठ है
3: ये ना किसान काल सेंटर नाव है काल बल ले काली किसान काल सेंटर नाव नी संगाउन किसान आज ही सेंटर संगालन काय होती था किसान चोचीपा के हुन आज ही निपटाए से काल के तो नी निपटाए किसान काल सेंटर नाव कसन संगाला
0: अरे नोनी ये जो जवाब के सांग
4: यदि काका आजी काली बल तो बीती काल नुहाय ये हुन काल आय अंग्रेजी ने काल करतोर गोठियातोर के काल करतोर बलुआत तेबे तो एचो नाव किसान काल सेंटर होली से
0: समझ लीस भगो माने किसान काल सेंटर के किसान आजी सेंटर बनाऊ बीता ए भगवान

0: टीरू
1: हाँ
0: दके किसान कॉल सेंटर सुन लिस नहीं तू बोले
1: ओके,
0: आजी तो
1: सुन
0: नहीं
1: ले
0: बोलिस के आजी कॉल सेंटर तो नहीं बोलिस के किसान कॉल सेंटर अलग है ने
1: ओके
0: दक्का सुंदर ना बोल पड़ ली से
1: आओ
0: ने
1: हाँ
0: अरे ए, नाटक चुकाए ना वहीं
1: ये नाटक चो नाम है किसान चो गोट
0: गोट
1: और ये किसान अलबी नाटक ने भाग धरुन लोग मना श्री शशांक कुमार ठाकुर
0: श्री पीताम्बर दास वैष्णव
1: श्री संदीप सेटिया
0: श्रीमती लक्ष्मी मंडल
1: श्रीमती पूर्णिमा सरोज
0: इधर लोग इतना भाग धरन रहो तारे के लिखन रहो
1: एक लिखुन रहो तो सुश्री सुषमा कश्यप
0: अरे के हम चलो गम रहो रहो
1: बलवीर सिंह कच्छ
0: दक इधर लोग इतना काम करन रहो ने
1: आओ
0: अरे नाटक के बन भाती हम के सुना ला
1: आओ
0: बोलन दक कितरो थाने हम चो ज्ञान ध्यान चो गोट रहे
1: ओके
0: बोलन हम चो खेती बाड़ी चो गोट
1: आओ
0: कस हम चो तो पुरख दिदाले खेती बाड़ी है कि नहीं अरे
1: ओके
0: थाने हम चो जीवन हासे
1: आओ तो ये
0: एक
1: अलबी
0: आज
1: नाटक
0: कई छो गोट के हम के ध्यान ले सुनतो रहे
1: ओके तो ये अलबी नाटक के तो सुन लू ने असनी ची हम चल के दखले समय बले आसे तो मैं
0: बोलन
1: बल
0: तू के हरिक लागली और तू के खिन गीत गोविंद होतो रहे ने
1: हाँ तो
0: बोलन तू किस नहीं सब का सब एक लागू है दादी मतलब बोले और हम के बोले
1: हाँ तो ये गीत के सुनो पाचे गीत कुरिया मंच नाव के संगवा
0: आले आले।

0: तो पुलो ये गीत के
1: अच्छा
0: तो
1: गीत रहे ने
0: ये गीत के तो अमरालू
1: अरे गीत के कौन गाउन रोत
0: धन सिंह गारू उन मंचो संगवारी
1: गीत संग संगे हम जातो समय बोले होय से ने
0: होय से का तो आले मैं मोड्रा गड्रा सक लें दे या तू भी दादा
1: आले देवे आमचो गाँव कार्यक्रम सुन तो सपाय दादा दीदी सियान सजन मन के मैं फूलो
0: और मैं टीरू हमें दोनों करूं से जुआर।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव। आकाशवाणी का ये चक्तरपुर केंद्र है। रात के 8 बजे है। पेश है कार्यक्रम नानोली। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए लक्ष्मण और साथियों के गाए गोंडी गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मण और साथियों की प्रस्तुति में गोंडी गीत। कार्यक्रम आप सुन रहे थे नानोली। आकाशवाणी का ये चक्तलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम पिलामन काजे गोट। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मिनेश पानीग्राही की प्रस्तुति में पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी जानकारी हल्बी बोली में।

पिलामन का जे गोठ कार्यक्रम ने सफाई पिलामन के खूबे खूबे मया आरु लाड़ पिलामन दखा ये कार्यक्रम ने तुमचो का जे खूबे नगत नगत कार्यक्रम मन के अंतर उवाट कर लू से असन तो सफाई पिलामन स्कूल ने जाऊन कई एक बरंचो ज्ञान ध्यान चो गोठ के शिक्षास असने पिलामन चो गोठ कार्यक्रम ने तुमचो का जे रोजे दिना ज्ञान चो बाढ़ती काजे तीज तिहार संस्कृति शिक्षाविद महापुरुष कवि लेखक क्रांतिकारी असने मंचो गोट के धरून एवं से पिलामन आमचो देश भारत देश आए और आमचो देश कृषि प्रधान देश है। आजादी चो पहिल आमचो देश के मुगल मन गुलाम बनाला फिर अंग्रेज मन गुलाम बनाला ये मन संगे लड़तो काजे आमचो देश ने बड़े बड़े क्रांतिकारी होला और देश चो आजादी काजे लड़ला हुसने गोटक माने आमचो देश चो स्वतंत्रता संग्राम काजे लड़ाई करला ये मनात पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 ने जेबे भारत के आजादी मिरली माने भारत के स्वतंत्रता मिरली तेबे पंडित जवाहरलाल नेहरू आमचो भारत देश चो पहिल प्रधानमंत्री बनला। पंडित जवाहरलाल नेहरू चो जन्म 14 नवंबर 1889 ने कश्मीरी पंडित परिवार ने इलाहाबाद नावचो शहर ने होली जेके आमी प्रयागराज बले बलो से। पंडित जवाहरलाल नेहरू पिलामन संगे मया खूबे रहे एक आजे पंडित जवाहरलाल नेहरू चो जन्मदिन के आमचो भारत देश ने बाल दिवस रूप ने बनाऊ से एमन पिलामन के गुलाब चो फूल मानोत एक आजे पिलामन एमन के चाचा नेहरू वाले बलवत और एमन चो पिलामन संगे मया होतो के चाचा नेहरू नाव ले वाले जानतोर होय से। एमन चो बाबा चो नाव बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू और आया चो नाव स्वरूप रानी रहे। एमन चो पहिल मूर पढ़ाई घर ले होली और हाई स्कूल चो पढ़ाई काजे इंग्लैंड गेला होता जाऊन कैम्ब्रिज चो ट्रिनिटी विश्वविद्यालय ले स्नातक चो पढ़ाई करला और लंदन चो इनर टेम्पल ने बैरिस्टर बनला। हेरो और कैम्ब्रिज ने पढ़ाई करतो के एमन के 1912 ने बार एट ला चो उपाधि भले मेर ली। भारतीय स्वतंत्रता चो लड़ाई ने महात्मा गांधी चो दखलो बाट ने हिंडला और सत्य और अहिंसा चो बाट ने रेंगुन भारत चो स्वतंत्रता संग्राम ने भाग धरला। ये मन चो और बोले नगट गोठमन के मैं आने दे तो सुनो गोटो गीत के।

फिलामन 1920 ने प्रतापगढ़ चो पहल किसान मोर्चा के संगठित करला, बल्लो ने संगठन बनाला। 1928 ने लखनऊ ने साइमन कमीशन चो विरोध ने घायल होला और 1930 ने नमक आंदोलन ने यमन के गिरफ्तार करला। 1935 ने अल्मोड़ा जेल ने रोन भाती यमन गोटोक आत्मकथा लिखला। यमन स्वतंत्रता संग्राम ने नवहार जेल गेला। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व चो कई देश ने बले बोलला, तेवे यमन चो पहचान अंतर्राष्ट्रीय नायक रूप ने बले होली। भारत चो स्वतंत्रता संग्राम चो लड़ाई ने कई खार जेल गेला और जेल ने रोन भारत की खोज नाव चो पुस्तक बले लिखला। स्वतंत्र भारत चो पहल प्रधानमंत्री चो रूप ने यमन चो उद्घाटन भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आजी बले लोग मन के भाई से। यमन चो लाफी चो सोच वाट ने भारत ने कई शैक्षणिक तकनीकी और चिकित्सा संस्थान मंचो स्थापना होली। 1942 ने भारत छोड़ो आंदोलन करते करते यमन के गिरफ्तार करला और 1945 ने छाड़ला। चाचा नेहरू आपलो जीवना ने पंचशील चो सिद्धांत ने जीवला और 1954 ने यमन के भारत रत्न सम्मान बले मेर ले। 15 अगस्त 1947 के भारत देश के जेबे आज़ादी मिर ली। प्रधानमंत्री पद काजे बोट होली। बोट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी के खूबे बोट मिर ली। मांतर महात्मा गांधी चो बलतोर के दोनों माने बल्लों ने सरदार भाई पटेल और आचार्य कृपलानी नाव वापस धरला और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत चो पहल प्रधानमंत्री बनला और चार हार देश चो प्रधानमंत्री रला। 27 मई 1964 के यमन चो मरनी होली, तेवे तक यमन पद ने रला। पंडित जवाहरलाल नेहरू चो जीवना ने लोकतांत्रिक परंपरा के मजबूत करतोर, आम चो राष्ट्र और संविधान चो धर्मनिरपेक्ष चरित्र के बनाउन संगातोर, अलग अलग योजना ले भारत चो आर्थिक व्यवस्था के मजबूत करतोर यमन चो मूल उद्देश्य रली। संगे संगे शिक्षा और उद्योग के बढ़ावा देतोर बले यमन चो मूल उद्देश्य रली। पिलामन असने कई एक महापुरुष मन रला जोन आमचो देश चो आजादी काजे कितरो मुश्किल ने लड़ाई करला और आजी आमचो देश स्वतंत्र होली। आजी आमी सफाय लोग हरी कुदिम ने रहूं से, काय रसिया जीवना के जीवू से, कमाऊ नगत खाऊं से। असने पिलामन तुमके बले नगत नगत पढ़ाई करतो रहे, ये महापुरुष मंचो सत्य और अहिंसा चो बाटने आम के हिणतो रहे, अड़रा काम के नी करतो रहे, हिंसा चो बाटने नी रेंगतो रहे, नगत माने बनून देश चो बाढ़ती काजे काम करतो रहे। आजी मैं इतरी गोट के सांगुन विदा धरे से, जातो पूरे जमाए पिलामन के मचो बाटले खूबे खूबे मया और लाड़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पिला मन काजे गोट, जिसमें आपने सुना पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी जानकारी हल्बी बोली में। प्रस्तुति थी मिनेश पानीग्राही की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह

0: होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने को है। हिंदी व अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
2: I'm confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता

कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
3: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान

0: ખુબે ખુબે સેવા જોહાર જીવના ચુસુર ભલેને જીવ તો કાજે બાટ એ કાર્યક્રમને આમી કઈ કસન સમૂહમન આપલો આર્થિક ઉન્નતિ બાળતી કરુણ બાતી ભલેને દુઈ પૈસા કમાતો હુનમન કે બાટ મેરે સે આરુ હુનમનચો જીવના ને ઉન્નતિ બાળતી હોય છે. આમી અસની સુનાતે જાઉં છે કઈક મહિલા સ્વસહાયતા સમૂહમન સંગે ગોટ બાત કરુણ બાતી આરુ જાણું છે કે હુનમન કસન ભલેને સમૂહ ચો ગઠન કરુણ બાતી બલેને અલગ અલગ કિસમ મંચો જોન ધંધા કરશો. અસની આજી મેં અસન મહિલા સ્વસહાયતા સમૂહ ગોટ બાત કરે છે. એ મંચો મહિલા સ્વસહાયતા સમૂહ ચો નામ હે મિલેટ્સ મહિલા સ્વસહાયતા સમૂહ. દખા આપણ મન કે જાણન બાત અચરી લાગે દે હોતી કે મિલેટ્સ બલેને ગોટો કામચો લઘુધાન્ય ફસલ જોન કમ સમય ને હોતો બીતી ફસલ મંચો ગોટોક બલેને કહે કે સમૂહ હોય છે જે કે મેં સાંગુ દે છે જસન કે કોદા હે કોસરા હે ઘટકા હે મંડિયા હે ચિકમા હે જોંદરા હે જોંદરિયા હે એ સબકે મિલાન બાતી ગોટોક મિલેટ્સ બોલતર હોય છે. આરુ યહી જોન ફસલ મંચો જોન જીનીસ બનાતો એ જોન મહિલા સ્વસહાયતા સમૂહ હે કે બલેને એ સપાય ફસલ છો બલેને એમન બોબો બલે બનાયસોત લડ્ડુ બલે બનાયસોત ઇટલી બલે બનાયસોત ઢોસા બલે બનાયસોત ભાત બલે રાંધેસોત આર કઈ કિસમ છો મીઠાઈ બલે બનાયસોત બલેને ખાતો વીતી ખાજા ચરબન જે કે આમી નાસ્તા બલે કરતો કાજે કઈક ચીજ આમી હોટલને જે લઈને મેરે છે તો અસની એમન એ જીનીસ મંચો બનાન બાતી બલેને બિક્રી બાંજરી કરુન બલેને આર્થિક ઉન્નતિ કરશોત. આરુ એ છો કાજે એમન કે બલેને સમૂહ છો ગઠન કરવા લાઈ પડલી. આરુ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર બલેને ઇન્દિરા ગાંધી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દંતેવાડા ગીદમને જવાન બાતી હોતા વૈજ્ઞાનિક મન સંગે ભેટઘાટ કરુન બાતી બલેને હુનમન કે પૂછલા ફેર હુનમન કે હુન કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર બાટલે ટ્રેનિંગ મેળલી કે એ જોન મિલેટ બીતી જોન અનાજ આય બોલુવે એ જોન ઘટકા કોદા કોસરા મંડિયા ચીકમા જોંદરા જોંદરી છો બલેને કાય કાય આમ કે જીનીસ બનાક લાય હોય દે આર કસન બનાત રહે એ છો ટ્રેનિંગ ફેર કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર બાટલે રાયપુર ને ઉન બાતી ઉન મનકે શીખાલા. આરુ એબે ભલેને કેટલો અચ્છા કેટલો નંગત સુંદર એ દંતેવાડા ઠાનને એ મંચો હોટલ આશે. આરુ એ હોટલ ભલે દિનભર ખુલ્લા રહેશે એતા ભલેને નાસ્તા બીતી છો આપ નાસ્તા મેરે દે. આરુ કંઈ ભાત આય બલેને ઉમકે કોસરા કોદા મંડિયા એ સબ છો ભાત બલે મેરે છે તો દખા અસનાય કે આમચે આમચો જોન બલેને આગેલે પુરકા પાટી જોન બેરાલે કમાતી એવું છે હોની ફસલ છો એવે દખા તકનિકી યુગ આય હું હિસાબને કહે કે કંઈક જીનીસમન સ્વાદિષ્ટ જીનીસમન બનાન બાતી ભીખસોત. આરુ દખા હુનીને એ મંચો રોજગાર જોનાય હોય છે તો એ સબ ગોટ બાત મેં કર લેશે હુતાચો જોન સંચાલિકા હે ભલે હું સમૂહ છું જોન અધ્યક્ષ છે એચો સંગે તો આલી સુનું આરુ જાનું
1: રેડિયો સુન તો ભાઈ બહેન મેં અંબલને છે દંતેવાડા. આરુ એતાને બલેને ગોટુક હોટલ લસન આશે આરુ પૂરી લીકલો રાશે ઇન્દિરા ગાંધી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ગીદમ દંતેવાડા મેં એતા છું જોન સંચાલિકા હે ઉનસંગ ગોટ બાત કરે છે. સબસે પહેલે આપકા નામ બતાવું.
2: રંજના સિંહ.
1: રંજના સિંહ દેખિયે મેં યહાં પે અંદર આપકે યહાં આયા હું ઓર મતલબ ખાને વાલે ભી બહુત સારે લોગ હૈ ઓર કઈ પ્રકાર કે ખાને કી જો વસ્તુએ દિખ રહી હૈ તો સબસે પહેલે તો એ બતાઈએ કે યે જો મતલબ આપ લોગો ને ખોલા હૈ ઇસકી શરૂઆત કૈસે હુઈ ઇસમેં આપ લોગ કિતને લોગ હૈ ક્યા કરના પડા ઇસકે લિયે.
2: સર સબસે પહેલે તો કે યે હમ લોગ એક સમૂહ બનાયે 10 લોગો કા ઉસમેં મેં અધ્યક્ષ હું. ઉસકે બાદ યે મિલેટ કેફે કૃષિ વિદ્યાલય કેન્દ્ર કીદમ જો ઉનસે સંપર્ક કે તો યે મિલેટ કેફે ખોલને કા મતલબ પૂરા જો મિલેટ 9 પ્રકાર કે મિલેટ હૈ વો સબ ચીજે મતલબ ખિલાના હૈ લોગો કો બના કે યે સબ ચીજે. અચ્છા
1: જૈસે આપને બતાયા 9 પ્રકાર કે મિલેટ્સ ઉસમેં ક્યા ક્યા ચીજે
2: કોદો કુટકી રાગી ચીની સાવા कमलू, कंगनी और जटका।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो ये सबसे पहले थे बताइए कि ये जो आप लोग का समूह का गठन आप लोगों ने कैसा किया, मतलब इसको प्रेरणा कैसे मिली?
2: तो इससे सबसे पहले तो हम नगर पालिका गए, तो वहाँ पे मतलब इसके बारे में जानकारी लिए कि समूह कैसे बनाते हैं। फिर हम 10 महिलाएं जुड़े, मतलब ढूंढना पड़ा अलग अलग जगह से कि कौन काम करना चाहता है, नहीं करना चाहता, तो सबको ढूंढ के इकट्ठा करके बात करके इसकी शुरुआत किए।
1: तो मतलब समूह का कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराना पड़ता है?
2: जी जी बिल्कुल कराना पड़ता है सर। समूह का पूरा आपका आधार से पैन कार्ड या फिर आपका पासबुक वगैरह सब जमा करना पड़ता है सभी लेडीजों को। फिर उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आप उसका एक अपने को मिलता है प्रमाण पत्र।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो उसमें कोई समूह का नाम भी रखना होता होगा?
2: जी,
1: आपका समूह का क्या?
2: जी, मिलेट महिला स्व सहायता समूह।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो इसमें इस समूह में कितने महिलाएं भी हैं कि पुरुष भी हैं?
2: नहीं नहीं, सिर्फ महिलाएं हैं।
1: अच्छा, कितने?
2: 10 लोग हैं।
1: तो देखिए, जैसे आपने बहुत विस्तार मतलब यहाँ पे रूप में है, मतलब इसकी जो पूंजी वगैरह की व्यवस्था आप लोगों ने कैसा?
2: ये तो सब हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा मतलब जमा किया था, थोड़ा थोड़ा मतलब एक नहीं बोलते बोलते 10 रुपए 100 रुपए इस हिसाब से जमा करके जमा किए, लेकिन उतना हो नहीं पाया। बाकी पूरा कृषि विद्यालय केंद्र के ओर से पूरा सुविधा मिला हमें।
1: अच्छा
2: जी,
1: मतलब पूरा आर्थिक जो सहायता है कृषि विज्ञान की?
2: पूरा पूरा।
1: देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मतलब बहुत सारे खाने की जो वस्तुएं चीजें हैं, इसके लिए तो आप लोगों को प्रशिक्षण वगैरह की आवश्यकता पड़ी होगी?
2: जी जी बिल्कुल,
1: बताइए उसके बारे में।
2: तो प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी तो थी, फिर हम लोग को कुछ आता नहीं था जब स्टार्टिंग हम लोग किए थे, तो ये जितने भी मिलेट का जो था, कोदो कुटकी, इसका हम लोग खीर, रोटी और उपमा, ये सब चीज बना के अपने से दे रहे थे। फिर उन आगे से मतलब प्रशिक्षण के लिए आया, फिर हम लोग रायपुर गए थे। जी,
1: वहाँ कितने दिन का प्रशिक्षण?
2: 1 हफ्ते का 7 दिन।
1: तो वहाँ पर मतलब क्या चीज आपको सिखाया?
2: सभी मतलब जितने भी मिलेट्स हैं सबके बनाने के, जैसे पिज्जा हो गया आपका, चाउमीन, पास्ता, रोटी, पराठा, डोसा, सभी चीजें, सूप हो गए, बहुत सारी प्रकारें सिखाई गई।
1: अच्छा।
2: मतलब हम अब मिलेट्स के सभी चीजें मिलके हम लोग को पूरा सब चीज, जो हम लोग रेगुलरली जो चीज खाते हैं वही चीज जो खाते हैं, जैसे हो गया रोटी सब्जी जो भी है, उसमें सब मिलेट ऐड करके मतलब सिखाया गया। जी,
1: तो मतलब इसका तो जैसे आप लोग 10 समूह है उसमें, मतलब इसमें बहुत सारी चीज है उसके प्रबंधन के लिए, क्या आप लोगों का 10 लोगों में किस तरह से कार्य विभाजन है?
2: कार्य मतलब 10 लोगों में ये है कि 5 लोग कार्य तो मतलब देखते हैं पूरे के, मतलब बैठने का, बाकी पूरा तो मैं ही देखती हूँ, बाकी सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। बाकी सप्ते में एक बार मीटिंग होता है, तो उसमें क्या है इनकम, बाकी कौन वर्कर आ रहा नहीं है, इसका मतलब बातचीत करते हैं पूरे 10 लोग, फिर उसके बाद वो जो निर्णय लेते हैं सब मिलके एक साथ ही लेते हैं।
1: अच्छा।
2: जी, मतलब अकेला इंसान इसमें ले ही नहीं सकता निर्णय, 10 लोग मिलके ही निर्णय लेते हैं। जी,
1: जैसे कि बहुत सारे जो वस्तुएं बनाने के लिए, उसके लिए बहुत सारे चीजें जो मतलब या ढांचा बोले या कुछ बर्तन बोले, तो ये सब चीज की व्यवस्था आप लोगों ने कैसे की?
2: ये हमें पूरे कृषि विद्यालय केंद्र।
1: अच्छा
2: जी, वहीं से मतलब जितने भी हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, जितना हम पूरा पूरा स्ट्रक्चर से लेकर पूरा जो मिला है हमको पूरा वहीं का। अच्छा। उन्हीं के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है।
1: अच्छा
2: जी, कृषि।
1: अच्छा, ये सामान मतलब आपको खरीदने के लिए पैसा मिला या उन लोग खुद?
2: नहीं, पूरा खरीद के दिया गया।
1: अच्छा
2: जी, हमको जो जो जरूरत था हमने उसकी सभी लिस्ट बना के दी, तो वो उस हिसाब से पूरा सामान आ गया।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो मतलब प्रतिदिन कब खुलता है, कितने बजे बंद होता है, क्या क्या बनता है, कौन सी चीजों की मांग जो खाने वाले ज्यादा करते हैं?
2: सबसे ज्यादा पराठा खाते हैं सर, खीर खाते हैं, हलवा खाते हैं, रागी का पराठा हो जाता है, कुटकी का खीर है, और मिलेट थाली भी निकलता ही है जिसमें कोदो का राइस रहता है, रागी का रोटी और रागी का हलवा, मतलब इसमें आपका मिलेट का कोल्ड कॉफी आ जाता है, शेक आ जाता है, मतलब सभी चीजें डिमांड पे है।
1: अच्छा
2: जी, और सबसे ज्यादा पराठा और थाली।
1: अच्छा
2: जी।
1: अच्छा, नाम क्या बोले?
2: रंजना सिंह।
1: अच्छा रंजना सिंह, ये बताइए कि इन जो वस्तुओं का जो है तो रेट के बारे में भी बताइए, कैसा है रेट, क्या क्या रेट है, कौन सी चीज का?
2: पराठा में हम लोग 2 पीस देते हैं, रागी पराठा आलू का 90 और पनीर का 100 रुपए 2 पीस। हाँ, अगर उसमें किसी को खाना है सिंगल पीस तो इनफ है, मतलब एक आदमी के लिए सिंगल पराठा खा सकता है, बट हम लोग दो पराठा देते हैं। अब जिसकी डिमांड के हिसाब से कोई एक खाना चाहता है, दो खाना चाहता है तो वो देते हैं। आपका मिलेट थाली है 150 रुपया, जिसमें दो सब्जियां रहेगी, खीर रहेगा, सलाद रहेगा, अचार रहता है, दाल रहता है जी, और चावल और दो रोटी जी।
1: और नाश्ते में?
2: नाश्ते में पोहा है, डोसा है, उपमा, पकौड़ा, सभी।
1: रेट के बारे में बताइए, कितना कितना रेट मिलता है?
2: पोहा 40 का है और पराठा तो मैंने 90 और 80 का है अलग अलग, और डोसा 70 का है, मसाला डोसा, उपमा 40 जी।
1: मतलब ये सभी नाश्ते की चीजें बनती
2: है जी।
1: अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जैसे प्रतिदिन, एक तो अंदाजा मतलब होगा कि कितना आप लोग मतलब बेचते हैं, पैसा कितना होता है?
2: जी 9-10 तक हो जाता है।
1: अच्छा, 9-10 तक
2: जी।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो इसका हिसाब किताब आप लोग सप्ताह में करते हैं?
2: डेली का तो हिसाब किताब हम लोग करते हैं कि कितना डेली का इनकम है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, वो कभी मौसम या कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, तो डेली का वो होता है। बाकी जो ये जितना टोटल एक हफ्ते का पेमेंट है, वो समूह की महिलाएं मिलके सब उसका वो करते हैं, मतलब हिसाब किताब देखते हैं सभी महिलाएं। अच्छा, एक दिन पूरा इकट्ठा होके सब देखते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं यहाँ पे रहती हूँ तो डेली का मैं हिसाब लिखती हूँ। अच्छा, और उनको मैं जिस दिन मीटिंग होता है वो उस दिन उनके सामने रखती हूँ जी।
1: अच्छा, जैसे खर्चा वगैरह निकाल करके, मतलब आप लोग जैसे 10 महिलाएं हैं तो पैसा का मतलब कुछ तो वितरण करते होंगे
2: जी? जी,
1: कैसे करते हैं
2: वो खर्चा? जैसे बिजली बिल हो गया, यहाँ का स्टैप पेमेंट, और जो सामान खरीदते हैं वो सब चीजें वो करके, मतलब सबको डिवाइड करके जो चीज जो पैसा बचता है वो सभी 10 समूह की महिलाएं डिवाइड करती हैं।
1: अच्छा जी, तो अंदाजा मान लो महीने में कितना प्रत्येक महिलाओं को कितना मिलता होगा?
2: जी 7-8।
1: 7-8
2: जी।
1: अच्छा, अच्छा रंजना सिंह, ये बताओ आप मतलब कितने पढ़े लिखे कितने?
2: मैं ग्रेजुएशन।
1: ग्रेजुएशन
2: जी।
1: अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट लेकर?
2: साइंस लेते हैं।
1: साइंस
2: जी।
1: अच्छा, तो जैसे आपको मतलब यहाँ रुचि मतलब कैसे हुई कि हम लोग को स्वयं सहायता समूह बनाना चाहिए, ये करना चाहिए काम?
2: जी, पहले मैं खुद काम करती थी, मतलब खुद का कैफे था, उसमें काम कर रही थी, वो मेरा छोटा सा काम था। फिर कि कुछ बड़ा काम करे करके फिर महिलाओं के साथ मिल के तो मिलेट के मतलब समूह का बना के फिर ये काम स्टार्ट के।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो ये जैसे 10 सदस्य महिलाएं हैं, सभी पढ़े लिखे हैं?
2: जी।
1: अच्छा
2: जी, मतलब 5वीं 8वीं हाँ तो यहाँ तक पढ़े हैं, 10वीं तक जी,
1: मतलब थोड़ा बहुत सभी पढ़े लिखे
2: जी, सब पढ़े लिखे।
1: अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों में जैसे अगर आर्थिक रूप में या फिर महिलाओं के व्यवहार में या फिर उनके बोलचाल में पहले की अपेक्षा, जैसे आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ अलग महसूस हो रहा है, दिख रहा है?
2: जी, सब अपना अपना मतलब राय रखते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए और इस तरह से काम करना चाहिए या फिर ये काम ऐसे हो रहा है, तो ये सब चीज़ें के बारे में होता है ज़्यादातर। मतलब हम लोग सब ये सब चीज़ सोच के ही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है आगे जी। बाकी जैसे कम पढ़े हैं तो वैसा कुछ नहीं है, वो मतलब समझते हैं कि अभी के समय को सब चीज को देख के समझते हैं कि हाँ, अगर 5 लोग मिलकर अगर कुछ चीज वो डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ ये सही है, तो वो बोलते हैं चलो इसी के में जाते हैं कि सही है, मतलब ऐसा कोई मतभेद मतलब होती नहीं है कि ऐसे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलके ही काम करते जी।
1: अच्छा रंजना, मैं आज आपके मतलब यहाँ पे मैं खाना भी खाया, बहुत ही स्वादिष्ट रहा, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन बैठने के लिए कुछ जगह की भी कमी हो रही है।
2: हाँ, जी जी जी,
1: तो इसके लिए भविष्य में मतलब क्या सोचे हैं कुछ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से विस्तार के लिए?
2: जी जी, इसके लिए सोचे हैं सर, मतलब पूरा मतलब किया गया है कि कहाँ पे क्या रखना है, टेबल उबल का और व्यवस्था करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि शायद इसका कार्य होने वाला है।
1: अच्छा,
2: मेंटेनेंस का, और उसके बाद ही इसका करेंगे।
1: अच्छा
2: जी जी,
1: मतलब एक बड़ा रूप में देखने को मिला है।
2: जी जी, बहुत ही मतलब कुछ दिनों में थोड़ा और विस्तार बड़ा हो जाएगा, बैठने के लिए भी व्यवस्था और हो जाएगा।
1: अच्छा
2: जी जी,
1: तो अब आपको कैसा लग रहा है, आप संतुष्ट हैं इस काम से?
2: जी बिल्कुल बहुत संतुष्ट हूँ।
1: अच्छा
2: जी, क्योंकि मतलब काम करने में बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि मतलब काम ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें काम में घुसे हो तो बिजी हो जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ टाइम बैठे हो कुछ टाइम मतलब बोर लग रहा है, ऐसा वाला नहीं है। मतलब हम लोग को बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता है।
1: अच्छा।
2: मतलब इतना बिजी रहते हैं।
1: अच्छा।
2: काम अब कंटिन्यू करते रहो तो सही लगता है। अगर कुछ काम मतलब एक दो घंटे के लिए अगर कोई कस्टमर नहीं आ रहे बैठे हैं तो फिर वो आलस वाला फील आता है, ऐसा नहीं है। हम लोग मतलब अगर 10-11 भी बज जाता है कस्टमर आते हैं तो हम उनको मना नहीं करते कि बैठिए, भले सुबह हम लोग थोड़ा सा लेट खोल देते हैं बट लेकिन हम उनको खिलाते हैं।
1: अच्छा।
2: जी जितने खासकर आते हैं ऑफिसर्स हैं और बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो जैसे बस्तर अनएक्सप्लोरर वाले जितने भी आते हैं वो यहीं पे खाने आते हैं।
1: अच्छा।
2: जी
1: अच्छा।
2: वो पहले से ऑर्डर हो जाता है और यहीं पे आके खा के जाते हैं।
1: अच्छा
2: जी,
1: जैसे यहाँ पे क्या है कि जिला मुख्यालय है और बहुत सारे ऑफिस हैं, कई कार्यक्रम होते रहते हैं, कोई ऐसा मतलब थोड़ा ज्यादा रूप में कोई सप्लाई वगैरह का ऑर्डर आता
2: है? जी जी जी, कलेक्टर ऑफिस से आता है ऑर्डर, जैसे कुछ टीएल मीटिंग होता है कुछ होता है जो भी आता है तो यहाँ मिलेट का जितना भी जो चीजें खाने की वो ऑर्डर आती है।
1: अच्छा।
2: जी कलेक्टर सर के माध्यम से वहाँ ऑफिस में सभी विभाग से आती है।
1: अच्छा
2: जी जी।
1: अच्छा रंजना, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई कैसे मतलब लड़के लड़कियाँ आप जैसे स्नातक कर चुकी हैं, ऐसे भी और कई गांव में भी हैं शहर में भी हैं, लेकिन वो केवल सरकारी की नौकरी के इंतजार में, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप?
2: मैं तो बोलना चाहूँगी सर कि किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए, आप अपना टाइम आपका जो अभी है टाइम उसका टाइम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर नौकरी भी करना चाहते हैं तो ये नहीं कि आप नौकरी का इंतज़ार करें, उससे अगर आप खाली हैं ना कुछ काम करें, ऐसा नहीं है कि आप चलो होटल में काम कर रहे हैं तो शर्म वाली बात है। ऐसा होता है यहाँ पे कि होटल में काम करने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं लोग कि नहीं करेंगे हम, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम तो काम होता है, अगर आप मतलब गवर्नमेंट में कहीं काम कर रहे हैं आप तब भी एम्प्लॉय कहलाओगे, यहाँ पे भी कर रहे हो तो वही कहलाएंगे। तो इसमें झिझक होने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी हैं मतलब लड़के और लड़के पढ़े लिखे हैं, मैं तो चाहती हूँ बिजनेस करें, बिजनेस में बहुत ही अच्छा उनके लिए फ्यूचर में फायदा होगा।
1: तो रंजना सिंह, आपने इतनी अच्छी मतलब एक महिला समूह का गठन करके इतनी अच्छी मतलब एक विस्तार रूप में जो काम चला रही हैं, और एक तो सबसे विशेषता की बात यह है कि आप ग्रेजुएट हैं, ये सबसे बड़ी खूबी है। तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसी तरह आपका जो काम है विस्तार से अच्छा हो और आर्थिक रूप से आप सभी महिलाएं मजबूत हों। इतनी सारी आपने जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: हाँ तो देखा कितलो नगद गोट के आम के जानुक लाई मेरे लिए कि ये मिलेट्स महिला स्व सहायता समूह दंतेवाड़ा एमन होटल खरुन बाती पूरा नाश्ता संगे संगे का है कि बोले ने जोन बोले खातो बीती जिनिस आए खाना है ये सप्पा एमन के मेरे से। और देखा गोट गोटिया तो जानू खुली कि ए मंचो होटल ने नाश्ता और खाना काज का है कि दंतेवाड़ा शहर ने जितलो बोले ऑफिस में नासे हुन ऑफिस मंचो हुन मन के आर्डर वाले बना तो काजे मेरे से ये महिला स्व सहायता समूह के और उन मंचो आमदनी अच्छा वैसे देखा आमी सुन लू जान लू असन है कि कई कसन पढ़े लिखे महिला नहाले पुरुष मन आसोत तो असन बोले ने कहा कि धंधा पानी को रुक लाए सकोत आम के कहाँ बाहरी जाऊक लाए नहीं पड़े आमचो गाँव ने ची रोहन बाती ये सपाए काम करूक लाए सकूँ। तो सपाए सुन तो लोग के खूबे खूबे सेवा जोहार।

0: কটোই বাকি এটা নে আমার রোগ রাইত আমার দেহ নে উপজবার হইলা, আহরি আমি ফের সর বাটি ডগরাইবার জিবার আইলা হইলা। তো আয় গোটা তানে জোন পবিত্র রয়ে আমার তাকে আমকে পারককে পড়ছি, পারককে পড়ছি, জীবনাকে দককে পড়ছি, আর জীবনাকে দকি করি পারকি করি কোন লাগে আমার আয় তার সই গোটা আছে তাকে সাংকে পড়ছি, তেবে আমি আয় গোটা গোটকে বাঁচাই করি রাখকে সকু, আউরি আই ওসব পত্র কেবল জানকে সকু
1: জানকে সকু
0: আসন গোটায়।
1: হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ আর মন বগিল ভাই জসন কি আমার গোটক রীতি নীতি বলে আসে নাতা পন্তা বলে আসে গাঁও নে আমি দেখবু আছে কই জাতি বিরাদির লোক মন রবা আসত কই আমার বস যেকে আমি গোত্র বলবু আছে আর সব সঙ্গে কই না কই নাতা রেসি আছে
0: রসি আছে
1: হাই কি না এ চলে গোটক আমচো আমার জন সমাজ ই আয় বলে নে কায় গোট শিখবা আসন।
0: হ্যাঁ এ গোটা গোট আস নাই আমার দেয়াতি জীবনা নে আমি গোটক 100 বরস 200 বরস নে বল দেখবু তো আমার মঞ্জি গুতারে কোনি বৈজ্ঞানিক না দেখা দেলে,
1: হ্যাঁ
0: কোনি শিকা পড়া লোক না দেখা
1: না
0: দেলে,
1: দেখা
0: আতার কারণ আছে মান্তার আয় না রালা উতারে বলে আমার যে লোক নাতা আয় আমি বিয়া করবু আজ তো তো কোন বংশ কে দেখবার আয় কোন গোত্র কে যাই করি প্রচার ভার আয় আর কাকে গুচাই বার আয় এ কি আমি দকি করি মানা মানি চলা চলি হইবু আজ তো কি আমার আদিবাসী সমাজ নে কি দেশিয়া জীবনা নে আমি নাগ বংশী আও কোনি কোনি বাঘ বংশী আও কোনি কচিক বসি আও কোনি কুকড়ি বসি আও তো সবু অলগ অলগ যে বংশর লোক আও এক এক কসন নে কায় বংশ কে ভাই নাতা ওইসি কায় বংশ কে হাসি নাতা ওইসি আকে চিনা বানা কে চিতাই করি বিয়া করবার ওইসি আছে আর আই হিসাব নে এবে রোগ রাইট বল না উপজে আমি দেশিয়া জীবনা দখলু বললে আই গোটাকে আগর আমি বাঁচাই করে রাখলু বললে গোটক সাং বা কাজে তেবে এবে আজিকালির বৈজ্ঞানিক মন আই মন দকত আর আই মন বলবাত নাই কুনকে যাঁচ করু আতার বাদ নে বিয়া টিকা
1: বিয়া টিকা হইব
0: এ এ এ সমিয়া নে আয় মাত্র পয়েল সমিয়া নে কোন লাগে কুন
1: কোন
0: দক চরে আই মন জাতিক প্রচারে নাও কে
1: প্রচারে
0: বংশ কে প্রচারে কোন ঘর রাস আকে প্রচারে আর কোন গাঁও রাস আকে প্রচারে আতার বাদ নে মাং কে যায় আর এটা চলা চলবই না আউরি সব নুকুর লাই আর কই নল পন 100 বরস লাকা লাকা জিয়েত আর কই মিলাওট না রলা
1: না রলা
0: আই গোট কে বলি মানি কর চল কে সলসি তেমি আমার নাতা পন্তি লোক বাক রিশতেদার এবে বলে পয়লার মা এবে বল বাড়সি আর কাকে কই দোষ না লাগে আমার দেশি এই সামনে দোষ বলু আই দোষ লাগলা বললে আকে গুচাই বাকা যে বড়ে বড়ে উয়াট করতে রু অর্ধে পনি আমার কই লিকা পড়ে না রালা আই সিরা গুনিয়া মঞ্চি সাংতে রেত বেটা বেটি জন্মাইবু তো কসন নেতা কে রোগ না লাগে
1: না লাগে
0: হ্যাঁ তোমার দোষ লাগলা আছে আই দোষ কে গুচাই পারে তো এ গোটা বৈজ্ঞানিক আধার নে হইতে রে আর আগে গুচাইতে রে আর আতার বল জীব না হইতে রে আর আই মন পনি গোট 80 বরস লে অধিক জিতে রে মানকে মানি কর চল কে পড়ছি না এ বিজ্ঞান আয় আয় লুকা মে আছে আয় বিজ্ঞান কে এবে আমকে পারক কে পড়ছি আর গাঁরিয়া জীবনা আউরি জন লোক বাকার বিয়া টিকা ওইসি আছে তাকে আমকে নুয়া কায়না আর বললে চিতাই করি আয় গোট কে শুনি করি আর নুয়া নুয়া সবু নাতা পন্থী মনকে চিতাই করি আমকে পারক কে পড়ছি মাতার কোনি কোনি সমাজের লোক করবা কাজ করবা যে মাতার টিকার লাগে এবে শুদ্ধিকরণ নিয়ে আয় কসন বললে কোনি লাগ বললে আজির সময় আনে আমি লিখলা গোটাক দেখা বলবু আছু কোনি লাগ লিখলা রাচে আলে সাঙ্গা বলবু তো একে পারক বাকা যে কাজ আয় আমার চিনা বানাক দেখে পড়ছি আমার গীত গোবিন্দ কে শুনকে পড়ছি আমার সেবা শাসন করবা দেয় কমতা আমি সেবা শাসন মুরাইবু আছু আর সম্পূর্ণ করবু আছু তাকে দেখে পড়ছি আতার বাদ নে লোকের গোট কেবল শুনকে পড়ছি শুনানে বল ফরক যাউ আয় আয় গোটা সব সম্পূর্ণ হইলা বললে আতার বাদ নে বসকে লাগু আয় এনা মুই ইতি জাইরি আয় গুড়ায় গুড়ায় আয় গায়ে আসন আসন বললাই মক সাংলাই আতানে কসন করু বিচার করকে লাগছি তো অসনি এবে কোনি কোনি সমাজ নে ওইসি আছে মাতার তাকে শুদ্ধিকরণ না করলাত লাগে তা গোটক 10 বরস মা লাগছি এবে মুই বলে শুনতে রহু আয় আর মুই বলে পড়তে রহু আয় আর কোন কোন তানলে মুই বলে ডগরাইতে রহু আয় তো কাগজ কোনি কোনি তানে আছে
1: अच्छा
0: हाँ पहिले कागज का रहला कोनी पोकना तान लिखी रहलै
1: हाँ
0: पहिले पोकना तान लिखी रहलै पहिले कोनी गीत गोविंद गायबा लोक रहत आयमन गीत गायते रहत तो तिकर गीत गोविंद के एबे बले आजी आजी कालीर लोग गायबा
1: गायबा
0: तो आके सुन के लागसी और का है कि अर्दयर जोन राजा मन रहलै तिकर कावनी होइला आय कावनिक बल सुन के लागसी कोनी कोनी कावनी सांग बलो काचे आय ने आम के जान के मिलसी आउरी आईटा सबूत होइसी आय सबूत होइला बोलले आतार बात ने फेर आमी समाज के सांगबू की गोटा
1: पक्का है
0: अगर जीवना एबे गोटाइलु बोलले तो कुबे माने आईती दका देसी और भिने भिने दका देसी मातर गोटक ताने सबू समान रलाई सेवा शासन ने समान रलाई बिया ने समान रलाई जन्म दाय समान रलाई मरनी दाय समान रलाई कई नोले कई गोट टीके मिलते रला सेवा शासन ने बोले आमी दगबू कसन आमी शरण पड़ के जीबू अचू सिरा बोले आमर मजीरी आचे सबू समाज ने दगबू अचू जोन देशिया समाज आचे आयती अलग अलग जातिर लोग आचे रबात कोनी आदिवासी आत कोनी गैर आदिवासी आत मातर जार जीवना गांव हिसाब ने रला ये भी भले गांव रा गांवरिया देसिया जीवना आयमन जी वालो काचे तो तीकर मुजीरे जाय करी हम पचारु तो ती आयमन बोले हम ती जीते रहत सब लोग मनु काम समझ करी तीकर भीतरे कोनी कई दोस नारला की कई नानी बड़ी आई बोलते नारला समान होते रहत गोटकी चुआर पानी कायते रहत गोटकी जार दातुन पतर आनते रहत गोटकी बाटे सब ईंटते रहत और कारी कारी गरे कई शुभ काम बिया टीका की कई सेवा शासन करवार होले सब काक देते रहत गोटकी रांदा सब का पिया होते रहत तो आय गोटा के गोट के एबे बोले आम के समझ के पड़सी सरे आयले सरे तो कई अति आम के दखा ना दे
1: ना दे
0: आम सब मनु काम
1: मनु काम
0: एबे गैर आदिवासी ने बोल दका तिकर बोले बंस पीटा पीटी बिया वही बात आदिवासी लोग ने बोल दका बंस के पीटा पीटी वही कर बिया वही बात और देहात गांवरिया ने रबा लोग कोनी बोल जाती लोग आय मन बोल जाती पीटा पीटी बंस के पीटा पीटी वही कर बिया कर बात सबूतानी आम की आजी आजीर सोमिया ने आमी कोनी बनी बंस दकबू अच तो गोटकी बंस और अलग अलग जाति ने सुना देसी अच ने ये गोटा काय है पहिलर जीवना वैज्ञानिक जीवना रला और आई सामने कोनी कोनी गांवर परगना ने रवा लोक रलाय कोनी पुजारी रलाय कोनी गायता रलाय तो तीके तीके मानी करी चलते
1: रहे
0: आई साहब ने ये बे मानी कर चल के पड़सी मान सम्मान देबार जरूरी है थोड़े सुधार करबार जरूरी है जसन पहिले पतरे खाए तेरु ने अर्दाए जोर उतरी जाते रहे ये बे किंडी गीला तो आयला कि इष्टी लायला आयतानी आम खाएबू तो जोर साग ना करे ने बात पनी हो अबे आमी इताली तान काई बुआ तो नुकु करी सकली कर काई कोई सी अच्छे ये मस्तूर मात्र कुआ पिया रा बारा चे नुकु रा बारा
1: चे
0: ये नहीं कि अधिक तेर खाऊ कि अधिक लोन जीता इकरी खाऊ कि निर्णय कई नारो और खाऊ हम ता नहीं एके समान हो इकर काई बारा चे धक बारा चे तेबे ताके मान के हुआ है ये गाय दका सौ बरस पहले दका पढ़ा लिखा नारा लाए तो आयमन बाबार गोट दादार गोट के मानी कर चलते रहे सिरा गुनियार लोग बल जाते रहे शरण पड़ते रहे और चला बुला होते रहे आज काली पढ़ा लिखा होला उतारे तो गोटक 15 बरस और पीलाक बल तुम पचारा आए बाप के ज्ञान देसी तो फरक आए आए बाप के ज्ञान देव मानेर कतक जान सी आज गुनु तो आए फरक आई सी अच्छे आए फरक के आम के गुचाए बारे सुसारे समझाए बारे और तेबे अमर जीवना सही होइसी ई गोटा गोट के मानी कर चलू बोलले अमर देसिया जीवना और सौरिया जीवना गोट की होइसी
1: गोट की होइसी
0: हम ती दारना ने चलवा लो कोई बार आछे मातर हां हम यार गोटाई देला काज ना जाए
1: हां
0: गोटाई देला उतारे गोटक सही मनुख जीवना ओ बोलते चलाएबा लो कोई बार आछे
1: हाँ तो मनबोध बगले दखा तोमर संगे हम गोटाई बुआ से एवे दखा आमर गोटक बड़े भारी त्यौहार बल मनाई बुआ छे नोआ खानी त्यौहार नोआ खानी त्यौहार ने दखा आमी गोटक धीरजा आसन भले मान के सकूं जसन की कई भले फसल आए बोलू नोआ साग भाजी हो जोंदरा हो कोसरा हो कोदा हो घटका हो जोन वाली आए नोआ खानी त्यौहार बनायला पहल हम ना खाते रहूँ आई कि नहीं ये चुका हमें त्यौहार बनाए रहूँ और फिर त्यौहार मनाए वादी ने हमार कुटुंब परिवार लोग कोनिच बाटे बोले रला जाले बोले हाय दिने सपाय गोट की संगे आसी करी बसी करी टीका मांडा करी बोले ने गोटक दूसर के नानी छोटे बड़े के सम्मान देवार जोन तैयार आए बोलू भी
0: okay.
1: ये होते रहे okay. मंत्र ये तैयार ने बोले आजकल बोले आमर समाज और लोग बोले ग्रामीण समाज और लोग के निक ध्यान ना देवा सो ये चल बोले आम के आमर जोन संस्कृति है आमर जो सामाजिक व्यवस्था है तन के निक प्रभाव पड़सी आछे
0: असन गोटाइले तो प्रभाव पड़सी आछे बोल ले आम के नुक ना लागे सुन ले
1: हाँ
0: मातर काय है काय ने फरक पड़सी अचे एक बल तक के लागसी ना
1: हाँ हाँ ही तो
0: नुआ कावनी
1: हाँ।
0: नुआ कावनी ना उन्हें जान पड़सी अचे कि देसिया तियार है
1: हाँ।
0: नुआ कावनी
1: हाँ।
0: नुआ कावनी ने आमी दान के कमाइलू
1: हाँ
0: दान कमाइलू तो आतार चाउल नुआ चाउल होएला तार काय बार होएला टीका मांड बार होएला आतार संगे संगे कांदा कुलिया के बल नुआ मान के पड़सी मांतर जसन आमा तियारो हुआ यही हमती दान के आमी नुआ कावनी ने मुराई बुकाय बा हाय ताने नुआ गोट काय दका देसी अचे आमर पुरखा के मानबार ओइसी अचे आमर देव के मानबार ओइसी अचे आमर कुलर देव के मानबार ओइसी अचे देव नोयले देव के देव पुरुष के देव बोलुआत और बायल टोकी के आया बोलुआत तो आमर बाटे माय माय शब्द चलसी
1: अच्छे
0: माय बोलुआत नोएले आया बोलुआत तो आया शब्द मूर शब्द आए आए तानले मुरायला लाचे तो आमर देव के आमर आया के मान बार ओसी आचे आय मन जीवनी नियत मांतर तीकर रूप आचे
1: रूप आचे
0: मानला रूप आय मानला रूप के मानी करी कि आमर पुरखा आय बोली करी आमर सियानु उनके दरी करी तीके नाव पड़बार ओसी आचे आर नाव पड़ी कर ताके आमी गोट देव लोक ओलाई बोली करी नुआ दान के चिवड़ा बनाई करी आतर संगे लाई पुटाई करी आवरी जतर मतर जमती बोलियो नू आओ जून आओ चावल बनाई करी बात बनाई करी आवरी आय ताने कोचे हो नोले फनोस हो नोले और काय बोलू ताके कुमडा हो ये तार जोर मा बनाई करी साग बनाई करी ताके आमी पोईले देबू आचु अर्पण बोल पारे ताके तक पोईले आमी भोग देबू आचु आतार बाद ने आमर घरर गाय गोरु के आमर संग देलाई अतक बरस संग देलाई ए अतक दुई महीना तीन महीना चार महीना संग देलाई कमाइलू आमी बोली करी नुआ कावनी ने
1: मुराई बस
0: ई गोट के आमी दखलू बल ले आम के जान पड़सी ई नुआ कावनी कसन ने आए आई ती काय गोटा काम देलू और मुराइलू तो पूरब दिन ले जो चलते आई अच्छी गोटा रो चीना बाना बोले अच्छी गोटा रो मातर आए ताने खिंडी खिंडी काय वैसी अच्छे अधिक आम के शोभा ना दखा देसी अच्छे आए ताने बुलक बार वैसी अच्छे शोभा के काय दख बार आए मान के दख
1: मान के दख
0: ये काय शोभा नहीं ना बाजा ना बाजे काय शोभा लाइट ना जले काय शोभा हाँ नुआ नुआ पोटी सोबू लोग के ना पींद के ओसी अचे आधो लोग के ओला आधो लोग के ना ओला जार घर जसन शक्ति आए अई साहब ने पोटी पींदी करी कर बात
1: कर बात
0: मांतर आजी काली कार लगे सकत आचे कार लग सकत नहीं बनियान बल पींदुआत
1: हाँ।
0: मुंड पागा बल बांधुआत आवरी लूंगी पिंदी करी आय मन नुआ टीका मांदी करी आय नुआ कावनी संपूर्ण कर बात आवरी आय तने बोबो दार बोबो रांद बात
1: हाँ।
0: आ दार बोबो के दिया के नवाय बात ई गोटा मान होइसी चिवड़ा दे बात गुड़ दे बात आय गोटा मान होइसी छे ई अतकी है ये सादा सर्वदा लागसी छे आय सादा सर्वदा लोय बार लागी ने ये ना आले करो भी ना बाबा करो बे दादा आचे करो बे हाल ना बड़े भाई मनाचे मुई गाय ना जा सकी करो बे ये हिसाब ने पीला जिला के बुलकाए बार ओसी अच्छे घर लोग के बुलकाए बार ओसी अच्छे ये गोटा गोट सुनबा ने आम के लागला कि हमर संस्कृति के बुलक
1: बुलक हुआ छे
0: माता नुआ कावनी दाय ए बे आमी हमर देसिया गांव ने रला लोक मन कोनी बोले बड़े शहर ने रोत अई सोमिया ने आय लाई बोल ले आय मन एक पार का जी उपास रुआत और अई दिन कारीगर नाकाय और अई दिन आय मन घरे कई नोएल कई बीस रन बन हुआ सरे रो तो डरी करी चल बात कसन बोल ले आमर गागरे बेदला आचे आमर गरर देव मनर आई मानला रसान पानी गागरे बेदला आचे ताकि आमी कसन ने बुलक बु ई गोटा डर गोटो आमर गरे आचे गागरे आचे तो आय जोन गोट आमी गोटाई बोच ना संस्कृति बुलक बुअचू गोटाई बने चाहिए

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कोदोमाली। कलाकार थे मनीराम मंडावी और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जगदलपुर को। रात के 11 बजने को है। हिंदी व अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management.